FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 और 30 सेकेंड हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे हिंदी समाचार। समाचार के तुरंत बाद हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र।

0: सुनेंगे समाचार।
1: बड़ी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय का गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वागत समारोह में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
2: सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने बताया कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और विविधता दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में कल 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए

0: तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। IMF द्वारा कल जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 6.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने CSIR UGC NET जून 2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि वो ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पहुंचने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से वर्षा जारी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारत।

वंदन वार सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, ऐसे जियो जैसे कल ही मरना हो और ऐसे सीखो जैसे हमेशा जीना हो। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

जब आराध्य हों भोले भंडारी तो कैसे ना उन पर हम जाएं वारी। यही तो है प्रभु का संदेश कि सरलता से बड़ा नहीं है कोई भेष।

विविध भारती पर सुनिए आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण झरोखा के अंतर्गत। सुबह 6:35 से श्री रामचरितमानस, आज सुनिए 244वां भाग। छह बजकर 45 से संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रृंखला सुनिएगा शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। 9वीं कड़ी कलाकार है बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार। भूले विसरे गीत कार्यक्रम का समय सुबह 7 बजे का है और 7:30 से हम है राही प्यार के। 8 बजे से सुनिएगा समाचार प्रभात। 8:15 से त्रिवेणी के अंतर्गत त्रिवेणी सुन सकते हैं कार्यक्रम आप और 8:30 से चित्रलोक। 9:30 से कार्यक्रम आज के फनकार, आज केंद्रित है फिल्मकार गुरुदत्त पर। दस बजे से सुनिए आज के मेहमान कार्यक्रम का पुनः प्रसारण, वरिष्ठ साहित्यकार समीक्षक लेखक हरिशंकर राणी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की दूसरी कड़ी। रंग तरंग कार्यक्रम सुबह 11 बजे से और 12 बजे सुनिए हिंदी में समाचार। दोपहर 12:05 से यादों की महफिल, 1 बजे का समय है कार्यक्रम सुरीला सफर का। 2 बजे से त्रिवेणी और 2:15 से दोपहर समाचार। दोपहर 2:30 से सदाबहार नगमे और 3 बजे से सखी सहेली। 4 बजे आपकी फोन इन फरमाइशें पूरी होंगी हेलो फरमाइश कार्यक्रम के साथ और 5 बजे छाया गीत का पुनः प्रसारण। शाम 5:30 से तराने नए पुराने, 6 बजे से हिंदी में समाचार।

और 6:05 से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण सुन सकते हैं झरोखा के अंतर्गत शाम 6:30 से, 6:35 से संध्या रंजन, 6:45 से कार्यक्रम संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। सुनिएगा नवी कड़ी, कलाकार है बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। शाम 7:00 जय माला 7:45 से इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज वर्षा सोलंकी से यूनुस खान की बातचीत। कचरे का मालिक ये हास्य नाटिका सुनिएगा हवा महल कार्यक्रम में रात 8:00 से। लेखन विनायक शंकर विनय का, निर्देशन रणजीत अहलूवालिया का और रात 8:15 से चित्रलोक। आठ बजकर 45 मिनट से समाचार संध्या, 9:00 से कार्यक्रम आपके लिए।

रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है अभिनेता संजीव कुमार पर और 10 बजे से छाया गीत। दस बजकर 30 मिनट से ढलती जाए रात और 11 बजे से सुन सकते हैं रंग तरंग का पुनः प्रसारण।

एक बार फिर बता दें, सुबह और शाम 6:45 पर सुन सकते हैं संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आज सुनेगा 9वीं कड़ी। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। झरोखा के अंतर्गत आप सुन रहे थे आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम रामचरितमानस में आज सुनिए 44वां भाग।

श्री राम, सीता और लक्ष्मण अत्र ऋषि के आश्रम में पधारे हैं। ऋषि ने भक्तिपूर्वक श्री राम की वंदना करके उनसे अपने चरणों में अटूट अनुराग देने की प्रार्थना की। शीलवती तथा विनम्र सीता जी ने ऋषि पत्नी अनुसुईया के चरणों में सिर नवाकर उनका आशीर्वाद मांगा। ऋषि पत्नी सीता जी की विनम्रता देख अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र तथा आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। अनुसुईया जी ने मधुर और कोमल वाणी में सीता जी के स्त्री धर्म पालन का बखान किया।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। पंडित जी, फिल्मी दुनिया में बांसुरी की तान एक अलग पहचान बनाती है और आपने फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग जगह बनाई है। हम ये जानना चाहते हैं, जो बांसुरी की दुनिया में आना चाहते हैं और फिल्मी दुनिया में जाना चाहते हैं, उनके लिए बताइए कि अमूमन कितने स्वर सप्तक की बांसुरी उनके पास होनी चाहिए और किस तरह की तैयारी होनी चाहिए।
2: कोई बांसुरी वादक अगर फिल्मों में जाना चाहते हैं, बजाना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले तो नोटेशन लिखना आना चाहिए
1: जी।
2: और मूर्छना भेद से भी आगे जाके सुपर मूर्छना मैं कहूंगा जानना चाहिए कि अगर सारे गामा पदा नी सा पामा गारे सा नी धा पा, तो पंचम से उसका क्या नोटेशन बनेगा, निषाद से क्या बनेगा, धैवत से क्या बनेगा
1: जी।
2: ये एकदम तैयारी पूरी होनी चाहिए कि पता नहीं कौन सा पीस कैसे आ जाए सामने। ये सितार सरोद तो है नहीं कि आप बोल देंगे कि नहीं ये यहाँ से नहीं निकलता
1: जी,
2: आपको
1: जी।
2: तो हाँ ही बोलना पड़ेगा। ये पहली तैयारी। और दूसरी तैयारी ये होनी चाहिए कि बड़े बांसुरी

0: जितने हैं सी शार्प काली एक जो है
1: जी
0: वो बड़ी बांसुरी से लेके मिडिल बांसुरी जो 1.5 फीट तक की मान लीजिए आप
1: जी जी,
0: और उससे फिर छोटी मुरली जो एक फाउंटेन पेन की तरह है।
1: अच्छा।
0: इन सब में सोलो बजाना आना चाहिए।
1: क्या बात है,
0: मतलब ऐसी नहीं कि अचानक से मैंने छोटी फ्लूट ली तो उसमें हाथ नहीं चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मैं कदरी गोपालनाथ जैसे महान सैक्सोफोन प्लेयर के साथ बजाता था तो मैं छोटी बांसुरी लेके पूरा प्रोग्राम बजा देता था।
1: जी जी जी,
0: वो फिल्म लाइन की देन है मुझे कि मैं अभी तक अटका नहीं कहीं।
1: ये अगर उसमें कुछ याद है आपको, कुछ ऐसे टुकड़े आप बजा के सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को?
0: हाँ, मैं एक तमिल फिल्म में बजा रहा था दलपति।

0: महान सैक्सोफोन प्लेयर के साथ बजाता था, तो मैं छोटी बांसुरी लेके पूरा प्रोग्राम बजा देता था।
1: जी जी जी,
0: वो फिल्म लाइन की देन है मुझे कि मैं अभी तक अटका नहीं कहीं।
1: अगर उसमें कुछ याद है आपको, कुछ ऐसे टुकड़े आप बजा के सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को?
0: हाँ, मैं एक तमिल फिल्म में बजा रहा था दलपति। दलपति में हीरो जो थे वो रजनीकांत थे
1: जी,
0: और म्यूजिक डायरेक्टर थे इलैयाराजा। तो एक पीस उन्होंने दिया जो कहीं से भी नहीं आ रहा था, और उसका जो फ्लूट प्लेयर मेरे साथ था उसका नाम था नेपोलियन
1: जी।
0: हम दोनों बांसुरी में थे
1: जी।
0: तब डबिंग का जमाना तो इतना नहीं था कि दो ट्रैक सिर्फ बांसुरी को दे दिया जाए, तो हम दोनों को बांसुरी में बुलाया गया। तो वो दलपति का जो पीस है मैं
1: जी,
0: वो पुरिया धनाश्री में था
1: जी, सुनाए प्लीज।
0: साने दाबा मागरे सा, ये हो गया पुरिया धनाश्री। और इसका नोटेशन मेरा क्या बना,

0: वाह,
1: नीचे के गा तक जाता है।
0: गजब।
1: तो ऐसा साह ढूंढ के निकाला मैंने, उसके पहले मैंने मध्यम से कभी पूरा धनुष्री बजाया नहीं था। अजीब मूर्छना है ये।
0: जी जी, तो इन सब की तैयारी, इन सब पे कमांड होना बहुत जरूरी है अगर फिल्मी दुनिया में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं हमारे कलाकार बांसुरी की दुनिया में। जो
1: इन सब की तैयारी बहुत किए बिना आप मत करिए।
0: पंडित जी, आपके पास कितनी तरह की बांसुरी है, कितने प्रकार के?
1: मेरे पास चाइनीज फ्लूट है और पैन फ्लूट है
0: जी,
1: जो ऐसे बजाते हैं जैसे कि बांसुरी को ऐसे पकड़ के, ये सुर जो है ये कल्पेश मेरा जो शिष्य अभी आपके साथ स्टूडियो में बैठा है, ये खुद बहुत अच्छा फ्लूट मेकर भी है, इसने सोचा है कि पैन फ्लूट बनाऊं।
0: क्या बात तो है, वाह।
1: अगर ये यहाँ पे सा है तो ये इसमें रे बजेगा।
0: वाह,
1: रे, यहां से रे आ रहा है। तो नॉर्मली वहां से उस सुर को पकड़ के उसको पैन फ्लूट बनाना पड़ेगा
0: जी। तो कितनी बारीक जानकारियां आप दे रहे हैं जो कहीं उपलब्ध नहीं होंगी।
1: ये तो मेरे कम से कम नहीं तो भी 55 साल की तपस्या है
0: जी। जी,
1: 55-56 साल की तपस्या है।
0: तो अगर लोग फिल्मों में जाना चाहते हैं तो पहले इतनी तैयारी करें, रियाज करें पूरी तैयारी के साथ, तब जाएं। और यहाँ पर अब हमें याद आ रहा है वो गाना 1942 लव स्टोरी फिल्म का, कुछ ना कहो, इसमें आपकी बांसुरी है, पंचम दास से जुड़ी हुई यादों का खजाना है आपके पास, इस समय क्या बताएंगे हमारे श्रोताओं को?
1: कहते हैं ना, जब कोई अपना चला जाता है छुड़ा के दामन, दिल के अरमानों पे एक तीर सी चल जाती है
0: जी।
1: मैं यही कहूंगा कि पंचम दास ने इतना प्यार दिया मुझे, मेरे घर आते थे बोरीवली, तब मैं बोरीवली रहता था।
0: अच्छा।
1: फिर मैं मलाड चला गया, मगर अंत में कुछ ऐसा हुआ, 87-88 के बाद थोड़ा खराब दौर उनके ऊपर आ गया। महीने में एक आध दिन रिकॉर्डिंग होने लगा। एक व्यक्ति ऐसा था
0: जी,
1: विद्यु विनोद चोपड़ा ने कहा मैं तो पंचम को ही लूंगा
0: जी।
1: 1942 ए लव स्टोरी
0: जी। जी,
1: तो गाना रिकॉर्ड हो रहा था, प्यार हुआ चुपके से, और मैं हूं रियाजी आदमी, उधर पंचम दा और ये दोनों रिहर्सल कर रहे थे कविता कृष्णमूर्ति, और मैं अपना जैसे कल्पेश मेरे से जितना दूरी में बैठा है वहां बैठ के मैं अपना केदार राग रियाज कर रहा था। तो पंचम दा हारमोनियम रोके हाँ करके और बोले कमाल करते आज तू, बंगला में बोले, हम लोग यहाँ झक मार रहे हैं क्या, हम इधर प्रैक्टिस कर रहे हैं और तू अपना दूसरा
0: राग केदार बजा रहा
1: है, डिस्टर्ब नहीं होता है? मैं एकदम डर गया, मैंने कहा दादा मुझे माफ करिए, एक्चुअली केदार इसमें बहुत मुश्किल है, तो उसको मैं जरा टेक्निकली देख रहा था। तो टेक्निकली मत देख, एक काम कर, वो जो तू डिस्टर्ब किया वो गाने को भी जरा वही दे। तो अगर आप प्यार हुआ मैं सुनाऊं आपको?
0: जी बिल्कुल।

0: वाह, बहुत सुंदर, मंत्रमुग्ध हो गए हम तो। और बांसुरी जब बजा रहे थे पंडित जी, तो हमें ये लग रहा था कि सांस की कैसे साधना करते हैं, सांस को कैसे होल्ड करते हैं,
1: आपने
0: साधते
1: बहुत
0: कैसे।
1: अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको बहुत आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने ये याद दिलाया मुझे।
0: जी
1: उनको प्राणायाम करना बहुत आवश्यक है
0: बिल्कुल
1: जी, खास करके अनुलोम विलोम, उज्जायी, भस्त्रिका। जब आप उज्जायी करेंगे, आप अनूप जलोटा जी को देखिए, अनूप भैया को, वो करते हैं। सबसे ब्रेथलेस तो हमारे भीमसेन जोशी जी थे। एक बार उन्होंने ऐसी तान मारी कि विलंबित का ठेका जो 64 का लय होता है, देन ते ते के ते देन, ये लय में पहले मात्रे से आखिरी मात्रे तक गमक का तान करते गए, सांस छूटा ही नहीं। मुझे राजन मिश्रा ने बताया ये बात, पंडित
0: वाह
1: राजन मिश्रा जी ने ये बात बताई, बोले कि अब बस कर भीमसेन, मेरी सांस चली जाएगी। किसने कहा? काशी नरेश ने कहा, काशी के जो राजा थे।
0: जी, सांस की साधना भी जरूरी है,
1: जरूरी है।
0: तभी तो हम जब आपको देख रहे हैं, मतलब अपने श्रोताओं को बता दें कि पंडित जी जब जब बांसुरी बजा रहे थे तो हमने न जाने कितनी सांसें उस बीच ली होंगी, लेकिन आपकी सांस वहीं पर बांसुरी पे ही टिकी हुई
1: जी जी जी
0: है, तो ये अद्भुत बात है। और उसी फिल्म में 1942 लव स्टोरी में एक गाना और है, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो।
1: जी इस गाने पे आ रहा हूं। विधु विनोद चोपड़ा ने उनको लिया
0: जी
1: और विधु विनोद चोपड़ा इस गाने का रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो पंचम दा बोले कि रोंगीला रोंगीला रोंगीला रे रोंगीला, बंगाली गाना है,
0: जी
1: इसी को तू इंट्रो में बजा। और मुझे आके क्या बोले मालूम है, मेरा गाल में थोड़ा प्यार किया और बोले कि ये गाना जितना हिट होगा ना, उतना तेरा पीस भी हिट हो जाएगा। तो मैं ये गाना कल्पेश के साथ मिलके, वही अपना दादरा
0: जरूर सुनाए।

0: वाह अद्भुत। अब इसके बाद सचमुच कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। अब कुछ कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, तो अब इस कड़ी को समेटते हैं और कल कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा।

गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में आर पार फिल्म का गीत आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत। आज है जन्मदिन अभिनेता निर्माता निर्देशक गुरुदत्त का, उन्हीं पर केंद्रित है आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम।

0: हेमंत कुमार की आवाज में जाल फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

हेमंत कुमार की आवाज में प्यासा फिल्म का ये गीत आपने सुना। साहिल उद्यानवी ने इसे लिखा, सचिन देव बर्मन का संगीत। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, और कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का, बस अभी हाजिर होते हैं।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आज इस कार्यक्रम में अभिनेता और निर्माता निर्देशक गुरुदत्त की फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर की तर्ज।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: गीता दत्त की आवाज में बाजी फिल्म का गीत आपने सुना, साहिल धानवी के बोल, सचिन देव बर्मन की धुन।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत, शकील बदायूनी की रचना, रवि का संगीत, फिल्म 14वीं का चांद।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम का प्रसारण। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

सूरज की लाली के साथ ही हर सुबह मुस्कुराती है, अंधकार मिटाकर यह नई उम्मीद लाती है, छोड़कर कल की बातों को एक नई उड़ान भर, हर नई सुबह एक नई रोशनी की दास्तान सुनाती है। नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते रोहतास कार्यक्रम में। तो चलिए, हमेशा की तरह आज भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जी हाँ, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालीख पर नहीं। और अब आइए एक नज़र डालते हैं 9 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। 1857 में आज ही के दिन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लखनऊ और कानपुर में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ संघर्ष तेज किया।

1875 में आज ही के दिन यानी कि 9 जुलाई को एशिया के सबसे पुराने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP की स्थापना भी आज ही के दिन 1949 में हुई थी। देश में पहली पंचवर्षीय योजना यानी कि 1951 से 1956 का प्रकाशन भी आज ही के दिन किया गया था। जी हाँ, 9 जुलाई को 1951 में। 2002 में आज ही के दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली जो कि बिहार के जीरादेई में है, वहाँ पर एक स्मारक का उद्घाटन किया गया था आज ही के दिन यानी कि 9 जुलाई को 2002 में।

और अब थोड़ी सी जानकारी 9 जुलाई को जन्मे कुछ विशेष शख्सियत पर। तो बता दें आपको कि भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता और निर्देशक गुरुदत्त साहब का जन्म 1925 में आज ही के दिन हुआ था। हिंदी फिल्मों के दिग्गज और बहुमुखी अभिनेता, जी हां, संजीव कुमार का जन्म भी 1938 में आज ही के दिन यानी कि 9 जुलाई को हुआ।

और आज के दिन के निधन के बारे में बात करें तो हम आपको बता देना चाहेंगे कि स्वतंत्र भारत के पहले संसदीय कार्य मंत्री सत्यनारायण सिन्हा का आज ही के दिन यानी कि 9 जुलाई को 1983 में निधन हुआ था। तो हमारे कार्यक्रम के पहले सेगमेंट जिसमें हमने सुविचार और आज की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आपको जानकारी दी, इसके बाद आइए सुन लेते हैं एक भक्ति रचना जुबिन नौटियाल की सुरीली आवाज़ में। जी हाँ, इस भक्ति रचना को लिखा है मनोज मुंतशिर ने और संगीत दिया है पायल देव ने। एल्बम है नारायण मिल जाएंगे।

पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। जी हाँ श्रोताओं, ऐसा कहा जाता है कि सच्चे मन से प्रार्थना करने वाले को भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाते और वे हमेशा आपको सही निर्णय लेने की शक्ति भी देते हैं। कोई कितना भी आपका बुरा करना चाहे, लेकिन अगर आपके साथ भगवान हैं तो कभी आपका बुरा नहीं हो सकता। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, आइए एक नज़र डालते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर। रोहतास उद्योग समूह की जमीन की बिक्री पर प्रतिबंध लग गया है। उच्च न्यायालय पटना ने इस अधिग्रहित जमीन को पुनः लौटाने से इनकार कर दिया है।

कैमूर जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा है कि जिले में उर्वरक की कालाबाजारी न हो इसके लिए छापेमारी दल का गठन किया जा रहा है। उर्वरक के नियंत्रित मूल्य पर बिक्री सुनिश्चित करने एवं कालाबाजारी रोकने और जमाखोरी को रोकने के लिए उर्वरक निरीक्षक अपने अपने क्षेत्रों में उर्वरक दुकानों पर धावा दल के माध्यम से छापेमारी करेंगे। कैमूर जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत मनिहारी पंचायत में जल्द ही पंचायत सरकार भवन का निर्माण होगा। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वृत्ति योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू हो जाएगी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

रोहतास जिला के काराकाट प्रखंड के स्थानीय नगर पंचायत के सभागार में कल बुधवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सशक्त स्थायी समिति

रोहतास और कैमूर जिले में मानसून के दौरान पर्यटकों व आमजनों को वन विभाग ने किया है सतर्क। जी हाँ, रोहतास जिले में मानसून के दौरान भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। पानी का स्तर भी बढ़ने की आशंका जताई गई है। वन विभाग ने पर्यटकों को सतर्क रहने की अपील की है। आम नागरिकों को भी सावधानी बरतने को कहा है। रोहतास और कैमूर वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले जलप्रपातों पर विशेष चेतावनी विभाग द्वारा जारी की गई है। कैमूर जिले में श्रम विभाग से निबंधित कामगारों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता देगा कैमूर श्रम विभाग। जी हाँ, कैमूर जिले में श्रम विभाग से निबंधित कामगारों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिलने की बात विभाग ने कही है। हम आपको बता दें कि इस बारे में जानकारी देते हुए श्रम अधीक्षक कैमूर ने कहा है कि न्यूनतम एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर निबंधित निर्माण कामगारों के पुत्र एवं पुत्री को IIT, IIM तथा एम्स जैसे सरकारी उत्कृष्ट संस्थानों में दाखिला होने पर पूरा ट्यूशन फीस विभाग भरेगा, जबकि BTEC और अन्य समकक्ष कोर्स के लिए सरकारी संस्थान में दाखिला होने पर न्यूनतम 20,000 देने का प्रावधान किया गया है।

पेड़ प्रकृति का एक अनमोल उपहार है, इसे सहेजें। जी हाँ, बिहार सरकार की पहल एक पेड़ एक जिंदगी महाअभियान के दूसरे दिन रोहतास और कैमूर जिले में बड़े पैमाने पर रोपे गए पौधे। तो ये थी स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ। और अब कार्यक्रम में आइए सुन लेते हैं एक बेहद ही खूबसूरत गीत लता मंगेशकर जी की मीठी सी आवाज़ में। इसे हमने चुना है आंचल फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, आरजी बर्मन का संगीत है।

लता मंगेशकर जी की सुरीली आवाज़ में अभी आपने सुना ये बेहद ही खूबसूरत गीत आंचल फिल्म से। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर, और आप अभी सुन रहे हैं जी हाँ प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। तो चलिए नमस्ते रोहतास के अंतिम पायदान पर हम लेते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों को। प्रभात खबर लिखता है कि पटना से गया जी आरा मुजफ्फरपुर व बेगूसराय के बीच दौड़ेगी रैपिड रेल। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की DPR के लिए 31.59 करोड़ की मिली मंजूरी। जी हाँ, बिहार राज्य में 4 प्रमुख कॉरिडोर में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनेगा। इसे तैयार करने के लिए अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट और DPR बनाने की जिम्मेवारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की दी गई है। यह रिपोर्ट तैयार करने के लिए 31.59 करोड़ रुपये की कल बुधवार को मंजूरी मिल चुकी है। सम्राट चौधरी की कैबिनेट की बैठक में इसी के साथ कुल 22 एजेंडों पर कल मुहर लगी। EPF खाते में 15 जुलाई तक जुड़ेगा 8.25% ब्याज। नौकरी पेशा और पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हां, सरकार ने EPF खातों में ब्याज डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कल बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भविष्य निधि पर मिलने वाली 8.25% सालाना ब्याज 15 जुलाई तक सदस्यों के खातों में क्रेडिट कर दी जाएगी।

दैनिक भास्कर लिखता है कि आईएसआईएस अलकायदा नेटवर्क ध्वस्त करने को कल हुई एनआईए छापेमारी, बिहार समेत 9 राज्यों व दिल्ली में 20 ठिकानों पर कार्रवाई। दैनिक जागरण ने मुख्य पृष्ठ पर एक और खबर छापा है कि बिहार स्टेट गेम्स के लिए 10 जुलाई को होगा जिला हैंडबॉल टीम का चयन। हिंदुस्तान अखबार अपने पहले पन्ने पर लिखता है कि सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट के सौर प्लांट लगेंगे। जी हां, बिहार के सरकारी भवनों के ऊपर अब 500 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के प्रस्ताव को कल कैबिनेट में स्वीकृति दे दी गई है। अभी 13,000 सरकारी भवनों में 118 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। हिंदुस्तान अखबार लिखता है कि बड़े गिरोह का खुलासा, 1 करोड़ के जाली नोट जब्त। पूर्वी चंपारण पुलिस और जिला अधिसूचना इकाई ने पूर्वी चंपारण जिले में अब तक के सबसे बड़े जाली नोट के नेटवर्क का खुलासा किया है।

रणजी ट्रॉफी के मैच से। पहला मैच 11 अक्टूबर को बिहार और यूपी के बीच खेला जाएगा। दैनिक जागरण ने अपने मुख्य पृष्ठ पर छापा है कि बिहार के मोतीपुर में फिर लगेगी चीनी मिल, किसानों को होगा फायदा।

और अब आइए डालते हैं खेल गतिविधियों पर एक नज़र। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कल दो रोमांचक नॉकआउट मुकाबले खेले गए और दोनों मैचों में अर्जेंटीना तथा स्विट्जरलैंड की टीमें विजेता रहीं। कल के खेले गए मैच में अर्जेंटीना ने शानदार वापसी करते हुए मिस्र को हराया। विश्व कप फुटबॉल मैच में एक समय मिस्र 2-0 से आगे था, लेकिन अर्जेंटीना ने लगातार 3 गोल करके मैच जीत लिया। एक दूसरे खेले गए मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हरा दिया। और अब चलते चलते आइए डालते हैं मौसम पर नज़र। बता दें आपको कि रोहतास जिला में आज बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की पूरी संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा में नमी अधिक होने के कारण थोड़ी उमस भी महसूस होगी। और श्रोताओं, अब चलते चलते कार्यक्रम में एक और गीत हम आपको सुनवा देते हैं संजू फिल्म से। जी हाँ, आवाज़ें हैं सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की।

संजू फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। जी हाँ श्रोताओं, हार कर भी जो आगे बढ़ता है वही दुनिया को बदलता है। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए, हर मैदान आप जरूर फतह करेंगे। और अब इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न करने की मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

नमस्ते रोहतास, ये प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
3: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस

0: को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
0: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
2: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स हैं, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने

0: राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
1: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में

0: भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लोक सत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से पीएफ खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
3: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे देशभक्ति संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए एक देशभक्ति रचना अरिजीत सिंह की आवाज़ में। मनोज मुंतशिर ने इसे लिखा है, आर्को का संगीत है और फिल्म है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया।

वतन की खुशबू से महकते हैं हम, वतन की खुशबू से महकते हैं हम, इसी भूमि पे जन्म लिया है हमने, तो हमारे देश दिल में है हमारी देशभक्ति का जज्बा, और इस वतन से हमें हमेशा रहेगा प्यार। इस वतन के लिए हम अपनी हर खूबसूरत चीज़ को छोड़ देंगे, इसके लिए हम हर गम सहेंगे, क्योंकि सारे जहाँ से खूबसूरत है हमारा ये वतन। ये देशभक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे भुज द प्राइड ऑफ इंडिया से। गाया था इसे अरिजीत सिंह ने और लिखा था मनोज मुंतशिर ने, संगीत दिया था आरकू ने। हमारा आज का यह देशभक्ति संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:20 हुए हैं। अब आप सुनेंगे पत्र पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी। पसंद आपकी कार्यक्रम में आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम में पहला गीत हम सुनवाने वाले हैं कन्यादान फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। नीरज के बोलो को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और इस गीत की फरमाइश की पठान टोली कलेर से आसिफ खान, निखत प्रवीण, सदफ आरजू, साहिल अरमान, शमा प्रवीण, आफिया तस्नीम और अलीशा ने। कुछ और श्रोता भी हैं, ये हैं थाना चेनारी खुरमाबाद रोहतास से विद्यावती देवी, प्रभावती, कुसुम, प्रियंका, अर्चना देवी, रंजीता देवी, प्रभा देवी, भरत चौरसिया। नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से हैं अक्रम हुसैन प्रिंस, इशरत अक्रम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल, हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबिया नाज, शाहीन नाज, नूरी नाज, बच्चू सैख, चीना सैख। कोकिलवारा औराई जिला मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैसल सैख, नुजहत जहानाज। सैख टोली समस्तीपुर से हैं शाहनवाज परवेज और मुसर्रत जहानाज। तो लीजिए सुनिए आप सब मोहम्मद रफी की आवाज में कन्यादान फिल्म का ये गीत।

लिखे जो खत तुझे। कन्यादान फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी साहब की सुरीली आवाज़ में। नीरज के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। जी हाँ श्रोताओं, किसी शायर ने भी बेहद ही खूब कहा है कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। जी हाँ, ख़त ज़रूर लिखिए, अगर कोई आपका अपना है तो ज़रूर लिखिए, और हमें तो आप बेशक ख़त लिखिए, क्योंकि पसंद आपकी का हमारा जो यह कार्यक्रम है वो है ही ख़त पर आधारित। तो आप सभी नए श्रोताओं के लिए जो पहली बार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, उन्हें हम इस कार्यक्रम में अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए अपने कार्यक्रम का पता बता देते हैं। तो ख़त लिखने के लिए हमारे कार्यक्रम का पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम पसंद आपकी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 8211115। और इसी के साथ अब इस कार्यक्रम में जो ये अगला पत्र हमारे हाथ में है उसे लिखकर भेजा है हमारे नियमित श्रोता ललन मिश्रा जी ने। फुटानी चौक नरहन एस्टेट से हैं आप और आपके परिवार के अन्य सदस्य हैं उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। मिसर मोहल्ला नरहन बाजार से हैं फटफटिया झा, गुंजन परासर, अमित, सुमित, छोटू, बीके सुर गनैया। और आप सभी श्रोताओं की फरमाइश आई है अनजाना फिल्म के गीत रिमझिम गिरे सावन के लिए, तो ज़रूर सुनवाएंगे आपको। और आप हैं ब्रह्मपुरा मनीगाछी से अच्छे लाल रॉय, पानो देवी, मुकेश कुमार रॉय, प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार। कोई सा भी गीत सुनने के लिए हमें बड़ी ही दूर से ये पत्र

लिखकर भेजा है। जी हाँ, आप सब हैं ओम प्रकाश रॉय, उषा रॉय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से हमें ख़त लिखा है प्रतीक रॉय, रोशनी रॉय, प्रांजल रॉय ने। शेरपुर कला गाजीपुर से ये ख़त आया है अवधेश रॉय, प्रीति रॉय और नवनीत रॉय की तरफ से। तो चलिए आप सभी को सुनवाते हैं अनजाना फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। श्रोताओं, अनजाना फिल्म के इस गीत का बोल है रिमझिम के गीत सावन गाए।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए RBI कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: हेलो
4: राजेश जी मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ
3: फिर से
5: आप डिजिटल अरेस्ट में हो दूसरे कमरे में जाइए अकेले आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं लंबे जाएंगे
6: 10 लाख दीजिए बच जाएंगे
3: सर इतने कहाँ से
6: एक लिंक भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए बाकी बाद में
3: सर, 2 लाख
7: क्या हुआ पापा
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं
5: अरे
3: काट दिया
7: पैनिक मत कीजिए पापा डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है ये सब फ्रॉड है
3: फ्रॉड
7: पुलिस बैंक RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए सतर्क रहिए

रहें न रहें हम महका करेंगे। ममता फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर जी की मीठी सी आवाज़ में। मजरू के बोल थे, रोशन का संगीत था और इस गीत को सुनना चाहा था रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। और ये हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ भाटपारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा। आप सब हैं तेलंगाना जिला भुवनगिर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, यूसुफोद्दीन, प्रीति सुरेश, मृत्यालु बाबू, फरजान लल्ला, फरहान लल्ला, अजीज़ भाई, अब्दुल बाबा अनजाना। तो आप सभी के लिए हमने ये मिली जुली फरमाइश जो आप सबकी रही, इसे हमने पूरा किया ममता फिल्म के इस गीत के साथ। और अब कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अगला गीत।

क्योंकि इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल आवाज में। समीर के बोल हिमेश रेशमिया का है संगीत और इस गीत को पसंद किया था ताजपुर मोरबा से भाई कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। और इसी गीत के साथ अब ये पसंद आपकी कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने वाले हैं। आइए चलते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र प्रादेशिक समाचार के लिए।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार का निर्णय, पटना से गयाजी, आरा, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय के बीच रैपिड रेल सेवा शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इंटरनेट पर युवाओं को उकसाने के मामले में बिहार समेत 10

राज्यों में एक साथ छापेमारी की। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए एक समान शुल्क लिया जाएगा। और मौसम विभाग का गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले में आज अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट। भोजपुर, बक्सर, सारण, सीवान तथा किशनगंज जिले में भी भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पटना से गया जी, आरा, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय के बीच रैपिड रेल सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS बनेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में

0: समाचार विस्तार से। प्रदेश में पटना से गया जी, आरा, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय के बीच रैपिड रेल सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS बनेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को दी गई है। इस पर 31 करोड़ 59 लाख रुपए खर्च होंगे। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि प्रमुख शहरों के बीच परिवहन व्यवस्था को तेज करने के लिए यह फैसला लिया गया है।
1: चार कॉरिडोर हैं, पटना गया जी कॉरिडोर पहला है, दूसरा है पटना एयरपोर्ट बेगूसराय कॉरिडोर, तीसरा है पटना हाजीपुर से प्रस्तावित सोनपुर एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर कॉरिडोर और चौथा कॉरिडोर है पटना एयरपोर्ट से आरा कॉरिडोर। तो ये चार कॉरिडोर के लिए रैपिड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS की स्वीकृति दी गई है। अभी यह यूपी में कुछ शहरों को कनेक्ट करता है।
0: एक अन्य फैसले में राज्य सरकार ने सात निश्चय पार्ट तीन के तहत बेरोजगारी भत्ता यानी मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना को 2026-27 से मार्च 2031 तक लागू रहने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इसके तहत वर्ष 2026-27 के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च करने की सहमति दी गई है।
1: मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को अगले 5 वर्षों वित्तीय वर्ष 26-27 से 30-31 तक विस्तारित करने तथा इस पर वित्तीय वर्ष 26-27 में कुल 300 करोड़ रुपए व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
0: कैबिनेट ने प्रदेश में दूध उत्पादकता के साथ ही गुणवत्ता सुधारने के लिए बल्क मिल्क कूलर, दूध मिलावट जांच मशीन और डाटा प्रोसेसिंग मिल्क कंट्रोल यूनिट लगाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। इसके तहत राज्य में 1000 से अधिक डाटा प्रोसेसिंग मिल्क कंट्रोल यूनिट और 80 दूध मिलावट जांच मशीन लगाई जाएगी। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही के अंकेक्षण के लिए सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी के गठन की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने कुल 22 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने इंटरनेट पर युवाओं को उकसाने के मामले में बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत 10 राज्यों में एक साथ छापेमारी की। ये छापेमारी ISIS और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों की विचारधारा को बढ़ावा देने और सरकार के खिलाफ साजिश की जांच के क्रम में की गई है। इस दौरान टीम ने कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए हैं। इस मामले में अब तक 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक वर्षीय और दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए एक समान शुल्क लिया जाएगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने इस संबंध में यूनिफॉर्म ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशंस 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों में वर्ष 2018 से लागू चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CDCS के पुराने नियम समाप्त हो गए हैं। हालांकि बिहार कृषि विश्वविद्यालय, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, नालंदा खुला विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय पर ये नियम लागू नहीं होंगे। इधर राज्यपाल ने अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के तबादले के लिए पोर्टल आज से खुल जाएगा। इसके माध्यम से शिक्षक मनपसंद विद्यालयों में स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गोपालगंज में पत्रकारों से कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार ने मनचाहा स्थानांतरण की नीति बनाई है। उन्होंने कहा कि तबादले के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के औचक निरीक्षण के बाद दो चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पटना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि निरीक्षण के क्रम में एक डॉक्टर

0: निर्धारित समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंचे थे, जबकि दूसरे डॉक्टर पर मरीज को जांच के लिए अपने निजी क्लिनिक भेजने का आरोप है।
1: मैं गया था LNJP, वहाँ पे एक डॉक्टर थे, नहीं आए 3 बजे तक उनकी ड्यूटी। वो गया था 3 बजे तक, नहीं आए 2 बजे तक ही उन्हें आ जाना चाहिए था। फिर हमने उन्हें फोन भी किया तो वो अपना रीजन बताने लगे, तो उसमें मैं कार्यवाही कर रहा हूँ, वो अपना शो कॉज देंगे। और हमारे डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख दिया अपने निजी क्लिनिक में कि वहाँ जाकर आप जाँच करा लीजिए, तो उन पर भी कार्यवाही करेंगे हम।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खाते में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। उत्तर बिहार में जहां अच्छी बारिश हो रही है, वहीं दक्षिण बिहार में कम बारिश के चलते उमस और गर्मी का असर एक बार फिर बढ़ गया है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि भोजपुर, बक्सर, सारण, सीवान, पूर्वी चंपारण और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश का पूर्वानुमान है।
1: राज्य के गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा अत्यधिक भारी वर्षा के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, सारण एवं सिवान जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों अररिया, अरवल, औरंगाबाद, भभुआ, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।

कर 30 मिनट पर। रसधार कार्यक्रम में आप आनंद लेंगे भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स का 10:45 पर। पूर्वाह्न 11 बजे से आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती से कार्यक्रम रंग तरंग का प्रसारण। अपराह्न 12 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार हम आपको सुनवाएंगे और 12:05 से आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती के कार्यक्रमों का प्रसारण। दोपहर 2 बजे प्रादेशिक समाचार, 2:05 पर इलाकाई खबरें और 2:10 पर रोजगार सूचना हम रिले करेंगे हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। दोपहर 2:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से मध्याह्न समाचार। दोपहर 2:30 पर सुनिएगा विविध भारती से कार्यक्रम सदाबहार नगमे, फिल्मी गीत सखी सहेली हेलो फरमाइश। शाम 5 बजे हम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। 5:05 पर आप सुनेंगे हमारे सासाराम केंद्र से उद्घोषणा और कार्यक्रम विवरण। 5:10 पर कार्यक्रम वंदन में भक्ति संगीत। 5:30 पर युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण। शाम 6 बजे भोजपुरी लोकगीत। 6:05 पर हम सुनवाएंगे आपको आकाशवाणी पटना से भोजपुरी समाचार बुलेटिन। 6:10 पर सुनिएगा किसान भाइयों बहनों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण। शाम 6 बजे आप सुनेंगे सांझ गीत कार्यक्रम में भोजपुरी फिल्म संगीत। जी हाँ, भोजपुरी फिल्म संगीत आप सुनेंगे 6:40 से शाम 7 बजे तक, क्योंकि 7 बजे हम लेकर आएंगे प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान। 7:15 पर सुनिएगा सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गोदे दिन। 7:25 से आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र प्रादेशिक समाचार के लिए। ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद हम लेकर आएंगे आज 7:50 से रात 8:45 तक। रात 8:45 से हम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या। रात 9 बजे हमारे सासाराम केंद्र से आप सुनेंगे लोकधारा कार्यक्रम में भोजपुरी लोकगीत और 9:15 पर महफिल कार्यक्रम में चंद गजल। पर सुनिएगा आकाशवाणी विविध भारती से कार्यक्रम आज के फनकार। रात 10 बजे रसरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे हिंदी एल्बम सॉन्ग और 10:30 पर चित्रपट तराने कार्यक्रम में हिंदी फिल्म संगीत। अगले दिन का कार्यक्रम विवरण और मौसम पूर्वानुमान हम लेकर आएंगे रात 10:55 से रात 11 बजे तक। 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार। हमारी आज की यह सभा संपन्न हो जाएगी रात 11:10 पर। तो ये था कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत अभी आप जानकारी ले रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। अब लीजिए सुनिए गीत मालिका कार्यक्रम में कुछ हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं मृत्युदाता फिल्म के गीत से। गीत लिखा है समीर ने, संगीत से सजाया आनंद मिलिंद ने और आवाज़ें हैं विनोद राठौड़, अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की।

भ्रष्टाचार फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की युगल आवाज़ में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। गीत मालिका कार्यक्रम के अंत में अब लीजिए सुनिए दूरियां फिल्म से एक गीत भूपेंद्र और अनुराधा पौडवाल की युगल आवाज़ में। इस गीत को लिखा है सुदर्शन फकीर ने और संगीत दिया है जयदेव ने।

श्रोताओं क्षमा चाहेंगे कि ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पा रहे हैं, और फिलहाल इसी गीत के साथ अब मैं आप सभी से चाहती हूँ कार्यक्रम गीत मालिका से इजाज़त। नमस्कार, ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती से कार्यक्रम आज के फनकार, तो कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनने वालों को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सलाम उस विलक्षण प्रतिभा को, एक अभिनेता, एक निर्देशक, एक जज्बाती इंसान।
1: किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं, मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसके इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है, जहां किसी के दुख दर्द पे तो आंसू बहाना पुस्तली समझा जाता है, चुप के मिलना है कमजोरी समझा जाता है। ऐसे माहौल में मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी मीना, कभी शांति नहीं मिलेगी, इसलिए मैं दूर जा रहा हूं।

0: है तो।
1: गुरुदत्त की फिल्में अपने समय से बहुत आगे थीं। कामयाब रही हो या नाकाम, उन्होंने शिद्दत भरी कहानियाँ दी, कहानियों से रुलाया, हंसाया।

गुरुदत्त का वास्तविक नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। गुरुदत्त अपने आप में एक संपूर्ण कलाकार बनने की पूरी पात्रता रखते थे। वे विश्व स्तरीय फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। साथ ही में उनकी साहित्यिक रुचि और संगीत की समझ की झलक हमें उनकी सभी फिल्मों में दिखती है।

आइए गुरुदत्त की जिंदगी की कुछ बेमिसाल कहानियाँ आपको सुनवाएं। गुरुदत्त की जिंदगी के बारे में काफी कुछ आप जानते हैं, उनकी बहुत सारी फिल्मों से आप वाकिफ हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ यादगार अनमोल वाक्य। गुरुदत्त और देवानंद की दोस्ती बड़ी गहरी थी। दरअसल दोनों की पहली मुलाकात प्रभात स्टूडियो पुणे में हुई थी। दोनों के कपड़े एक ही जगह पर धुलने और इस्त्री करने को जाते थे। एक बार बड़ा दिलचस्प किस्सा हुआ, वो ये कि गुरुदत्त की शर्ट देवानंद के यहाँ और देवानंद की शर्ट गुरुदत्त के यहाँ चली गई और दोनों ने एक दूसरे की शर्ट भी पहन ली। दोनों की जब स्टूडियो में मुलाकात हुई, अचानक गुरुदत्त की नजर देवानंद की कमीज पर गई। उन्हें पहचानी सी लगी और वे पूछ बैठे, ये कमीज आपने कहाँ से खरीदी? देवानंद थोड़ा सकपकाए पर बोले, ये शर्ट मेरे स्त्री वाले ने किसी की सालगिरह पर पहनने के लिए दी है। लेकिन जनाब, आपने जो कमीज पहनी है वो कहाँ से खरीदी? गुरुदत्त ने शरारती अंदाज में कहा कि ये कमीज उन्होंने कहीं से चुराई है। दोनों को बात समझ में आ गई और जोरदार ठहाका लगाते हुए एक दूसरे के गले मिल गए और फिर उनकी दोस्ती का बंधन हमेशा के लिए मजबूत हो गया। पूना शहर में घूमते हुए एक दिन गुरुदत्त ने देवानंद से कहा, देव, अगर मैं कभी निर्देशक बनूंगा तो तुम मेरे पहले हीरो होगे। देवानंद ने उतनी ही गहनता से जवाब दिया, और अगर मैंने कभी कोई फिल्म प्रोड्यूस की तो तुम मेरे पहले निर्देशक होगे।

देवानंद को ये वादा याद रहा। जब नौकेतन फिल्म्स के बैनर तले बाजी फिल्म बनने का फैसला हुआ तो निर्देशन की जिम्मेदारी देवानंद ने गुरुदत्त को सौंपी।

ये था बाजी फिल्म का गीत। बाजी के ही सेट पर उनकी मुलाकात गायिका गीता रॉय से हुई और दोनों के बीच प्रेम का झरना प्रस्फुटित हुआ। उस समय गीता रॉय एक पार्श्व गायिका के रूप में मशहूर हो चुकी थी। उनके पास एक लंबी गाड़ी हुआ करती थी। वो गुरुदत्त से मिलने उनके माटुंगा वाले फ्लैट पर आया करती थी। सरल इतनी थी कि रसोई में वे सब्जी काटने बैठ जाती थी। अपने घर से वो ये कहकर निकलती थी कि वो गुरुदत्त की बहन से मिलने जा रही हैं। उस दौरान राज खोसला गुरुदत्त के असिस्टेंट हुआ करते थे। उन्हें गाने का बड़ा शौक था। गुरुदत्त के यहाँ होने वाली बैठकों में राज खोसला और गीता रॉय डुएट गाया करते थे और पूरा दत्त परिवार बैठकर उनके गाने सुनता था। गुरुदत्त की छोटी बहन ललिता लाजमी गुरुदत्त और गीता के प्रेम पत्र एक दूसरे के पास पहुंचाया करती थी और 1953 में गुरुदत्त और गीता रॉय विवाह के बंधन में बंध गए।

0: गुरुदत्त ने अपने फिल्मी करियर में कई नए तकनीकी प्रयोग भी किए। जैसे फिल्मबाजी में उन्होंने दो नए प्रयोग किए। 100 mm के लेंस का क्लोजअप के लिए इस्तेमाल पहली बार किया, करीब 14 बार। इससे पहले कैमरा इतने पास कभी नहीं आया कि उन दिनों कलाकारों को बड़ी असहजता के अनुभव से गुजरना पड़ा। तब से उस स्टाइल का नाम ही गुरुदत्त शॉट पड़ा।
1: बैठ जाओ। जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो जानते हो रास्ता कहाँ जाके खत्म होता है?
2: यहीं, इसी जगह।
1: वाह वाह, क्या कहने सादर जवाबी।
2: आपको और कुछ पूछना है?
1: हाँ, बहुत कुछ पूछना है। तुमने अपने आप को समझ के रखा है? यहाँ अच्छो अच्छो के छक्के छूट जाते हैं। तमीज से बात करो।
2: आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में डाल देंगे। मैं उसके लिए तैयार होकर आया हूँ।
1: देखो, मुझे तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं, ना ही मैंने कभी अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया, और ना ही मैं तुम्हारे सुख बदला लेना चाहता हूँ।
2: दूसरे ले ही चुके हैं, आप भी ले लीजिए।
1: कौन ले रहा है बदले तुमसे?
2: कोई नहीं।
1: सुनो, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलवाया है कि तुम ये नीच काम फॉर्म छोड़ दो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तुम्हें कहीं अच्छी जगह नौकरी दिलवा दूंगा।
2: मुझसे कहे कि इतनी हमदर्दी? समझा,
1: मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है। मुझे तो सिर्फ उस लड़की का ख्याल आता है जो तुम्हारी वजह से इतनी परेशान है। क्या तुम्हारा उसकी तरफ कोई फर्ज नहीं है? तुम नहीं जानते वो तुम्हें कितना प्यार करती है।

किसी भी फिल्म में पहली बार गानों का उपयोग कहानी को आगे बढ़ाने के लिए किया गया, वैसी ही फिल्म कागज के फूल हिंदुस्तान में सिनेमा स्कोप में बनी पहली फिल्म थी। दरअसल इस फिल्म के लिए गुरुदत्त कुछ अनोखा, कुछ हटके करना चाहते थे, जो आज तक भारतीय फिल्म के इतिहास में कभी नहीं हुआ। संयोग से तभी एक हॉलीवुड की फिल्म कंपनी 20th Century Fox ने उन दिनों भारत में किसी सिनेमा स्कोप में बनने वाली फिल्म की शूटिंग खत्म की थी और उसके स्पेशल लेंस मुंबई में उनके ऑफिस में छूट गए थे। जब गुरुदत्त को इसका पता चला तो वे अपने सिनेमेटोग्राफर वी के मूर्ति को लेकर तुरंत वहां गए, लेंस लेकर कुछ प्रयोग किए, रशेस देखे और फिर फिल्म के लिए इस फॉर्मेट का उपयोग किया।

संगीता दत्त की हसीन आवाज में गाए और फिल्म में स्टूडियो की पृष्ठभूमि में फिल्माए गए इस गीत में भी एक ऐसा प्रयोग किया गया जो बाद में बहुत मशहूर हुआ अपने बेहतरीन लाइटिंग की खूबसूरत संयोजन की वजह से। गुरुदत्त इस क्लाइमेक्स के सीन में कुछ अलग ही नाटकीयता और रियल लाइफ का विरोधाभास प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से व्यक्त करना चाहते थे। ब्लैक एंड व्हाइट रंगों से नायक और नायिका के मन की एक रस्ता खालीपन और दौलत के खत्म होते एहसास को अलग ही अंदाज में फिल्माना चाहते थे। जिस दिन उन्होंने नटराज स्टूडियो में शूटिंग शुरू की तो उनके सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति ने उन्हें वेंटिलेटर से छन कर आती धूप की एक तेज किरण दिखाई तो गुरुदत्त बेहद रोमांचित हो उठे और उन्होंने इस इफेक्ट को ही उपयोग करने का मन बना लिया। वे वीके मूर्ति से बोले, मैं शूटिंग के लिए भी सनलाइट ही चाहता हूँ क्योंकि जिस प्रभाव की मैं कल्पना कर रहा हूँ वो बड़ी आर्क लाइट से अथवा कैमरे की अपर्चर को सेट करके नहीं आएगा। तो फिर तो बड़े बड़े आईने स्टूडियो के बाहर रखे गए जिनको बड़ी मेहनत से सेट करके वो प्रसिद्ध सीन शूट किया गया जिसमें गुरुदत्त और वहीदा के बीच में वो तेज रोशनी का बीम आता है। साथ में चेहरे के क्लोजअप में अनोखे फैंटम इफेक्ट से उत्पन्न हुए एम्बियंस से हम दर्शक ठगे से रह जाते हैं।

0: गुरुदत्त के नाम से लगता था कि वो बंगाली थे, लेकिन उनका जन्म मैंगलोर में हुआ था और उनकी मातृभाषा कोंकणी थी। उनको बचपन से ही नृत्य का बहुत शौक था, इसलिए 15 साल की उम्र में ही वो महान नर्तक उदय शंकर से नृत्य सीखने अल्मोड़ा चले गए। 16 साल की उम्र में उन्हें एक मिल में 40 रुपए माह की टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिली। जब उन्हें पहली तनख्वाह मिली तो उन्होंने अपने अध्यापक को एक भगवद गीता, माँ के लिए साड़ी, पिता के लिए कोट और बहन ललिता के लिए एक फ्रॉक खरीदी। गुरुदत्त जब गीता रॉय के लिए कोई उपहार खरीदते तो बहन ललिता के लिए भी कुछ न कुछ खरीद के लाया करते थे। गुरुदत्त भाई बहनों में सबसे बड़े थे और जब उनमें और दूसरे भाई आत्माराम में लड़ाई होती थी तो गुरुदत्त ही उन्हें आकर बचाते थे। उदय जी के पास ही गुरुदत्त को एहसास हो गया कि फिल्मों में वे न सिर्फ अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल कर पाएंगे बल्कि रोजगार से भी नाता जुड़ जाएगा। गुरुदत्त पुणे पहुंचे और थोड़ी जद्दोजहद के बाद उन्हें प्रभात फिल्म कंपनी में काम मिल गया। 1945 में फिल्म लाखा रानी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। 1946 में फिल्म हम एक है में उन्होंने सहायक निर्देशक और नृत्य निर्देशक की जिम्मेदारी भी संभाल ली। सन 1947 में प्रभात फिल्म कंपनी से गुरुदत्त का अनुबंध समाप्त हो गया। उन दिनों गुरुदत्त संघर्षरत देवानंद और रहमान के साथ एक कमरे में रहते थे। फिर गुरुदत्त मुंबई चले आए। वे करीब 10 माह तक बेरोजगार रहे। फिर उन्होंने अमिय चक्रवर्ती और ज्ञान मुखर्जी जैसे निर्देशकों के साथ काम किया। गुरुदत्त को उन दिनों लगने लगा कि वे जो करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें फिल्म निर्माता भी बनना होगा। उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी बना ली और उस बैनर पर पहली फिल्म आर पार बनाई जो सन 1954 में रिलीज हुई।
1: इधर आ, छोड़ता नहीं इधर आ, अपने दो रुपये, अरे समेट अपनी चिंदिया, अभी देखता क्या है, चल उठा खा जल्दी कर, पकड़ अपना कोट, वो रहा दरवाजा, सीधा देखा जा बाहर।

0: डर जा। अगर फिर मैंने तेरी कमीनी सूरत यहाँ देखी तो टांगे तोड़ दूंगा, याद रखो।
1: लाला जी, आप अगर इतने ऐठे हुए ना होते तो मैं आपको सब कुछ समझा देता।
0: अबे तू जाता है कि नहीं? जो कुछ देखा है उसके बाद कुछ समझना बाकी रह गया? हमारा नौकर और हमें तक उठने की कोशिश करता।
1: नौकर जरूर हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं सर भी नहीं उठा सकता।
0: नमक हराम की बातें तो सुनो, सर उठाएगा। अबे तेरी हैसियत ही क्या है सर उठाने की? कल तक तो सड़कों में भूखा मरता था, है? तुझ में और एक नीच भिखारी में फर्क क्या है?
1: वक्त वक्त की बात है लाला जी, आज यारों का वक्त ढीला है तो आप लाल पीले होकर बातें कर रहे हैं, और कल जब यही वक्त पलटे।
0: अबे जा जा, बड़ा आया वक्त पलटाने वाला, पहले किसी काबिल हो ले फिर आंख मिलाकर बात करना। चल दफा हो यहाँ से।
2: इसके बाद गुरुदत्त ने मिस्टर एंड मिसेस 55 बनाई सन 1955 में। ओपी नैयर के संगीत से सजी इस फिल्म के गाने खूब मशहूर हुए।

गुरुदत्त ने आगे भी जितने फिल्में बनाई उनमें गीत संगीत का संयोजन बेमिसाल रहा। चौदहवीं का चांद हिंदी सिनेमा के 10 सर्वश्रेष्ठ संगीत प्रधान फिल्मों में से एक गिना गया। उनकी फिल्मों के संगीत का आकर्षण आधी सदी से लगातार जादू जगा रहा है। आइए सुने ये गीत।

0: इसके बाद गुरुदत्त ने जो फिल्में बनाई उनमें प्यासा, कागज के फूल, साहब बीबी और गुलाम भारतीय फिल्मों के इतिहास में मील के पत्थर का काम किया। इन तीनों फिल्मों के निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त एक रूप हो गए। गुरुदत्त के बारे में अभिनेत्री वहीदा रहमान क्या कहती हैं?
1: आर्टिस्ट की क्या परेशानी है वो सोचते थे, गौर से देखते थे, फिर पूछते थे आर्टिस्ट को कि आपको तकलीफ क्या है, आप समझ नहीं पाए या ये करते वक्त आपको किस चीज की तकलीफ हो रही है। तो उससे फिर लगता था कि हाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ गुरुदत्त जी पूछते थे कि आपका कुछ प्रॉब्लम है, लगता है क्या है, क्या

0: में बनाई। उनमें प्यासा, कागज के फूल, साहबीबी और गुलाम भारतीय फिल्मों के इतिहास में मील के पत्थर का काम किया। इन तीनों फिल्मों के निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त एक रूप हो गए। गुरुदत्त के बारे में अभिनेत्री वहीदा रहमान क्या कहती हैं?
1: आर्टिस्ट की क्या परेशानी है वो सोचते थे, गौर से देखते थे, फिर पूछते थे आर्टिस्ट को कि आपको तकलीफ क्या है, आप समझ नहीं पाए या ये करते वक्त आपको किस चीज की तकलीफ हो रही है। तो उससे फिर लगता था कि हाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ गुरुदत्त जी पूछते थे कि आपका कुछ प्रॉब्लम है, लगता है क्या है, क्या तकलीफ हो रही है, आपको डायलॉग नहीं ठीक लग रहा है या मूवमेंट नहीं ठीक लग रहा है। तो उससे एक कॉन्फिडेंस आया कि ये तकलीफ हमारी पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता सकती हूँ कि ये नहीं हो रहा है मुझसे। डायरेक्ट तो वो बहुत ही बढ़िया थे क्योंकि वो बहुत गौर से देखते थे, वो खामोश रहते थे तो स्टडी करते थे कि किस कौन सा आर्टिस्ट क्या क्या किस हद तक क्या क्या कर सकता है। उसीलिए उनके मेरे परफॉर्मेंस या माला सिन्हा के प्यासा में या रहमान साहब या जॉनी वॉकर या महमूद वगैरह, वो सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होते थे क्योंकि उनके वो समझते थे इनकी ये इनकी लिमिट ये है, ये इनसे इतना ही ऐसे करवाओ। कागज के फूल में वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो एक गाना है जो अब तक मुझे बहुत यूनिक लगता है, इसलिए कि वो अपने जो कैरेक्टर है वो अपने ख्यालात को जाहिर कर रही हैं मगर बिना लिप मूवमेंट के, ये जैसे दिल की आवाज है। और मैंने कहा लिप मूवमेंट नहीं होगा ये कैसे गाना होगा, तो बोले आप कीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ, तो ये इससे फीलिंग है, ये लड़की अब वो इसमें नहीं है कि खुले खुले जाहिर करे अपने फीलिंग्स को, जैसे शॉट्स होंगे उस पर वो जैसे उसका विजुअली जैसे हम प्ले करेंगे तो गाना पीछे से बजेगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। और उसमें तो मैं कहूंगी एक्सप्रेशंस बहुत उन्होंने अच्छे एक्सप्लॉइट किए और उसकी जो फोटोग्राफी थी और लाइटिंग थी उससे और भी वो चीज एनहांस हुई थी मैंने और बढ़िया दिखती थी।

0: गुरुदत्त बचपन से ही बड़े रचनात्मक थे। उन्हें पतंगे उड़ाने का बड़ा शौक था। अपनी पतंगे खुद ही बनाते और फिर उड़ाते थे। उनका बचपन कोलकाता में गुजरा था, शायद इसीलिए उन्हें कोलकाता से बड़ा लगाव था। जब वे कोलकाता जाते तो गोलगप्पे और विक्टोरिया मेमोरियल के लॉन में बैठकर झालमुड़ी जरूर खाते थे। एक बार वहीं जब वे झालमुड़ी खा रहे थे तो देखा कि चारखाने की लुंगी और एक अजीब सी टोपी पहने, हाथ में तेल की बोतल लिए हुए एक मालिश वाला आवाज लगा रहा है।
1: विजय बाबू, आज सत्तार भाई आपकी स्पेशल मालिश करेंगे और वो भी फोकट।
0: वहीं से उनके मन में एक किरदार ने आकार लिया और जॉनी वॉकर के लिए खास तौर से ये गाना लिखवाया गया।
2: मालिश, तेल मालिश, जंपेल।

0: सकुचाए और उस नज्म को अपनी सुरीली आवाज में गाने लगे। गुरुदत्त ने उसे अपने टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किया और हूबहू अपनी फिल्म प्यासा में इस्तेमाल किया। स्टूडियो में रिकॉर्ड न होने की वजह से उसकी गुणवत्ता जरूर उतनी नहीं थी, लेकिन सीन में वास्तविकता जरूर आ गई।
1: गम इस कदर बढ़े कि

0: अरे बेटा सुन, इस चम्पी में बड़े बड़े गुण, सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चम्पी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, चाहे घबरा।
1: फिल्मी दुनिया के खजाने में गुरुदत्त से जुड़े तमाम किस्से हैं जो आज आपकी रेडियो सखी यहाँ आपको सुना रही है। एक बार गुरुदत्त ने तय किया कि वो साहिल लुधियानवी की नज्म को अपनी फिल्म में इस्तेमाल करेंगे। रिकॉर्डिंग के रिहर्सल के लिए तय समय पर मोहम्मद रफी उनके यहाँ पहुँच गए, लेकिन संगीतकार सचिन देव बर्मन पहुँचे नहीं थे। गुरुदत्त ने मोहम्मद रफी से कहा, आप संगीत के बादशाह हैं, आप क्यों नहीं बिना संगीत के इस नज्म को गुनगुना देते। रफी ने थोड़ी देर सोचा।

0: पे तरस खा के पी गया, ठुकरा रहा था मुझको।
1: तो ये शायर भी हैं?
2: शायर?
0: बड़ी
2: भाई तू देखती रही उसकी कुछ पांच से नगमे उसके सर के पीछे पड़ी हैं।
0: ठुकरा रहा था मुझको बड़ी देर से जहां, मैं आज सब जहान को ठुकरा गबे गया।
3: फिल्मों के सर्जक गुरुदत्त यूं तो स्वभाव से बड़े गंभीर और चुप रहने वाले थे, लेकिन गुरुदत्त के भीतर एक मस्ती करने वाला शरारती बच्चा भी था। वे पतंग उड़ाते, मछली पकड़ते और खूब फोटोग्राफी किया करते थे। लोनावाला में उनका एक फार्म हाउस था जहां वो हर साल जाकर खेती किया करते थे। उन्हें फिशिंग में भी दिलचस्पी थी। पवई झील में जॉनी वॉकर और गुरुदत्त खूब मछली पकड़ा करते थे। एक बार उन्हें एक स्कूटर पसंद आ गया। वे उसे चलाते हुए स्टूडियो जा रहे थे, तभी सिग्नल के पास गाड़ी रुकी तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया। वे जैसे तैसे गाड़ी से वहां से निकले। एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि कश्मीर में उन्होंने एक बार एक शिकारा देखा तो वे उस शिकारा को कश्मीर से खुलवाकर पवई झील ले आए थे।

आधे घंटे के इस विशेष कार्यक्रम में गुरुदत्त रूपी आसमान को समेटना मुश्किल है। आज हमने उनकी फिल्मोग्राफी की बहुत ज्यादा चर्चा न करते हुए हमने की उनके बारे में किस्सा गोई।

इस कार्यक्रम में शोध, आलेख और स्वर आपकी इस रेडियो सखी ममता सिंह का था। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की।
1: हम भारत में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर मॉड्यूल्स और विंड मिल्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। हमने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का लक्ष्य रखा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया स्थिरता के स्वाभाविक और विश्वसनीय स्तंभों के रूप में एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच संपन्न हुए व्यापार समझौते से आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है।
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री अल्बनीज ने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर मजबूती से अग्रसर है।
2: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक साझेदारी को नई दिशा देने के लिए व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया है। मेलबर्न में आयोजित भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग अब पारंपरिक कूटनीतिक ढांचे से आगे बढ़कर भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश और औद्योगिक सहयोग लगातार विस्तार पा रहा है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्वेडर ने आज मेलबर्न में इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि निवेश भारत के विकास पथ पर दुनिया भर के विश्वास को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल वाराणसी में राज्य के शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का निशुल्क चिकित्सा उपचार मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2026 के दौरान इसके 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि दिल्ली की सभी मुख्य सड़कों पर जल भराव की स्थिति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी संबंधित एजेंसियां अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिन में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्ष में सिंगल्स क्वार्टर

0: फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का 4th मैच आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी सासाराम से FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे साहित्यिक कार्यक्रम में हिंदी वार्ता का कार्यक्रम। हिंदी वार्ता कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर अमल सिंह भिक्षुक की एक वार्ता। विषय है जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक जीवन।
2: हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का जीवन वास्तव में श्रेष्ठ और प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने आत्मकथा नहीं लिखी, जिससे उनके जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना कठिन हो गया है। उनके जीवन से जुड़ी जानकारी मुख्य रूप से उनकी जन्म और मृत्यु की तिथियों तक ही सीमित है। हालांकि उनके साहित्यिक कृतियों और उपलब्ध कुछ प्रसंगों से उनके जीवन की झलक प्राप्त की जा सकती है। प्रसाद ने अपने जीवन की कठिनाइयों और कड़वाहट को सहन करते हुए साहित्य प्रेमियों को जो मधुर अनुभव प्रदान किया, वही उनके नाम को सार्थक बनाता है। जयशंकर प्रसाद का परिवार मूल रूप से गाजीपुर जिले के सैयदपुर का निवासी था और उनका पारंपरिक व्यवसाय वाणिज्य था। चीनी के व्यापार में घाटा होने के कारण उनके पूर्वज जगन साहू काशी आ गए। प्रसाद का परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था और उनके परिवार को धनी और उदार होने के कारण काशी के दरबार में भी सम्मान प्राप्त था। उनके घर में विद्वानों और गणमान्य लोगों का हमेशा आना जाना लगा रहता था। जयशंकर प्रसाद का जन्म माघ शुक्ल दशमी संवत 1946 अर्थात 30 जनवरी को हुआ था। उनका प्रारंभिक नाम झारखंडी रखा गया, जो बैद्यनाथ धाम में नामकरण संस्कार के दौरान दिया गया। जब वे केवल 5 वर्ष के थे, तब संस्कार संपन्न करने के लिए उन्हें जौनपुर और विंध्याचल ले जाया गया। प्रसाद का परिवार शिव शक्ति का उपासक था। बाल्यावस्था में ही उन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक यात्राओं का अनुभव मिला। 9 वर्ष की आयु में उन्होंने चित्रकूट, नैमिषारण्य, मथुरा, ओंकारेश्वर, धारा क्षेत्र और उज्जैन जैसी पवित्र जगहों की लंबी यात्रा की। यही धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश उनके कवि बनने की प्रेरणा का आधार बना। जयशंकर प्रसाद की शिक्षा मुख्य रूप से घर पर ही हुई। उनके लिए संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी के शिक्षक नियुक्त किए गए थे। कुछ समय बाद उनका दाखिला काशी के क्वींस कॉलेज में कराया गया, लेकिन वे केवल 8वीं कक्षा तक ही स्कूल की पढ़ाई कर सके। प्रसाद स्वभाव से ही अध्ययनशील थे, इसलिए उन्होंने घर पर ही नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखी और बाद में दर्शन शास्त्र का भी गहन अध्ययन किया। सोहनी लाल जी रसमय सिद्ध उनके प्रमुख गुरु थे। उन्हीं की प्रेरणा से प्रसाद ने उपनिषद, पुराण, वेद और भारतीय दर्शन का गहन अध्ययन किया। इस अध्ययन और गहन चिंतन का प्रभाव उनके साहित्य में झलकता है, जो इसे अद्वितीय और अनुप्राणित बनाता है। कविता के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद ने शुरुआत में कलाधर उपनाम से रचनाएं की। उनकी प्रारंभिक कविताएं ब्रजभाषा में लिखी गई थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को अपना लिया। कवि जीवन के आरंभिक दौर में प्रसाद को प्रेरणा देने वाले प्रमुख व्यक्तियों में उनके पड़ोसी मुंशी कालिंदी प्रसाद और रीवा निवासी श्री रामानंद शामिल थे। मुंशी कालिंदी प्रसाद उर्दू और फारसी के विद्वान थे, जबकि उनके शिक्षक मोहनीलाल गुप्त स्वयं एक कवि थे। इन व्यक्तियों का प्रभाव प्रसाद के काव्य लेखन पर स्पष्ट रूप से दिखता है। 15 वर्ष की आयु में ही प्रसाद ने कविता लिखना शुरू कर दिया था। इतिहास के प्रतिष्ठित प्रोफेसर घोष के व्याख्यान सुनने से उनके भीतर इतिहास के प्रति रुचि विकसित हुई। इसका प्रभाव यह हुआ कि प्रसाद धार्मिक और अतीत प्रेमी बन गए। उनके उपन्यासों, कहानियों, नाटकों और काव्यों में इतिहास और धर्म के प्रति यह गहरी रुचि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जयशंकर प्रसाद का जीवन बाल्यावस्था से ही संघर्षों भरा रहा। मात्र 12 वर्ष की आयु में वे पिता के स्नेह से वंचित हो गए। 15 वर्ष की उम्र में माता का साया भी उठ गया और 17 वर्ष की आयु में उनके ज्येष्ठ बंधु का निधन हो गया। पिता की मृत्यु के बाद घर का व्यवसाय कठिनाई में आ गया, लेकिन प्रसाद ने अपने गंभीर

और धैर्यशील स्वभाव के बल पर इसे संभाल लिया। संघर्षों के बीच उनका व्यक्तित्व और अधिक मजबूत और परिपक्व होता गया। 20 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ, लेकिन उनका दाम्पत्य जीवन केवल 10 वर्षों तक जैसे तैसे चला। पहली पत्नी के निधन के बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया, लेकिन उनकी दूसरी पत्नी प्रसव के दौरान बच्चे समेत चल बसी। कुछ समय बाद उन्होंने तीसरा विवाह किया और इसी विवाह से उनके पुत्र रत्न शंकर का जन्म हुआ। इन पारिवारिक उतार चढ़ावों और व्यक्तिगत दुखों का गहरा प्रभाव प्रसाद के मन पर पड़ा। उनके साहित्य में प्रेम के आदर्श और उदात्त रूप बार बार उभरते हैं, जो उनकी अतृप्त इच्छाओं और भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। उनके काव्य और रचनाओं में यह प्रेम गहन संवेदनशीलता के साथ प्रकट होता है। जयशंकर प्रसाद का युग साहित्यिक, राजनीतिक और आर्थिक आंदोलनों का युग था, जिसका प्रभाव उनके जीवन और साहित्य पर गहराई से पड़ा। साहित्यिक आंदोलनों में महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका सरस्वती को केंद्र में माना जाता है, जिसने भाषा के विकास और इतिवृत्तात्मक शैली को प्रोत्साहित किया। प्रसाद ने अपनी एक रचना सरस्वती पत्रिका को भेजी थी, लेकिन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसे अस्वीकार कर लौटा दिया। इस घटना से प्रसाद को गहरा दुख हुआ, जिसके बाद उन्होंने स्वयं इंदु मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इंदु पत्रिका में प्रसाद ने अपने साहित्य का बड़ा हिस्सा प्रकाशित किया। यह पत्रिका 1909 से लेकर 1916 तक चली, लेकिन बाद में इसे बंद करना पड़ा। द्विवेदी युग में साहित्य की विभिन्न विधाओं का पर्याप्त विकास हुआ और अकेले प्रसाद के साहित्य में नाटक, कविता, उपन्यास, निबंध और कहानी जैसे सभी प्रमुख विधाओं का समावेश देखा जा सकता है। प्रसाद के समय में राजनीतिक आंदोलन भी अपने चरम पर थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के तहत अंग्रेजों और भारतीय जनता के बीच असहयोग और संघर्ष बढ़ता जा रहा था। दमन, शोषण और विद्रोही लहरें उभर रही थी। इन परिस्थितियों का प्रभाव प्रसाद और उनके समकालीन साहित्यकारों पर स्पष्ट रूप से दिखता है। विद्रोही विचारधाराओं के प्रति प्रसाद की प्रतिक्रिया उनके साहित्य, विशेषकर नाटकों में साफ दिखता है। उनके नाटक इन सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों का कलात्मक उत्तर प्रस्तुत करते हैं। प्रसाद जैसे साहित्यिक मनीषी का जीवन सचमुच रोमांचक है। उनके साहित्यिक जीवन में उनका मानसिक एवं आत्मीय जीवन का क्रमशः विकास निश्चित तौर पर देखी जा सकती है। उन्होंने काव्य, कथा, नाटक, निबंध आदि महत्वपूर्ण साहित्यिक विधाओं में आधिकारिक कृतियों के माध्यम से योगदान दिया। प्रसाद के साहित्यिक जीवन को किशोरीलाल गुप्त ने 5 विभाग किए हैं। उनके मतानुसार प्रसाद के साहित्यिक विकास की पहली श्रेणी सन 1909 में समाप्त होती है। इस युग का साहित्य चित्रधार द्वितीय संस्करण में है। प्रसाद की इन रचनाओं पर भारतेंदु युग का पूर्ण प्रभाव है। सन 1910 से 1914 तक के समय को प्रसाद साहित्य का दूसरा युग कह सकते हैं। इस युग की रचनाएं हैं कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक काव्य, कल्याणी परिचय, राजश्री नाटक, छाया कहानी संग्रह। प्रसाद के साहित्य का तीसरा युग 1914 से 1920 तक चलता है। इस युग में प्रसाद ने केवल कविताएं लिखी और इतिहास का गंभीर अध्ययन किया। इस युग में झरना नामक काव्य संग्रह लिखा। प्रसाद के साहित्यिक इतिहास का चौथा युग 1921 से आरंभ होता है और 1928 में जाकर समाप्त होता है। प्रसाद का यह युग अत्यंत सृजनशील है। इस युग को भावना युग भी कह सकते हैं। इसी युग की रचनाओं ने प्रसाद को प्रसाद बनाया। इस युग में कवि जीवन की साधना से दूर विश्व की एकांत कोने में बैठा अपने स्वर्ण संसार में लीन है। इतिहास का अध्ययन गहन है और अतीत के मर्म तक पहुंचने वाली दृष्टि भी पैनी है। इसीलिए कवि अपने हृदय का, मानव हृदय का पूर्ण पारखी है। इस युग की कृतियां हैं विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागजग, कामना, स्कंदगुप्त, राजश्री, चंद्रगुप्त नाटक, प्रतिध्वनि, आकाशदीप कहानी, कंकाल उपन्यास तथा कुछ निबंध। प्रसाद के साहित्यिक जीवन का पांचवा युग 1928 से आरंभ होकर उनके जीवन पर्यंत चलता है। इस युग में कवि की दृष्टि भावना जगत की अपेक्षा जीवन जगत की ओर अधिक है। आधुनिक युग की समस्याओं का उस पर प्रभाव पड़ा है। कंजड़, ईरानी, शराबी सभी की ओर इनकी दृष्टि जाती है। इस युग में भावना एवं चिंतन का गठबंधन और संतुलन हुआ है। इस युग की रचनाएं हैं आंसू, लहर, कमायनी काव्य, एक घूंट और ध्रुस्वामिनी नाटक, आंधी इंद्रजाल कहानी, तितली उपन्यास, काव्य कला तथा अन्य निबंध संग्रह। प्रसाद के साहित्यिक जीवन पर दृष्टि डालने से यह ज्ञात होगा कि वे एक विकासमान व्यक्तित्व के कलाकार हैं। आरंभ में उनकी रचनाएं शिथिल हैं, उनमें परंपरा की छाया भी दृष्टिगत होती हैं, पर प्रसाद ने अनुभूत

0: और शिल्प दोनों दिशाओं में सतत जागरूक दृष्टि का परिचय दिया। इसी कारण वे चित्रधार जैसी साधारण कृतियों की आरंभिक भूमिका से उठकर कामायनी जैसी महत्वपूर्ण रचनाओं तक जा सके हैं। उनका समस्त साहित्य मानवीय और सांस्कृतिक भूमिका पर स्थित है। उनकी प्रेम सौंदर्य आदि की अनुभूति मानवीयता से संबंध रखती है। प्रसाद की सांस्कृतिक दृष्टि नाटकों में अधिक स्पष्ट नजर आती है। आंतरिक अनुभूतियों का प्रकाशन उनकी कविताओं में स्पष्ट है। आंसू तो उनके व्यक्तित्व का पूर्ण प्रतिफलन ही बन गया है। नाटकों में उन्होंने एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रयत्न किया है। वे भारतीय अतीत की सांस्कृतिक चेतना को इतिहास के माध्यम से अभिव्यक्ति देना चाहते हैं। कवि की भारतीय इतिहास दर्शन और संस्कृति के प्रति रागात्मकता सर्वत्र देखी जा सकती है। मूलतः प्रसाद की चेतना कवि से संबद्ध है, पर मानवीयता और सांस्कृतिक दृष्टि भी का भी उसमें योग है। छायावादी आंदोलन की जितनी अधिक प्रवृत्तियां प्रसाद के साहित्य में मिलती हैं, उतनी अन्य किसी भी छायावादी कवि में नहीं। अनुभूति की गहनता, लाक्षणिक शैली, गीतिमयता, प्रेमानुभूति, सौंदर्य चेतना, कल्पना तत्व, सांस्कृतिक भावना, आदर्शवादी दृष्टि, आत्म प्रकाशन आदि के जो भी गुण छायावादी काव्य में प्रमुखता से प्राप्त हैं, उनका सर्वाधिक प्रतिफलन प्रसाद साहित्य में मिलता है। कामायनी जैसी कृतियों में छायावाद अपने चरम पर है। उसमें छायावाद की संपूर्ण प्रवृत्तियों का प्रतिफलन है। छायावाद से कामायनी को हटा दिया जाने पर एक विचित्र शून्यता दिखती है। इस दृष्टि से कामायनी विशिष्टता प्राप्त करती है, नहीं तो एक महत्वपूर्ण साहित्य आंदोलन महाकाव्य से वंचित रह जाता। इस प्रकार प्रसाद के संपूर्ण व्यक्तित्व पर नजर रखने से यह ज्ञात हुआ कि प्रसाद ने अपनी अनुभूति और चिंतना को विभिन्न माध्यम से प्रस्तुत किया है। इतिहास और संस्कृति की दृष्टि से उनके नाटकों में आंतरिक अनुभूति का प्रकाशन, उनके काव्यों में पात्रों की द्वंद्वात्मक स्थिति के कारण गीतिमयता उनके कहानियों में, और अधिक यथार्थवादनी दृष्टि उनके उपन्यासों में दृष्टिगत होता है। अपेक्षाकृत उनका निधन जल्दी हो गया, जबकि वे उस समय प्रौढ़ता के चरम पर पहुंच चुके थे। प्रसाद जी यदि कुछ वर्ष और जिंदा रहते तो उनकी अन्य प्रौढ़ कृतियां भी हमारे सामने होती।
1: डॉक्टर अमल सिंह भिक्षुक से अभी आपने सुनी ये वार्ता। हिंदी कार्यक्रम हिंदी वार्ता के अंतर्गत हम आपको बताना चाहेंगे कि जी हाँ, जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के चार स्तंभों में से एक थे और उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कामायनी आज भी एक प्रसिद्ध महाकाव्य में शामिल है। तो हिंदी वार्ता कार्यक्रम में अभी आपने जयशंकर प्रसाद के साहित्यिक जीवन पर डॉक्टर अमल सिंह भिक्षुक से ये वार्ता सुनी और अब बारी है कविता पाठ का। जी हाँ, सुनाते हैं आपको दिनेश गर्ग की आवाज में ये काव्य पाठ।
2: रत

छोड़ चले चौराहे बुझ रहा अलाव, छोड़ चले चौराहे बुझ रहा अलाव, रत्ती भर धूप देख ललच गया गाँव, ठिठुरे तन दौड़ पड़े पाने को ठाँव।

पारती भर धूप देख ललच गया गाँव, ठिठुरे तन दौड़ पड़े पाने को ठाँव।

ये छप्पर पर छाई है चिड़ियों की चाँव, छप्पर पर छाई है चिड़ियों की चाँव, रत्ती भर धूप देख ललच गया गाँव, रत्ती भर धूप देख चौखट से निकल गई कुतिया बेचारी, चौखट से निकल गई कुतिया बेचारी, खुट्टे की बछिया भी कूलाचा मारी, खुट्टे की बछिया भी कूलाचा मारी, कौओं के पंख फूले बोल गए कांव, कौओं के

को ठाव। दूसरी कविता है मेहनत का फल। इसी गांव की भूतही धरती, इसी गांव की भूतही धरती, कूस का सदियों से परती, विधवा के बिखरे बालोसी, बुढ़े हाथी की खालोसी, जहां ससक की जोड़ी चरती, इसी गांव की भूतही धरती। रोज रात भर कहर कहर कर, यहां निकलते शब्द ठहर कर, पढ़ते थे जो जंतर मंतर, कहते थे यह बांझिन बंजर, पहले हलवा है को हरती, इसी गांव की भूतही धरती। यहाँ रात दिन अजगर पलते, बिषधर के दो दांत निकलते, यहीं टिटिभ उड़ते चिल्लाते, दौड़ दौड़ कर पंख हिलाते, हवा रोज दुर्गंधी भरती, इसी गांव की भूतही धरती। इसी भूमि पर श्रम का डेरा, लाया है एक नया सवेरा, फूलों की क्यारी मुस्काती, रोज घूमने बस्ती आती, हवा खेलने यहीं उतरती, इसी गांव की भूतही धरती। इसी गोद में पके आम हैं, इसी गोद में पके आम हैं, अमरूदों के बड़े नाम हैं, यहीं चहकते रैन बसेरा, यहीं कोकिला का है डेरा, यहीं गिलहरी कुछ कुछ करती, इसी गांव की भूतही धरती। धरती मेहनत को अपनाती, फूलों में खुशबू बन जाती, अपने तन का दूध पिलाती, इसीलिए माता कहलाती, दाने दाने में अवतरती, इसी गांव की भूतही धरती। तीसरी कविता है शिक्षा का दीप। मुनिया रानी पानी लाती, खेतों पर खाना पहुंचाती, गाय बैल को खिला पिलाकर गोबर काढ़ किनारे रखती, आंगन वाली धूप देखकर ठीक समय पर पढ़ने जाती, बाबूजी हलवाही करते, माँ करती है खेत रुपाई, दोनों मिलकर रोज बरसते, कर दे मुनिया बंद पढ़ाई, मुनिया मन ही मन मुस्काती, रात रात भर दीप जलाती, रोज का कहरा गिनती लिखती, हिंदी वाली पोथी पढ़ती, धीरे धीरे चली पढ़ाई, अंग्रेजी भी लिखने आई, मुनिया माँ को लगी बताने, वर्णाक्षर का भेद पढ़ाने, तख्ती पर कुछ शब्द लिखकर मिठी बोली में समझाने, माँ को भी जब बोध हो गया, कुछ दिन में अज्ञान खो गया, ऐसे ही दीपक जलता है, एक एक से जग पलता है, हम सब मिलकर करें प्रकाश, उज्ज्वल हो धरती आकाश। और एक कविता है पोखर का गांव। बचपन की यादों में सिमटा वह पोखर का गांव।

अगर चाहते हो सवेरा नया हो तो मेहनत का सूरज उगाना पड़ेगा। जी हाँ, अभी आप सुन रहे थे दिनेश गर्ग से उनका काव्य पाठ। साहित्य की कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाह्न के 10:30 हो रहे हैं। लोक माधुरी कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए कुछ भोजपुरी एल्बम लोकगीत। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं भरत शर्मा व्यास की आवाज़ में महेंद्र मिश्रा का लिखा हुआ एक लोकगीत। धुन बनाया है भरत शर्मा व्यास ने और एल्बम है आधी आधी रतिया के।

भरत शर्मा व्यास से अभी आप सुन रहे थे आधी आधी रतिया के एल्बम का ये भोजपुरी एल्बम लोकगीत। और अब लीजिए सुनिए शारदा सिन्हा की आवाज़ में एक पारंपरिक भोजपुरी एल्बम लोकगीत। धुन बनाई है शारदा सिन्हा ने और एल्बम है परदेसिया बलमुआ।

शारदा सिन्हा के गाए हुए इसी भोजपुरी लोकगीत के साथ ही हमारा आज का लोक माधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। और अब आकाशवाणी सासाराम में बारी है रसधार कार्यक्रम की। रसधार कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कुछ भोजपुरी एल्बम सॉन्ग। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं एक भक्ति रचना सुमित बाबा के स्वर में। इसे लिखा है विनोद कुमार पांडे ने, संगीतबद्ध किया है NK नंदन ने और एल्बम है सरस्वती पूजा।

तू ही लक्ष्मी सरस्वती, तू ही गौरी पार्वती। अभी आपने सुना सुमित बाबा की आवाज़ में ये भक्ति रचना। रसधार कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए रितु रॉय की आवाज़ में पिया मधुसूदन का लिखा हुआ एक गीत। संगीत शेखर शर्मा का है और एल्बम है पूछे भारत कैकई माई से।

कोना करण भेज देलू हमरा भाई के। जी हाँ, पूछे भारत कैकई माई से इस एल्बम का ये एल्बम सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे ऋतु रॉय की आवाज़ में। और अब कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए मोंटी बाबा के स्वर में सोरहो सिंगार एल्बम का ये एल्बम सॉन्ग।

सरहो सिंगार में समान स्पेशल भभुआ से लहिया लहठिया हो। मोंटी बाबा की आवाज़ में अभी आपने सुना सरहो सिंगार एल्बम से लिया गया ये भोजपुरी एल्बम सॉन्ग। और अब इसी के साथ हमारा आज का रसधार कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाहन के 11 बजने वाले हैं, तो आइए चलते हैं आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र। सुनते रहिए आकाशवाणी का सासाराम केंद्र, जुड़े रहिए हमसे। आप सभी का दिन शुभ हो।

0: तरंग।
1: रंग तरंग कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं बेगम अख्तर की गाई इस गजल से।

बेगम अख्तर की गाई गजल हम चंद लम्हों के बाद सुनवाएंगे। पहले पेश ये खिदमत है गुलाम अली की आवाज में ये गजल। कलाम है नासिर काजमी का।

नासिर काजमी का कलाम था, गुलाम अली की आवाज थी, ये थी एक गजल। लीजिए अब पेश है पंकज उधास की गाई गजल, कलाम है राजेश रेड्डी का, मौसिकी पंकज उधास की, एल्बम का नाम है नबील।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

वर्षा ऋतु एल्बम से आप सुन रहे थे तलत महमूद का गाया ये गीत। रचना थी मुरली मनोहर स्वरूप की, संगीत भी मुरली मनोहर स्वरूप का था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। लीजिए पेश है तलत अजीज की आवाज में ये गजल। कलाम है कतील शिफाई का, मौसीकी तलत अजीज की।

0: तलत अजीज की गाई ये गजल अभी आप सुन रहे थे। कलाम था कतील शिफाई का, मौसिकी तलत अजीज की थी। आइए अब सुनते हैं सनसेट पॉइंट एल्बम से भूपेंद्र के स्वर में ये गीत, रचना गुलजार की, संगीत विशाल भारद्वाज का।
1: आसमान का रंग बदल रहा था, रात कच्ची पड़ रही थी।
0: ये स्वर गुलजार का है।
1: पंछी पास के पेड़ से उड़ा और सुबह गुलाने आसमान की तरफ निकल गया। वो पुल के उस किनारे पर आकर खड़ी हो गई जहां से अगला कदम जिंदगी का आखिरी कदम था। एक भोले भाले भेड़ के बच्चे ने उसे रोक लिया। गडरिये भटकी हुई भेड़ों को राह दिखाते हैं, ईसा भी यही करते थे।

पकड़ के बोझ अपने घर ले गया। अरे ताल से पानी सूखा है, आसमान तो नहीं सूख गया? फिर मेघ आएगा, फिर जल भरेगा। चल।

0: इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: को क्यों देखते हो और मेरे पांव की जंजीर को क्यों देखते हो। तुम तो कहते थे मेरी शक्ल से नफरत है तुम्हें, मुझसे छुपकर मेरी तस्वीर को क्यों देखते हो।
1: छुरी से तीर से तलवार से क्या होने वाला है, हमें तो इन हसीनों की नजर ने मार डाला है। नजर जो उठी तो दुआ बन गई, नजर जो झुकी तो हया बन गई, नजर तिरछी की

नजर जो झुकी तो हया बन गई, नजर तिरछी की तो अदा बन गई, नजर फेर ली तो कजा बन गई, नजर जब उठी मेहरबान हो गई, नजर जब मिली तो जवां हो गई, जो पलटी तो दिल की जबां हो गई, जो

झूठा तुम्हारा प्यार भी झूठा, तुम्हारी जात भी झूठी, तुम्हारे होंठ भी झूठे, तुम्हारी बात भी झूठी, तुम्हारा हर इरादा हर तमन्ना हर गिला झूठा, तुम्हारे फूल झूठे बाग झूठा आशियां झूठा, वफा झूठी जफा झूठी सितम झूठा करम झूठा, कसम है सर से लेकर पांव तक तू ऐ सनम झूठा, तुम्हारा नाम झूठा तुम्हारा

कि अब हमको फुर्सत नहीं, मैं तुम्हें याद करने की जिद छोड़ दूँ।

हुस्न की हर अदा हमको मंजूर है। अदा पर नाज पर हर आदमी कुर्बान होता है। जो अच्छी चीज होती है उधर ही ध्यान होता है। किया था वादा कि कल आएंगे चराग जले और तमाम रात चरागों से दिल के दाग जले। ये दर्द भी दौलत है, ये दाग भी दौलत है, ये जितनी भी दौलत है सब तेरी बदौलत है। बराबर खफा हो बराबर मनाए, न तुम बाज आओ न हम बाज आए। क्योंकि भीगी जुल्फों को शानों पर झटक कर छोड़ देते हैं, बरसने वाले बादल अपना भी रुख मोड़ लेते हैं और

नजर झुकाओ, हसीनों का एहतराम करो, है मेरा नाम जवानी मुझे सलाम करो, जो हुस्न चाहे तो लग जाए हाथ पानी में, अजी किसी हसीन को देखा भी है जवानी में, शमा ने आग रखी, शमा ने आग रखी सर

0: सच्चा है तो फिर तुम मुझे रुसवा न करो। चांद ऊंचा
1: डाकू हसीना फिल्म की एक कव्वाली आप सुन रहे थे दिलावर बाबू और साथियों की आवाजों में। इसी के साथ आज का रंग तिरंगे प्रोग्राम खत्म होता है।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को

0: और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया, जो समानांतर यात्राओं से एकीकृत भविष्य के लिए तैयार साझेदारी में परिवर्तित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र, बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता की थी, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एबीवीपी के सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में 0.7% की बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 561 अंक बढ़कर 77,065 पर और निफ्टी 179 अंक की बढ़ोतरी के साथ 24,061 पर था। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मौसम फिल्म के गाने से। लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाजें हैं, गुलजार के बोल, मदन मोहन।

0: शरणार्थी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?

0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आपकी कसम इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुन

0: सुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर यह है कार्यक्रम यादों की महफिल। खिलौना फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज।

खिलौना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और आज है जाने माने अभिनेता संजीव कुमार का जन्मदिन। अब आपको सुनवा रहे हैं दस्तक फिल्म का ये गाना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल मदन मोहन का संगीत, आवाज मदन मोहन की।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए अब सुनते हैं महेंद्र कपूर, आशा भोसले, सुषमा श्रेष्ठ और साथियों की आवाजों में ये गाना फिल्म पति पत्नी और वो।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विधाता फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सुरेश वाटकर, अनवर और साथियों की आवाजों में। रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में ये था हसरत जयपुरी का लिखा गीत। संगीत शंकर जयकिशन का था और फिल्म थी जिंदगी। गृह प्रवेश फिल्म का गाना सुलक्षणा पंडित की आवाज, गुलजार के बोल कनु रॉय का संगीत है।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा, लो पास से शुरू करती हूँ।

गृह प्रवेश फिल्म का गाना आप सुन रहे थे भूपिंदर और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में। शब्दकार थे गुलजार, संगीतकार कनु रॉय। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। तो भाई, जो लोग, जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर हैं उपस्थित, तो उन्हें तो आज की इबारत की जानकारी हो ही गई होगी, लेकिन जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए हम बता देते हैं कि इस कार्यक्रम में हम एक इबारत लिखते हैं और उसमें जो शब्द होते हैं उन शब्दों से गीत हम श्रोताओं से कहते हैं ढूंढने के लिए, और कुछ पहेलियाँ होती हैं, गाने होते हैं, कुछ गाने श्रोताओं की पसंद की भी शामिल कर लिए जाते हैं। तो हम आज की इबारत जरा आपको पढ़कर सुना देते हैं। आंखें मन की खूबसूरत इबारत है, इनमें नींद और ख्वाबों का अनंत आसमान भी, यहीं सपने जन्म लेते हैं और उम्मीदों के रंग आकार पाते हैं। कभी ये खामोश रहकर भी दिल की हर बात कह देती हैं आंखें, तो कभी एक नजर ही पूरी कहानी लिख देती है। आंखों में इश्क का पहला एहसास प्यार की रोशनी ठहरती है, और कभी कोई चुपके से दिल भी चुरा लेता है। आंखों की चमक में हंसी खिलती है, खुशी झलकती है, और बिछड़ने का दर्द आंसुओं में ढल जाता है। कुछ आंखें ऐसी होती हैं जिनमें यादों की महकती खुशबू होती है। आंखें सचमुच मन का आईना है, इनमें नींद भी है, ख्वाब भी, सपने भी, बातें भी, हंसी भी, शब्द भी, खामोशियां भी, और सबसे बढ़कर इनमें वो जादू है जो बिना कुछ कहे किसी का दिल चुरा लेने की ताकत रखता है। किसी की आंखें देख चौदहवीं का चांद याद आता है, और अभी ये भी धुन सुनी थी आपने इसी गाने की। तो बताइए, आपकी आंखों में पहला ख्वाब कौन सा चमका था? रात भर किसी के लिए जाकर उसकी फिक्र कब की, किस सन में, किस साल, कौन सा ऐसा लम्हा था किसी के लिए आप जागते रहे? अपने बच्चे के लिए सभी माँ जागती है, सभी पिता जागते हैं। कभी जब बच्चा रोता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, या यूं ही बच्चे को थपकी देते हुए, ऐसे बहुत सारे लम्हात होते हैं जब आप जागते हैं किसी के लिए। कभी आपके नयन किसी से डर जाते हैं, क्या आप किसी की आँख की रोशनी बनना चाहते हैं? तो हमें ज़रा बताइए, फिलहाल बताइए कि वो कौन से शब्द हैं जिनसे आप गाने चुन सकते हैं। तो गानों की फेहरिस्त आप जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है आपके गाने और हमारे गाने एक हो जाएं, तो हम वही गाना सुनवाएंगे। और दोस्तों, आंखों में नींद होती है, ख्वाब होते हैं, कई बार जब हम जागरण करते हैं तो कुछ सोचते हैं, कुछ विचार करते हैं, कुछ लिख डालते हैं, ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ है? आंखों से दुनिया देखी जाती है, हम इंसान को परखने का काम भी आंखों से ही करते हैं, और आंखों से पढ़ाई लिखाई करके अपनी एक विचारधारा गढ़ते हैं। आपने क्या किया है बताइए, आप अपने अनुभव साझा करते रहिए। और हाँ, अगर जब इस संसार से विदा के बाद अपनी आंखें अगर किसी को दान कर दें, तो किसी की आंख की रोशनी बन सकती है। तो आपने ऐसा कुछ सोचा है तो वो भी बताइएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर। चलिए अब शुरू करते हैं सिलसिला कार्यक्रम का। सबसे पहले प्यासा फिल्म का गाना हम सुनवा रहे हैं, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। बताइए कौन है हीरो हीरोइन?

0: बता दे तो
1: प्यासा फिल्म का गाना था, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें, साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत था। हमारा सवाल ये था कि कौन है हीरो हीरोइन, गुरुदत्त और माला सिन्हा। बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दे दिया और आज गुरुदत्त का जन्मदिन है, संजीव कुमार का भी जन्मदिन है। संजीव कुमार के बहुत सारे गाने हमने यादों के महफिल कार्यक्रम में सुनाया है, लेकिन गुरुदत्त के नाम ये गाना था। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है कि आज उन्हें हमें याद करना चाहिए, लेकिन आज जो गाने हमने चुने हैं वो आंखों से जुड़े, लेकिन आज की इबारत में जो शब्द हैं उन शब्दों से आपको गाने चुनने हैं, तो ज़रा गाने चुनकर हमें बताते चलिएगा। फिलहाल हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी की आंखों को पढ़ना भी एक कला है, क्योंकि शब्द भले ही धोखा दे जाएं पर आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। खुशी से भरी आंखों में एक चमक सी होती है, उदास आंखों में नमी कुछ भारीपन होता है, मानो बिना बहे आंसुओं का बोझ उठा रही हो। कभी ये इशारों में बात करती हैं, लेकिन रहस्यमयी होती हैं वे आंखें जो शून्य में खोई रहती हैं। आप अपने अनुभव साझा कीजिए कि कब कैसे किसी की आंखों की परिभाषा आपने समझ ली और कब कैसे किसी की आंखों के नूर बन गए। और ये कहा जाता है ना कि अरे वो तो मेरी आंखों का तारा है, खास तौर से अपनी संतान के लिए। तो आप बताइए, आपकी आंखों का तारा कौन है, आपका बेटा या बेटी या दोनों? और आप किसकी आंखों के तारा हैं, माता पिता, भाई बहन, दोस्त मित्र? बताते चलिए। फिलहाल सीआईडी

जरा हीरो और हीरोइन का नाम बता दीजिएगा। गीतकार का नाम पता है तो वो भी बता सकते हैं आप।

गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज़ें थीं। जान निसार अख्तर के बोलते हमने पूछा भी था आपसे सवाल, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब दिया है, कुछ श्रोताओं ने सही लिखा है। संगीतकार थे ओपी नैयर, फिल्म सीआईडी और देव आनंद शकीला, हमने ये भी आपसे सवाल पूछा था। एक श्रोता ने लिखा है कि घर से किसी प्रियजन का बिछड़ना या अचानक गुमशुदा हो जाना रात भर जागने को विवश कर देता है, हर एक पल उसकी चिंता बनी रहती है, रातों की नींद और दिन का चैन छिन जाता है, मन हर पल बेचैन रहता है। एक श्रोता ने लिखा है कि यह वाकई बहुत ही खूबसूरत आज की इबारत है, आंखें दिल का आईना होती है, जो बात हम जबान से नहीं कह पाते वो बातें आंखें पलक झपकते ही कह देती हैं। हिंदी फिल्म जगत में कुछ ऐसे बेमिसाल अदाकार हो चुके हैं जिनकी आंखें बोलती हैं, चाहे वो खुशी के आंसू हो, गहरा दर्द हो, या फिर बिना कुछ कहे जताया गया प्यार हो। दिलीप साहब, गुरुदत्त जी, अमित जी, मधुबाला, मीना कुमारी ऐसे कलाकार थे जो उपरोक्त कही गई भावनाएं बिना कुछ बोले ही अपने आंखों से बयां कर देते हैं। वैसे आम जिंदगी में भी कुछ लोगों की आंखें बोलती हैं, कुछ लोग जो झूठ बोलने के आदी होते हैं उनकी आंखें उनकी बातें छुपा लेती हैं। तो अपनी आंखों को पारदर्शी बनाए रखिए। फिलहाल सुनिए अनारकली फिल्म का ये गाना। अब जरा बताइए कि इसे लिखा किसने है, यानी गीतकार का नाम आपको बताना है और संगीतकार का नाम।

हेमंत कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और फिल्म थी अनारकली। और हमने आपसे पूछा था कि आप बेटी और बेटों में से कौन आपकी आंखों का तारा है, तो कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि बेटों से ज़्यादा बेटी आंखों का तारा होती हैं। क्या बात है भाई। और हमने आपसे ये भी अब पूछा है कि किसके लिए आप रात भर जागे, बताइए क्या आपके लिए कोई रात भर जागता है। कई बार ऐसा होता है कि हम आपकी संतान कहीं बाहर है, पढ़ाई के लिए गई है, नौकरी पेशे के लिए, तो आपकी आंखों में नींद नहीं है, चिंता में कुछ, जब ख़ास तौर से ऐसे मौसम बदलते हैं, बारिश तेज़ होती है, तो माता पिता चिंता में पड़ जाते हैं कि अरे इतनी बरसात हो रही, पता नहीं है हमारी संतान किस हाल में होगी। अब तो फ़ोन एक माध्यम है जब आप फ़ोन करके हालचाल पूछ सकते हैं, लेकिन कई बार रात को नींद उछड़ जाती है, आप चिंता में खो जाते हैं, कई बार बिन बात भी, बिना किसी कारण आप जागने लगते हैं। तो ऐसी जागरण वाली बातें आप बताइए, किन बातों पर आपकी नींद टूट जाती है और आप जागरण करते हैं, जागते हैं। एक श्रोता ने लिखा है, दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से, हालात बदल बदल गई। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आंखें हर आत्मा की खिड़की होती हैं, जो हर नजरिए से एक कहानी बयां करती हैं, दुख में ये आंखें रिसती हैं और गुस्से में सिकुड़ जाती हैं, लेकिन हमें ये झूठ भी बोल सकती हैं क्योंकि ये धोखेबाज भी होती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे खूबसूरत देन है आंखें इंसान के लिए, वो आंखें जिससे हम इस दुनिया को देख पा रहे हैं। इन आंखों की सबसे अच्छी खूबसूरती है कि ये अपनी खुशी दुख सबसे पहले व्यक्त करती हैं। इंसान शब्दों से तो बाद में बताता है, पर उससे पहले ये आंखें बयां कर देती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी फिल्मी दुनिया में दो अभिनेताओं के नाम लेना चाहूंगा, दिलीप कुमार, प्राण। अभिनय में ये हाथों या शरीर से जितना अभिनय नहीं करते थे उतना सिर्फ आंखों से अभिनय करते थे। कई बार निर्देशक और कैमरामैन सिर्फ इनके चेहरे का क्लोजअप लेते थे और पूरा सीन सिर्फ इनकी आंखें बयां कर देती थीं। चलिए अब फिर एक जागने वाला गाना है, तो फिर मेरा सवाल यही है कि बताइए आप किसके लिए कभी जागे, आपके लिए कौन जागरण किया रात भर। फिल्म बहुरानी, गीतकार का नाम बूझिए और संगीतकार का नाम। लता मंगेशकर की आवाज़।

बहुरानी फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल थे, सी रामचंद्र का संगीत। हमारे श्रोताओं ने ये सही जवाब हमें दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आंख की दुनिया संवेदना की दुनिया है, सुंदर मधुर जीवंत संवेदना जो हमारे मन प्राण में बसती है, अक्सर वो आंखों के रास्ते बह निकलती है, सुख या दुख आंखें बरबस छलक जाती हैं, ये संवेदना ही लय बनकर हमारी आत्मा तक पहुंचती है और गीत बनकर मुखरित होती है। तभी तो शैलेंद्र जी लिखते हैं, जाने कैसे सपनों में खो गई आंखियां और गुलजार तो दो कदम आगे बढ़कर आंखों में महकती खुशबू बसा लेते हैं। रचनात्मक लोग जिंदगी में डूबकर आंखों से भावनाओं का सच बयां करते हैं। आंखें दिल का आईना है और हमारी सच्ची साथी भी, सुख या दुख कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, हमारे साथ ही हंसती हैं। और हमने आपसे पूछा था जब बहुरानी फिल्म का गाना सुनवाया कि आप किसके लिए जागे, तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी माँ का ब्रेन हैमरेज हुआ था और हॉस्पिटल गई थी, तो हम पूरी रात जागे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के जो शब्द हैं, आंखें सपने रोशनी चमक आईना जादू चांद नयन हो सकते हैं, भी गाने भी तो सुझाते चलिए कौन से गाने हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये आंखें हैं जो भरी सभा में भी बहुत सारी हरकतें कर जाती हैं, बोलती हैं, नाराज होती हैं, रीझती हैं, खिन्न होती हैं और शर्माती भी हैं, खास तौर से जब आप इश्क में होते हैं, प्यार में होते हैं, तो आंखों आंखों में बातें हो जाती हैं और दो लोगों के बीच जो बातें होती हैं तीसरे को पता भी नहीं चलती हैं। लेकिन हाँ, जब इश्क मोहब्बत में आ पड़ते हैं तो नींद भी गायब हो जाती है। तो बताइए कि क्या कभी आपकी नींद गायब हुई है किसी के लिए? सुनिए ये गाना और हमें बताइए कि इसमें कौन है हीरो हीरोइन। साथ में ये भी बताइए कि कब किसके लिए आपकी नींद टूटी और आपके लिए किसकी नींद टूटी, और नींद वाले कौन से गाने आपके जहन में इस समय कौंध रहे हैं।

पोस्ट बॉक्स नंबर 999 फिल्म का गाना हेमंत कुमार लता मंगेशकर की आवाजें थी और हमने पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया, सुनील दत्त शकीला। और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही हैं और हमें ये बात बड़ी अच्छी लग रही है कि आप हमारे साथ साथ चल रहे हैं, मतलब हम जो सवाल पूछ रहे हैं त्वरित जवाब आप दे रहे हैं साथ साथ, ये नहीं कि पहले से टिप्पणी पोस्ट कर दी है, तो ये तब हमें और अच्छा लगता है कि जब आप लगातार शामिल रहते हैं इस कार्यक्रम में। अब एक श्रोता ने लिखा है कि आंखों की बातें यादों की बात चल रही है, जब मैं आर्मी की भर्ती दी थी तब मेरा फाइनल रिजल्ट आया था, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था, उस दिन रात भर मुझे बेचैनी थी, सुबह 6 बजे रिजल्ट देखा तो उस दिन खूब रोया था और आंसू आंखों में होते हैं। तो हमने आपसे पूछा था कि कब आप जागे थे, कौन सा वो दिन था किसी के लिए या कोई लम्हा, तो इसके जवाब में हमारे श्रोता लिख रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे लिए रात रात को मेरी माँ जागती थी, जब पढ़ाई कर रहे थे तब भी और जब बीमार होते थे तब भी। एक श्रोता ने लिखा है कि गिटार के साथ बढ़िया ग्रुप वायलिन बहुरानी फिल्म में सजन तुम सो जाओ। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले मम्मी हम सभी भाई बहनों के लिए जागती थी और अब हमें पता चला कि मम्मी पापा हम सभी के साथ कितना किया, जब मेरा बेटा हैदराबाद गया तब आंखों में आंसू आ गए। एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो नई बहू आई तो बहुत देर तक जागते रहे, गर्मियों के दिन छोटी रातें, ऐसे में पत्नी हमारी बहन के साथ गप्पे मार रही थी, इसके बाद माँ के पैर दबाने लगी, किससे कहानी में रात 2 बज गए, गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन संस्कार ऐसे कि हमारे घरों में है कि पांव के पायल की आवाज़ भी न मालूम पड़े। खैर, एक श्रोता ने लिखा है कि एक रात मेरी तबीयत खराब थी, उल्टियां हो रही थी, तब मेरी बेटी सारी रात मेरे पास बैठकर जागती रही। एक श्रोता ने लिखा है कि हम बच्चों के लिए तो कई बार जगे रात भर और कई बार तो बच्चे पढ़ने जाते थे तो रात भर जागकर उनके ले जाने के लिए खाना बनाया ताकि वो ट्रेन और वहां जाकर घर का खाना खा सकें, और कभी किसी के इंतज़ार में भी जगे और इसलिए भी सुबह जल्दी ट्रेन है तो कहीं छूट न जाए, बेटी परेशान न हो जाए, जब कोई आने वाला होता था तो पूरी पूरी रात इंतज़ार किया जाता था कि सुबह 6 बजे या 4 बजे ट्रेन आएगी, नींद नहीं आती थी, ऐसा भी होता था। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी 12 गीतों की लिखी इबारत में से चौथे नंबर का लिखा हुआ गीत शामिल हो गया, क्या बात है, ऐसे बहुत सारे श्रोताओं के गाने शामिल हो रहे हैं। और अब जो गाना हम सुनवाने जा रहे हैं इसके लिए भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आंखों की महकती खुशबू गुलजार साहब महसूस करते हैं, तो सुनिए ये गाना और जरा बताइए कौन है।

में हीरो हीरोइन। फिल्म घर, संगीतकार राहुल देवर्मन, गीतकार गुलजार, किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें, हीरो हीरोइन का नाम बूझिए।

घर फिल्म का गाना था, हमने आपसे सवाल पूछा था कौन है हीरो हीरोइन, सभी श्रोताओं ने जवाब दिया है सही, रेखा और विनोद मेहरा। एक श्रोता ने लिखा है कि ये तुम्हारी झील सी गहरी आंखें बिना कुछ कहे दिल की हर बात कह जाती हैं, खो जाते हैं हम इन नशीली आंखों में ऐसे जैसे कोई कश्ती समंदर में उतर जाती है। किन आंखों से आपको डर लगता है ये जरा बताइएगा, माँ पिता टीचर पत्नी पति या किसी दोस्त से, मतलब आंखें देखकर डर जाते हैं। माँ की आंखों में अगर क्रोध दिखाई दे जाए तो बस सब काम बड़ी जल्दी हो जाता है ना, आप सबके साथ भी होता होगा, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली ममता निछावर करने वाली माँ ही होती है, तब भी माँ की आंखों में अगर जरा भी नाराजगी दिख जाए तो बस सब कुछ मामला जैसे उलट जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत से हमें कविवर बिहारी याद आ रहे हैं जिन्होंने नयन के बारे में लिखा है, कहत नटत रीझत खीझत मन ही मन लजियात, भरे भौन में करत है नयनन ही सो बात।

और ये आंखें दिल की जुबा है, और भी कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज अभिनेता, निर्माता, निर्देशक गुरुदत्त और हरफन मौला, अदाकार अभिनेता संजीव कुमार दोनों का जन्मदिन है, उनको याद करके आज का सुरीला सफर कैसे पूरा करें। भाई उन्हें याद किया, गुरुदत्त को हमने इस कार्यक्रम में याद किया, संजीव कुमार जी को यादों की महफिल कार्यक्रम में, फिर भी इबारत की ओर आंखें नजरअंदाज नहीं कर सकती। इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आंखों के इशारे पर कई शायरों ने गीत लिखे हैं और बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। दरअसल आंखें ऐसी हैं कि आंखों पर अनगिनत गीत हैं, अनगिनत गाने हैं, और हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं अनगिनत गाने। लेकिन अब हम नयन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि नयन में डर कैसा होता है। आप अपने अनुभव बताइएगा कि किन नयनों से आपको डर लगता है।

कोहरा फिल्म का ये गाना था, हेमंत कुमार की आवाज थी, कैफी आजमी के बोल थे, हेमंत कुमार का ही संगीत था और गीतकार का नाम हमने पूछा था, सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आंखों की बात चली है तो मैंने बहुत सी पुराने फिल्में देखी हैं और हर फिल्म में अभिनेत्री अधिकतर आंखों से ही एक्टिंग किया करती थी। एक श्रोता ने लिखा है कि हेमंत कुमार की मखमली आवाज थी, कैफी आजमी के गहरे बोल रहस्यमय संगीत का एक बेहतरीन मिश्रण है और ये सिर्फ फिल्मी गाना नहीं बल्कि संगीत और शायरी का एक ऐसा दस्तावेज है जो हर पीढ़ी

को मंत्रमुग्ध कर देता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो आपका ये आंखों पर लिखा गया लेख सबकी आंखों को परखने का काम भी करेगा। इनमें किसी के सपने, किसी की खुशियां, किसी का अपनापन तो किसी की नाराजगी और भी बहुत कुछ नजर आने वाला है। पर क्या आप किसी के दर्द को पढ़ पाएंगी? वैसे तो आंखें बहुत कुछ बयां करती हैं, पर छुपाती भी बहुत कुछ हैं, और कभी कभी खुशी में भी छलक जाती हैं आंखें। इन्हीं आंखों से आंसू और कभी आंसू बहाकर दिल को हल्का भी कर लेते हैं इन आंखों में निकलने वाले आंसू। बात आंसू की चली है तो चलिए अब एक ऐसा ही गाना सुनते हैं। जरा आप बूझिए फिल्म का नाम और गीतकार का नाम। किन मौकों पर आपकी आंखों में आंसू आए? हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा जरूर आता है जब इंसान की आंखों में आंसू होते हैं, कभी खुशी का, कभी दुख का। संगीतकार का नाम भी जरा बूझिए।

हंसते जख्म फिल्म का गाना था। हमने पूछा था फिल्म का नाम, सभी ने बताया श्रोताओं ने सही जवाब, और गीतकार का नाम पूछा था कैफी आजमी, वो भी सही बताया, संगीतकार मदन मोहन, आवाज लता मंगेशकर की, ये तो आप सभी जानते ही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक झलक दूर से मेरी आंखों ने देखी और मैंने ठान ली कि मेरी जीवन संगिनी तो यही होगी, 100% हमारी अरेंज मैरिज थी और रिश्ते होने पर सगाई में 18 महीने का अंतर था, मतलब आंखों से इनका रिश्ता तय हुआ। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी मम्मी ने बचपन में हम भाई बहनों को डांटा या मारा नहीं, हम लोग तो बस उनकी आंखों से डरते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे अपनी मम्मी की आंखों से डर लगता था, जरा सा गुस्से में देखती थी और मैं एकदम रोने लगती थी। एक श्रोता की टिप्पणी है, मेरी एक महिला मित्र है जिनकी आंखों से मैं डरता हूँ। एक श्रोता की टिप्पणी है, दोस्तों से बिल्कुल नहीं, एक अपने फिजिक्स के टीचर की आंखों से बहुत डरते थे हम, और अपनी और इसके अलावा अपनी जेठानी की आंखों से भी। क्या बात है, टीचर की आंखों से तो बहुत लोग डरे होंगे, बताएं या ना बताएं, लेकिन कई बार जब होमवर्क नहीं पूरा होता तब टीचर की आंखों से बहुत डर लगता है। तो आप क्या कभी डरे टीचर की आंखों से, बता दीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि जब शब्द थक जाते हैं और भावनाएं इतनी विशाल हो जाती हैं कि वे भाषा के बंधनों में नहीं समा पाती, तब आंखें ही संवाद का माध्यम बनती हैं। आंखें केवल शरीर का अंग नहीं बल्कि वे आत्मा की खुला झरोखा हैं, जहां कोई मुखौटा काम नहीं आता। एक तरफ जहां 14वें के चांद जैसी शीतलता मन को सुकून देती है, वहीं दूसरी तरफ विरह के आंसू दुख देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत आंखों की खामोशी और उनकी गुफ्तगू के जादू को बेहद नज़ाकत से बयां करने वाला एक खूबसूरत दस्तावेज है। ये लेखन केवल आंखों की तारीफ नहीं करता बल्कि इंसान के भीतर छिपे भावनाओं के समंदर को शब्दों का रूप देता है। लेखक ने खूबसूरती से आंखों के विरोधाभासों और उनकी गहराई को समेटा है। दोस्तों, आंखों में सपने भी होते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं। कई बार कुछ सपने पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। आप बताइए आपका कौन सा सपना हुआ पूरा और कौन सा रह गया अधूरा। फिल्म थोड़ी सी बेवफाई, आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना था। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी। गुलजार के बोल खयाम का संगीत था और श्रोताओं ने जानकारी दी है शबाना आजमी, राजेश खन्ना पर्दे पर। बिल्कुल सही जानकारी आपने दी है। एक श्रोता ने लिखा है कि गानों के बोल बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है, ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी पसंद के बहुत सारे गाने आज के कार्यक्रम में शामिल हुए। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आंखों में न रुकने वाले आंसू आए मेरी आंखों में जब 31 जुलाई को रफी साहब के इंतकाल की खबर सुनी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत प्यारा गीत है, बहुत बार सुनते हैं हम ये गीत। हमारी आंखों में आंसू बहुत बार आ जाते थे पहले, हम कभी किसी का दर्द नहीं देख पाते थे, पर अब धीरे धीरे आंसू छुपाना आ गया है। हम हंसते भी बहुत हैं और शायद आंसुओं से भी गहरा रिश्ता है। जब बेटी विदा हुई तब तो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और फिर जब हमारे साथी ने हमारा साथ छोड़ा फिर पापा तो बहुत आंसू बहाए, पर आंसू बहाने पर भी जाने वाला लौट कर तो नहीं आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि कैफी आजमी का के बोल बहुत अच्छा लगा, मर्म स्पर्शी गाना है और ये गीत सिखाता है कि जब शब्द संगीत और आवाज़ का सही तालमेल हो तो एक कालजयी रचना का जन्म होता है। आज भी जब लोग अकेलेपन या पुराने दिनों को याद करते हैं तो ये गीत सुनते हैं। फिल्म

से जख्म का और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है। संक्षेप में हमने इनकी टिप्पणी आप तक पहुंचाई। एक श्रोता ने लिखा है कि मम्मी की आंखों से हम कभी नहीं डरे क्योंकि इकलौता बेटा था, वे हमेशा प्यार से पेश आती रहीं। हाँ, पिता की आंखों से हम डरते थे। एक श्रोता ने ये लिखा है कि संगीत साहित्य शायरी में सबसे चर्चित जिस्मानी आंखों के विभिन्न रूपों का बखान किया गया है। अब प्रोग्राम का आखिरी गाना, गाने की झलक, फिल्म ऊंचे लोग, मोहम्मद रफी की आवाज। गीतकार और संगीतकार का नाम अगर पता है आपको तो बता सकते हैं।

ऊंचे लोग फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, चित्रगुप्त का संगीत। श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया। गीतकार संगीतकार का नाम लिखा है कि एक सपना था जो फौज में जाने का, वो पूरा नहीं हुआ। एक था जिंदगी का हम सफर साथ साथ चले सारे जीवन भर, लेकिन वो सपना भी अधूरा रह गया। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सीमा सुरक्षा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में बिहार समेत सीमावर्ती राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में घुसपैठ, सीमा से जुड़े इलाकों में आबादी के पैटर्न में बदलाव, नशीले पदार्थों की तस्करी और सीमा सुरक्षा समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। IMF के अनुसार मजबूत घरेलू मांग और आर्थिक गतिविधियों के चलते भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी बढ़त बनाए रखेगा। हालांकि अगले वर्ष 2027 में देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP वृद्धि दर घटकर 6.4% रहने का अनुमान है। IMF का कहना है कि इसके बावजूद भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश बना रहेगा। बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी अभिषेक कुमार ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। नामांकन के बाद भाजपा प्रत्याशी ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि उन्हें कहीं से कोई चुनौती नहीं है। इधर राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। मौके पर राजद समेत महागठबंधन के विभिन्न घटक

0: के नेता मौजूद थे। जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर 11 जुलाई को अपना पर्चा दाखिल करेंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कटिहार के अहमदाबाद में सबसे अधिक 108.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। इधर विभाग ने शाम 5 बजे तक नालंदा, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, वैशाली, शेखपुरा और समस्तीपुर जिले में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के तबादले के लिए पोर्टल आज से चालू हो रहा है। इसके माध्यम से शिक्षक स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार ने स्थानांतरण की नीति बनाई है। उन्होंने कहा कि तबादले के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी हो चुकी है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम सिवान में पदस्थापित उत्पाद निरीक्षक अंकेश कुमार गोंड के पटना के तानापुर स्थित आवास समेत 5 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके मुंगेर और सिवान स्थित ठिकानों पर भी छापेमारी जारी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में यह कार्रवाई की जा रही है। गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र के सिजुआ गांव के पास एक कार और ट्रक के बीच टक्कर के बाद कार में आग लग गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। कार चालक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत परमालपुर के पास एक तेज रफ्तार ट्रक के अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा जाने के चलते चालक और खलासी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पटना के अमहरा थाना क्षेत्र के बवनलई गांव से पुलिस ने शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। मधुबनी जिले के फूलपरास थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक तस्कर को 13 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

सामईन आदाब, यह आकाशवाणी पटना है। अब आप मोहम्मद तनवीर अली से इलाकाई खबरें सुनिए। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज सरहद की सिक्योरिटी के सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के तवसुस से एक आला सतही जायजा मीटिंग करेंगे। मीटिंग में बिहार समेत सरहद से मुत्तसिल अजला के सीनियर अफसरान और पुलिस सुपरिंटेंडेंट शामिल होंगे। मौसूला इत्तला के मुताबिक मीटिंग में दरंदाजी, सरहद से मुत्तसिल इलाकों में आबादी के पैटर्न में बदलाव, नशीली अशिया की स्मगलिंग और सरहद की सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत होगी। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अहम मईशत बन चुका है। बैन अलाक्वामी मॉनिटरी फंड IMF ने साल 2026 के लिए भारत की इक्तसादी तरक्याती शरह 7% रहने का अंदाजा जाहिर किया है। IMF के मुताबिक मजबूत घरेलू मांग और इक्तसादी सरगर्मियों के सबब भारत आलमी मईशत में अपनी बरतरी कायम रखेगा। हालांकि आइंदा साल 2027 में मुल्क की मजमूई घरेलू पैदावार यानी DGP तरक्की की शरह कुछ घटकर 6.4% रहने का अंदाजा है। IMF का कहना है कि इसके बावजूद भारत दुनिया की अहम इक्तसादियात में सबसे तेज रफ्तार से तरक्की को अबूर करने वाला मुल्क बना रहेगा। बांकीपुर असेंबली सीट के जिमनी इंतखाब के लिए BJP उम्मीदवार अभिषेक कुमार ने आज अपना परचय नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर BJP के रियासती सदर संजय सरावगी, JDU के रियासती सदर उमेश कुशवाहा और लोक

शक्तिर पार्टी रामविलास की रुकन पार्लियामेंट शाम्भवी चौधरी समेत एनडीए के कई सीनियर लीडरान मौजूद थे। पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद बीजेपी उम्मीदवार ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि उन्हें कहीं से कोई चैलेंज नहीं है। इधर आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने भी अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया है। मौके पर आरजेडी समेत अजीम इत्तेहाद की मुख्तलिफ हलीफ पार्टियों के लीडरान मौजूद थे। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर 11 जुलाई को अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। मानसून की फौलियत से रियासत में बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। महकमा मौसमियात से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कटिहार के अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा 108.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा ने अपनी पेशगोई में कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के बेशतर हिस्सों में बारिश का इम्कान है। इधर महकमा ने शाम 5 बजे तक नालंदा, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, वैशाली, शेखपुरा और समस्तीपुर जिले के कुछ मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश की वार्निंग जारी की है। रियासत के सरकारी स्कूलों में मामूर असातजा के तबादले के लिए पोर्टल आज से चालू हो रहा है। इसके तवसुस से असातजा तबादले के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त कर सकते हैं। वजीर तालीम मिथिलेश तिवारी ने बताया कि मेयारी तालीम के लिए हुकूमत ने तबादले की पॉलिसी अपनाई है। उन्होंने कहा कि तबादले के लिए मेयारी ऑपरेटिंग तरीक़ाकार SOP जारी हो चुका है। इक्तसादी जराइम इकाई की टीम सीवान में मामूर एक्साइज इंस्पेक्टर अंकेश कुमार गोंड के पटना के दानापुर वाक़े रहायशगाह समेत 5 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। मौसूला इत्तला के मुताबिक उनके मुंगेर और सीवान वाक़े ठिकानों पर भी छापेमारी जारी है। आमदनी से जायद इमलाक के मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। गया जिले के बोधगया थाना इलाके के सिजुआ गांव के करीब एक कार और ट्रक के दरमियान तसादुम के बाद कार में आग लग गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की झुलसकर मौत हो गई, जबकि कार ड्राइवर की हालत तश्वीशनाक बनी हुई है। वहीं कैमूर जिले के कुदरा थाना इलाके के तहत परमालपुर के करीब एक तेज़ रफ्तार ट्रक के बेकाबू होकर पुलिया से टकरा जाने के सबब ड्राइवर और खलासी की जाय वकू पर ही मौत हो गई। पटना के अमहरा थाना इलाके के बब्बन लय गांव से पुलिस ने शराब पीकर हंगामा करने के इल्ज़ाम में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मधुबनी जिले के फूलपरास थाना इलाके से पुलिस ने एक स्मगलर को 13 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर एवं मैनेजमेंट ट्रेनिंग के कुल 6,715 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ibps.in से प्राप्त किया जा सकता है।

रेलवे भर्ती बोर्ड टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के कुल 6,565 पदों पर भर्ती है।

तो योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार के पास बीटेक इंजीनियरिंग डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं टेक्नीशियन ग्रेड

0: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी पुलिस अवर निरीक्षक के कुल 150 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।
1: 2:15 होने को हैं। थोड़ी देर में समाचार सुनिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना। और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने संयुक्त वक्तव्य दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया।
1: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि 10 लाख का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
2: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
1: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में

0: प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
1: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
0: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
2: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
3: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहें। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
2: And critical minerals.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIRF और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नावों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में

0: मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया, जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
1: आई अर्ज आवर इंस्टीट्यूशंस टू कंटिन्यू सपोर्टिंग आवर फिशिंग कम्युनिटी विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस। मे दिस हिस्टोरिक इनिशिएटिव ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू एवरी कोस्टल फैमिली एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रियलाइजेशन ऑफ विकसित भारत बाय 2047।
0: प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलांग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि यह सेंटर पूरे भारत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था और रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
3: अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, सबसे पहले NCR दिल्ली की बात करें, तो NCR दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
2: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
4: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज

0: अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह।

0: बहारें फिर भी आएंगे, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। अनजान की रचना थी, ओपी नैयर का संगीत था। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

शकील बदायूनी का लिखा गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले और साथियों की आवाजों में फिल्म थी साहब बीबी और गुलाम। आइए अब सुने मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गाना। गीता दत्त, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में, रचना मजरूह सुल्तानपुरी, की संगीतकार ओपी नैयर।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आर पार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। गीता दत्त की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ, पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप

0: बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
1: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी
0: हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
4: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
3: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए अब सुनते हैं अभिलाषा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने बोल लिखे हैं, धुन बनाई है राहुल देवबर्मन ने।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सखी सहेली
1: सुनने वाली हमारे सभी सखियों सहेलियों और सखा भाइयों को जो कार्यक्रम सखी सहेली सुन रहे उन्हें और सोनाली आपको दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
2: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।

0: बिल्कुल भाई, बहुत बहुत नमस्कार। और ये बदलते मौसम में अपना सब खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, हम ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, और घर का भी ध्यान रख रहे होंगे। और इस बारिश में बहुत सारी बातों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है जो हम इस कार्यक्रम के दौरान करेंगे।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है कि सोशल मीडिया न्यूज समाचार पत्रों से मुंबई की बारिश के हालचाल दिख रहे हैं, और इसके बाद भी सही समय पर आप सभी का प्रोग्राम पेश करना अपने कार्य के प्रति निष्ठा बहुत बड़ी बात है। भगवान से दुआ है आप सब अपने सुरक्षित रहे और अपने कार्य करते रहे। ऐसे कोई जब हमारी परवाह करता है तो कितना अच्छा लगता
0: है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम भी तो अपने वादे पे हमें उतरना होता है, सही खरा बनना पड़ता है।
1: और हमारी श्रोता भाई बहन भी इतनी बड़े ही शिद्दत के साथ में इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखते हैं, तो इतना आनंद होता है ना, ऐसा लगता है कि सभी हमारे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और हमसे बतिया रहे हैं इन मैसेजेस के माध्यम से।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखो ना, इस हमारा तभी तो हमारा फर्ज बनता है कि हम खूब सारी जानकारियां लेकर आए, मनोरंजक गीत लाएं और कुछ खट्टी मीठी बातें भी हों,
1: है ना। और जैसे बारिश का मौसम है, झमाझम बारिश पूरे भारतवर्ष में हो रही है, और जहां नहीं हो रही है तो बस हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से वहां भी बारिश हो जाए, बस बारिश संतुलन में हो
0: जी।
1: उसके लिए जो है सड़क यातायात और बारिश, यानी ये देखिए ना, इन दिनों कितनी सारी दुर्घटनाएं हो रही है सड़क यातायात की, कि कितने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं बारिश के मौसम में, तो किस तरह से हमें ध्यान रखना है, इस विषय पर उपयोगी टिप्स ये हमारे श्रोता भाई बहन इनने बहुत सारे लिखकर भेजे हैं, हम भी बताएंगे।
0: बिल्कुल हाँ। और फिर क्या होता है जब स्कूल में छुट्टियां हो जाती बहुत बारिश की वजह से, पिछले कुछ दिनों में हमने मुंबई में देखा, आपके शहर में भी ऐसा कुछ हुआ हो तो जरूर बताइएगा। स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियां हो जाती है और फिर वर्क फ्रॉम होम के लिए एक रिक्वेस्ट सरकार की तरफ से भी आती है कि अपील होती है कि भाई जो जहां है वहीं रहें, और फिर ऐसे में बच्चों की जिद जो घर में रहते हैं तो उनके शुरू हो जाते हैं, आज हम स्कूल नहीं गए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये करके दो, हमें वो करके दो, ये सारी तो जो चीजें हैं ना, इस तरह के सीन बहुत सारे घरों में हुआ करते होंगे,
1: दिखते हैं ऐसे सीन। और होता यूं है कि अगर हम काम में लगे हुए हैं, हम उलझे हुए हैं, बच्चे ने जिद की कि भाई आज मम्मी हमें पास्ता बना दीजिए, तो हम, मैंने जब काम में रहते तो हमने कहा ठीक है भाई पास्ता बोल रहा है तो बना देंगे, पर तब हम ऐसे ही उनसे वादा कर देते कि हाँ बना देंगे, पर पास्ता बनाने के लिए घर में सामग्री भी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: फिर अगर हमने पास्ता नहीं बना दिया तो फिर बच्चे जो है ना सारा घर सर पे ले लेते हैं, और उनकी जिद के आगे पेरेंट्स जो होते हैं हतबल हो जाते हैं।
0: हम कई बार उसमें ऐसे उनको एक बात उनकी इधर उधर करने के लिए उनका ध्यान यहाँ वहाँ भटक जाए तो हम कहते हैं अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो वो कहते हैं मेरे पास है ना,
1: मेरा गुल्लक
0: उसमें से निकाल लीजिए आप, इस तरह से भी कहते हैं बच्चे।
1: तो यानी गुल्लक हमारे बचपन का मनी बैंक, या यूं कह लीजिए बड़े होने के बाद भी अगर घर में गुल्लक होना तो एक अलग ही प्रसन्नता रहती है कि जो कुछ भी इधर उधर घर में चिल्लर पैसे कुछ रुपए इधर पड़े हुए हैं तो हम झट से उसमें डाल देते हैं, तो हमें भी एक सुकून लगता है कि चलो हमारे पास इसमें तो बचत है। भले ही बड़े बड़े हमारे बचत खाते होंगे, बड़े बड़े हमारे FDs होंगे, पर ये जो छोटा सा गुल्लक होता है ना, ये बड़ा ही मासूमियत भरा होता है।
0: बिल्कुल, और एक सुकून सा देता है कि अगर कभी अचानक से कुछ छुट्टे पैसों की जरूरत पड़ गई तो हमारे पास गुल्लक है, है ना। और इसी साथ में ये भी है कि हम जब बहुत सारी बातें होती घर में बैठे हैं तो कई सारे बातें निकलती, क्योंकि बरसात के दिन अक्सर बाहर जाना हो नहीं पाता, बातें बहुत सारी निकलती हैं, और कभी हम किसी की जद्दोजहद की बातें करते हैं, किसी की कोई प्रेरणा स्रोत कहानी के बारे में जिक्र निकल जाता है। तो आज के दिन हम कहानी पद्मश्री के खंड में बात करेंगे कुछ इसी तरह मंजमा जोगथी की,
1: जिनके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी इस विषय में कमेंट्स लिखे हैं, और हम सारे श्रोताओं को उनके जीवन से जुड़ी कितनी परेशानियां थी और उसके बाद में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे। पर अब क्या करना है दीपा?
0: देखो अब मैं क्या कर रही हूं,

0: सोनाली, कहाँ खो गई तुम?
1: मैं खो गई थी हमारे श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ने में।
0: देख रही थी मैं कि बहुत सारे संदेश आए हैं और तुम चाट रही हो कि कौन ज्यादा से ज्यादा हम संदेश शामिल कर सके अपने कार्यक्रम में।
1: क्योंकि हमारे श्रोता जो होते हैं ना, इतनी मेहनत से कमेंट्स लिखते हैं, तो हमारा भी ये फर्ज है कि उनके कमेंट्स शामिल करना बहुत जरूरी है। और बहुत सुंदर लिखते हैं हमारे श्रोता
0: जी, ये बात तो 16 आने सच है। और अब ये कि कहानी उनकी, जिन्होंने बहुत बहुत ज्यादा मुश्किलें, परेशानियां, हालात, बहुत दिक्कतों भरे देखे, उनके बारे में। ये एक महिला जिन्होंने दर दर भटकने के दिनों को देखने से लेकर राज्य के लोक कलाओं के प्रतिष्ठित संस्था के प्रमुख बनने तक की उनकी ये कहानी है।

0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंजम्मा जोगथी की, उनके असाधारण जीवन की कहानी जो कि आज स्कूली पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बन गई है।
1: बेल्लारी के पास कल्लूंग कंबा गांव में मंजुनाथ शेट्टी के रूप में जन्मी मंजम्मा ने अपने जीवन में अकल्पनीय पीड़ा झेली है दीपा। ये तब शुरू हुआ जब किशोरावस्था में ही मंजुनाथ ने खुद को एक महिला के रूप में पहचाना शुरू किया। वे कहती है कि जब मैं 15 साल की हुई तब मैंने एक महिला के रूप में अपनी पहचान को पूरी तरह से अपना लिया था और परिवार वाले उनके भीतर हो रहे इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाए और एक दिन उन्हें घर से निकाल दिया क्योंकि वे तृतीय पंथी थी। अकेलापन और भीषण गरीबी के दिन झेलती रही मंजम्मा। इसी दौरान एक दिन उन्हें आशा की एक किरण दिखाई दी। दावणगेरे के पास एक बस स्टैंड पर उन्होंने अपने पिता पुत्र की जोड़ी को देखा और जो पिता ने लोकगीत गाए और पुत्र ने अपने सिर पर लोहे का बर्तन रखकर नृत्य किया।
0: उन दोनों को और उस दिन को याद करते हुए मंजम्मा बताती हैं कि यह जोगप्पा समुदाय का एक लोक नृत्य था और मैं हमेशा से ही इस नृत्य से मोहित रहती थी, इसलिए मैं वो पिता जो ये कर रहे थे बस स्टैंड पे ये वाली कला, वो उनके पास गई और उनसे पूछा कि क्या वे मुझे ये नाच जो है, ये नृत्य है, इसे सिखाएंगे। खुशी की बात ये है कि वे मान गए। फिर क्या होने लगा कि मंजम्मा हर दिन उनकी कुटिया में जाती और ये नृत्य सीखती। तो जो घड़ा, जो उनके भाषा में, उनकी वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा में जिसे चोंबू कहते हैं, उसको संतुलन करना, कभी कभी तो किसी देवता की मूर्ति को भी सिर पर रखकर सुंदर नृत्य करना बहुत रोमांचक उन्हें लगता था।
1: और उस समय मंजम्मा को ये नहीं पता था कि ये कला उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तनकारी बदलाव लाएगी। एक साथी जोगप्पा ने उन्हें उस समय के लिए प्रसिद्ध लोक कलाकार कालव्वा से मिलवाया। वे याद करते हुए बताती है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब कालव्वा ने मुझे अपने सामने नृत्य करने के लिए कहा था, जिसे आप ऑडिशन कह सकते हैं। उन्होंने किसी से मेरे चेहरे पर मेकअप करवाया। मुझे याद है कि मैंने आईने में देखकर मुझे बहुत शर्म महसूस हुई, ये उनका कहना था, और मैं बहुत सावली थी और इस मेकअप ने मुझे गोरा और सुंदर बना दिया। मैंने कालव्वा के गायन पर नृत्य किया और बस बात खत्म। जल्दी ही वे मुझे नाटकों में छोटी छोटी भूमिकाओं के लिए बुलाने लगे, फिर बड़ी भूमिकाओं के लिए भी उन्हें बुलाने लगे।
0: जी, और इसके बाद रंगमंच और नृत्य ने उनके जीवन को व्यस्त कर दिया। वे आगे बताती हैं कि ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे असली रूप को खोज निकाला हो और मुझे मंच पर आजाद कर दिया हो। मंजम्मा जो कल्लव्वा जोगथी के नृत्य समूह में स्थायी एक नृत्यकी बन गई थी और हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने लगी। कल्लव्वा की मृत्यु के बाद मंजम्मा ने मंडली का कार्यभार संभाला और नृत्य को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया।
1: जोगथी नृत्य, जिसे आज इसी नाम से जाना जाता है, अपनी पहचान और लोकप्रियता का श्रेय काफी हद तक उन्हें ही देता है। एक विशिष्ट जोगथी नर्तकी लेट कर केवल मुंह से फर्श से सिक्के उठाने और सिर पर घड़ा संतुलित करने जैसे कर्तव्यों में भी माहिर होती है। यानी शरीर इतना फ्लेक्सिबल चाहिए, है
0: बिल्कुल
1: ना?
0: और संतुलन कितना ज्यादा चाहिए,
1: बहुत जरूरी है। और मंजम्मा को 2010 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उनकी जीवन कहानी हावेरी जिले के कर्नाटक लोक विश्वविद्यालय में स्कूली पाठ्यक्रम और कला स्नातक पाठ्यक्रम का भी हिस्सा है।
0: वो आगे कहती हैं इंटरव्यू में कि मेरे लिए कला ही ईश्वर है, इसने मेरे भूखे पेट को भरा, ये हर दिन मेरी आत्मा को तृप्त करती है और जब मेरा कोई सहारा नहीं था तब इसने मेरा साथ दिया।
1: और वर्ष 2021 में उन्हें भारत गणराज्य के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें पहले कर्नाटक जनपद अकादमी के सदस्य के रूप में और बाद में राज्य सरकार द्वारा उसी संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसी तरह वे राज्य में प्रदर्शन कला के शीर्ष संस्थान का नेतृत्व करने वाली पहली तृतीय पंथी महिला बनी है। कितनी बड़ी बात है ना दीपा,
0: बहुत बड़ी बात। और ये वे कहती हैं कि उनकी ये चाहत है कि जोगथी नृत्य को एक विशिष्ट लोक नृत्य शैली के रूप में मान्यता मिले। इसे केवल जोगप्पाओं द्वारा ही प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। वो कहती है कि बच्चों को भी अन्य नृत्य शैलियों की तरह ये नृत्य शैली सिखाई जानी चाहिए।
1: और एक इंटरव्यू में अपने बीते दिनों को याद करते हुए बताती है कि जब कर्नाटक जनपद अकादमी का उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो राज्य में लोक कलाओं को बढ़ावा देने वाला विभाग है, उस दिन उनका फोन लगातार बज रहा था। वो सारा ध्यान, प्यार और सराहना मुझे अभिभूत कर रही थी। मंजम्मा आंसू रोकते हुए कहती है कि मैंने अपना पूरा जीवन इसी

0: संस्कृति और प्यार के लिए तरसते हुए बिताया, यानी कितना संघर्ष था उनके जीवन में।
1: बिल्कुल, जब परिवार आपको छोड़ देता है, अकेलापन आपका साथी बन जाता है, ऐसे में जब कहीं से भी प्यार दुलार अपनापन मिलता है ना, तो वो इंसान के दिल पर क्या बीतती होगी ये सोचने, मतलब हमारी सोच से भी बाहर है।
0: और ऐसा होता है ना कि आम इंसान जो होते हैं ना, हर बार हमेशा शिकायत करते रहते कि हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं है, हमारा तो नसीब ही खराब है। पर देखिए ना, उन्होंने कितनी विषम परिस्थितियों के बाद
1: जी
0: एक पद्मश्री तक पहुंच गई, यानी कितनी बड़े, कितना संघर्ष होगा उनके जीवन में।
1: ये बात तो बिल्कुल सही है। बातें बहुत सारी गंभीर हो गई है, क्यों ना कहीं कुछ एक संगीत
0: गीत हो जाए,
1: सुमधुर गीत
0: सुनते हैं गीत।

0: सोनाली, बारिश में भीगना किसे पसंद नहीं होगा?
1: सभी को पसंद है भाई, पर बहुत संभाल के वहाँ पे हमें भीगना पड़ता है कि बीमार ना पड़ जाए, है ना?
0: ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर बच्चे बहुत ज्यादा जिद करते हैं तो रेनकोट डाल दीजिए उसके ऊपर, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है बरसते।

0: पानी में, वो पानी में पैरों से उछालना या उनकी छोटी छोटी छोटी छोटी साइकिलों को चलाना, तो हर बार मना करने के बदले एक दो बार उन्हें उनकी पूरी बरसाती पहना के, रेनकोट पहना के अच्छे से उनको छोड़ भी देना चल सकता है ना ऐसा?
1: चल सकता है। वैसे अभी गुल्लक की बात चल रही है हमारी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि गुल्लक बचपन का मनी बैग। वाह क्या बात है, उन दिनों मिट्टी के गुल्लक कुंभकारों द्वारा अच्छी तरह पक्के पकाए आते थे और उनके ऊपरी हिस्से में पैसा डालने के लिए छेद रहा करता था, लेकिन वो भी खरीद से बाहर की कीमत पर या दीपावली पर दिए लेते समय आते थे, इसलिए डिब्बे में पैसे रखने का शौक था। एक बार मुझे टाइफाइड का बुखार आया, मैं बेड पर सोए हुए पैसों के डिब्बे खनखनाकर संतुष्ट रहता था। 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था, लेकिन माह भर से बुखार था और बहुत परहेज चल रहा था। रोटी की पापड़ी और परवल का चोखा पथ्य में दिया जाता था। एक बार लोग विजयादशमी का मेला देखने गए थे और मेरे देखरेख करने के अनदेखी कर रखा हुआ दही बड़े को भरपेट खाया। पिताजी की ही चिकित्सा चल रही थी। जब वे मेला से लौटे तो मुझे तेज बुखार था और देखरेख करने वाली की अच्छी खिंचाई हुई। ऐसा गुल्लक हुआ करता था, अब तो गुल्लक का नाम एक सीरियल भी आ रहा है। बहुत अच्छी यादें आपने साझा की है।
0: तो यादें साझा करें या इसी के बारे में बात करें, एक संदेश और ले लें?
1: हाँ हाँ,
0: ये संदेश कहता है कि बचपन का ही नहीं, मैं तो अभी भी इस मनी बैंक को अपने पास रखती हूँ। गुल्लक में पैसे रखना मेरी बचपन की आदत है, डेली कुछ पैसे उसमें डालती हूँ और साल भर के बाद उसे तोड़ने में मजा आता है। एक उत्सुकता रहती है कि कितने पैसे जमा हुए हैं। हालांकि कुछ साल पहले मेरे घर में चोर घुस आए थे, ओहो, और मेरे दो बड़े बड़े गुल्लक दूसरे सामान के साथ ले गए। लगभग 8 से 10 हजार रुपए थे दोनों गुल्लक मिलाकर। तब मैंने सोचा अब गुल्लक नहीं रखूंगी, पर आदत का क्या किया जाए, अब सिर्फ सिक्के ही रखती हूँ, बड़े बड़े रुपए उसमें नहीं डालती हूँ। हाँ कभी कभी ऐसी बात हो जाती है घर में कि चोर आ जाते हैं और आप देखिए ना आपका गुल्लक ही वो लेके गए। लेकिन एक बात इसमें ये जान बहुत अच्छी लगी, आपने 8-10 हजार रुपए इकट्ठे कर लिए तो गुल्लक
1: इसलिए हमें ये संदेश मिलता है इस मैसेज से कि भाई हमें गुल्लक में सिर्फ छोटे छोटे पैसे ही रखना है, जैसे 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए इतने ही रखना है। बड़े बड़े नोट रखने के लिए बैंक है
0: या आप कुछ ऐसी जगह पर घर पे रखिए जो कि बिल्कुल सुरक्षित हो, कि कभी ऐसी अनहोनी घटना हो जाए तो आपके मेहनत के जमा किए हुए पैसे कोई यूं ही उठाकर ना ले जाए।
1: गुल्लक सिर्फ पैसे रखने का डिब्बा नहीं बल्कि बचपन का पहला बैंक है जो बच्चों के को बचत का महत्व, धैर्य और वित्तीय जिम्मेदारी सिखाता है। ये पारंपरिक रूप से मिट्टी का बना होता है जिसमें सिक्के डालने के लिए पतली दरार होती है। बचपन की यादें और गुल्लक का महत्व, बचपन का खजाना, इसमें जमा किए हुए एक एक सिक्के की खनक में खिलौने, आइसक्रीम और साइकिल जैसे छोटे छोटे सपने छुपे होते हैं। ये बच्चों को छोटी उम्र से ही आय और व्यय यानी पैसा बचाने और खर्च करने के बुनियादी सिद्धांत सिखाने के लिए सबसे बड़ा मददगार है। और तोहफे की परंपरा, अक्सर त्योहारों या जन्मदिन पर माता पिता और रिश्तेदारों से गुल्लक तोहफे में मिलता था, जो आज भी यादों में ताजा है। आधुनिक रूप में आजकल पारंपरिक मिट्टी के गुल्लक के साथ साथ लकड़ी के नक्काशीदार बॉक्स और पासवर्ड डिजिटल लॉकर वाले प्लास्टिक के स्मार्ट मनी बैंक भी बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय है।
0: आजकल तो बहुत अलग अलग डिजाइन वाले मिलने लगे हैं गुल्लक। और देखो ना सोनाली, उसमें हर जमा सिक्का केवल धन नहीं होता, वो मेहनत, धैर्य, अनुशासन और सपनों का प्रतीक भी होता है, क्योंकि वो पैसा किसी ने कमाया है, मेहनत से कमाया है। और जब आप उसमें डालते हैं वो, या छोटा बच्चा जब डालता है तो वो एक अनुशासन भी सीखता है कि हाँ मुझे अगर 5 रुपए मिले हैं तो ये सारे के सारे मैं डाल दूंगा, या 10 रुपए मिले हैं तो उसमें से आधा डालूंगा, आधा खर्च करेंगे। और एक सपने भी बुनते हैं बच्चे उसमें कि अब मेरे जब इतने इकट्ठे हो जाएंगे तो फला खिलौना लाना है या फला चीज मुझे जो पसंद है या जरूरत है वो मैं लेकर आने वाली हूँ।
1: और ये जो है ना, ये आदत आज भी बच्चों को लगाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज हम ये भूलते जा रहे हैं ना ये सब बातें कि गुल्लक, अब तो घर में शायद ही किसी के घर में गुल्लक दिखता होगा, पर ये गुल्लक की आदत है ना बच्चों को मिला। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में दादा दादी आए, नाना नानी आए, रिश्तेदार आए, तो जेब खर्च के लिए 1, 2 या 5 रुपए 10 रुपए देते थे। उन बच्चों वो बच्चे जो हुआ करते थे पैसों को संभाल कर अपने गुल्लक में डाल देते थे और हर बार सिक्का गिनने की वो मधुर खनक मन में एक नई खुशी देती थी। धीरे धीरे जब सिक्कों की संख्या बढ़ती थी तो बच्चों के मन में उत्सुकता भी बढ़ती थी दीपा के उनका गुल्लक में कितना धन जमा हो गया है। ये उत्सुकता उन्हें अनावश्यक खर्च से भी दूर रखती थी।
0: बिल्कुल। और गुल्लक को देखो ना, सबसे पहले बचत का जो गुल्लक है बच्चों में, सबसे पहले ये बचत का महत्व सिखाता है और ये भी समझाता है कि छोटी छोटी बचत भी समय के साथ बड़ी पूंजी बन सकती है। अगर बच्चों को ये सिखाना है हमें कि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करो और फिर देखो एक दिन कितना बड़ा हो जाएगा, तो गुल्लक से बढ़िया कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है, सही कहा, बचपन की बचत बैंक या

0: बैंक कहिए, वो गुल्लक ही है जिसमें छोटे सिक्के से लेकर रुपया के छोटे मोटे नोट भी हम डाल सकते हैं, लेकिन निकाल नहीं सकते, ताला लगा हुआ होता है। गुजराती मुहावरा है जो इस गुल्लक के लिए लागू पड़ता है, टिप्पे टिप्पे सरोवर भराए, मतलब बूंद बूंद से हौज भरा जा सकता है। बच्चों में बचपन से ही बचत की आदत डालने का सबसे पुराना तरीका है जो वित्तीय अनुशासन पैदा करता है। हमने भी बचपन में ऐसे गुल्लक बनाए थे। उस जमाने में हमारे घर कोई मेहमान आते थे तो जाते वक्त हम बच्चों को 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया में थमा देते थे, उसे हम सभी गुल्लक में डाल देते थे। वो दिवाली या जन्माष्टमी त्योहार पर खर्च करने के काम आते थे।
1: बिल्कुल सही कहा, एक एक रुपए जोड़कर बड़ी राशि तैयार करना, ये जीवन का उस वक्त का ऐसा अनुभव था सोनाली, जो आगे चलकर हमें आर्थिक रूप से जिम्मेदार बनाने में मदद करता है। और यही आदत बड़े होकर बैंक में बचत करने या भविष्य की योजना बनाने या सोच समझकर खर्च करने की हमें प्रेरणा भी देता है।
0: और दीपा, ये बात है ना कि गुल्लक धैर्य और संयम का भी पाठ पढ़ाता है कि आज की दुनिया में हर चीज तुरंत पाने की जो चाह बढ़ गई है, लेकिन गुल्लक हमें इंतजार करवाता है कि उसे भरने में कई महीने लगते हैं। और यही प्रतीक्षा बच्चों को ये समझाती है कि सफलता और उपलब्धि समय तथा निरंतर प्रयास से मिलती है।
1: एक संदेश कहता है कि दिवाली की खरीदारी में गुल्लक भी आता था। हमें घरौंदा में जो भुना अनाज मिठाइयों से भरते थे, वे खिलाते थे, उसके बदले में पैसा मिलता था, वही हम गुल्लक में डाल देते थे। आज का दिन शुभ है, लक्ष्मी बढ़ेगी, पर मुझे याद नहीं है कि कभी पैसे बढ़े, क्योंकि डालने के बाद निकलते निकलते मिट्टी के गुल्लक का मुंह बड़ा हो जाता था और पैसे ऐसे ही निकल जाते
0: और कभी कभी फोड़ना पड़ता था ना
1: हाँ बिल्कुल
0: उन्हें।
1: बिल्कुल
0: और
1: सही कहा।
0: एक साथी ने लिखा है कि गुल्लक बच्चों के लिए केवल पैसे जमा करने की जगह नहीं, बल्कि उनकी छोटी छोटी इच्छाओं जैसे खिलौना या पसंदीदा चीजें खरीदने को पूरा करने का साधन और एक प्यारी यादों का पिटारा होता था। और
1: देखो हाँ, एक और संदेश पढ़ लीजिए।
0: एक एक साथी ने लिखा है, गुल्लक जिसे पिगी बैंक भी कहते हैं, मिट्टी या धातु या प्लास्टिक से बना हुआ छोटा पात्र होता है जिसका उपयोग छोटे सिक्के और पैसे जमा करने के लिए किया जाता है। ये विशेष रूप से बच्चों में बचत की आदत डालने का एक पारंपरिक और लोकप्रिय साधन है।
1: और देखो सोनाली, वक्त कहता है अनुशासन, क्योंकि हमें भी सीखना है, तो एक अंतराल के बाद हम फिर
0: फिर
1: आते
0: हाजिर
1: हैं।
0: होते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ चुके कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं दीपा माहेश्वरी और
1: सोनाली पाठक। चलिए एक हमारे साथी ने लिखा है कि बचपन की गुल्लक हमारे लिए किसी अलादीन के चिराग से कम नहीं थी। उसमें सिर्फ पैसे नहीं बल्कि गर्मियों के छुट्टियों में खाई जाने वाली बर्फ की चुस्की, मेले से खरीदी जाने वाली मनपसंद गाड़ी और दोस्तों के साथ मिलकर बांटी जाने वाली टॉफियों की उम्मीदें जमा होती थी। जब कभी गुल्लक भर जाती और उसे तोड़ने का वक्त आता तो दिल में एक अजीब सी खुशी और थोड़ी सी मायूसी दोनों एक साथ होती थी। गुल्लक के टूटने पर फर्श पर बिखरे वो सिक्के किसी खजाने से कम नहीं होते थे। उस वक्त हमें ऐसा लगता था ना कि अरे हम तो कितने अमीर हैं, हमारे पास कितने
0: बहुत
1: सारे पैसे
0: हैं। बिल्कुल। और बच्चों को वित्तीय साक्षरता और धैर्य सिखाने का ये पहला माध्यम भी है। त्योहारों से जुड़ाव और हमारे देश में दीपावली के त्योहार पर लक्ष्मी पूजन के समय नई मिट्टी की गुल्लक खरीदने और उसकी पूजा करने की परंपरा है। भावनाएं, बच्चे बचपन में गुल्लक को हिलाकर सिक्कों की खनक सुनना और उसके भरने का इंतजार करना बच्चों के लिए ये एक अनूठा आनंद होता है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है, गुल्लक सिर्फ पैसे रखने का डिब्बा नहीं बल्कि बचपन का पहला बैंक है जो बच्चों को बचत का महत्व, धैर्य और वित्तीय जिम्मेदारी सिखाता है। ये एक पारंपरिक रूप से मिट्टी का बना होता है जिसमें सिक्के

0: डालने के लिए पतली दीवार होती है, दरार होती है। इसी तरह की बातें हमारे सारे श्रोताओं ने लिखी है और बहुत सुंदर सुंदर गुल्लक से जुड़ी हुई यादें संजोई हुई है। पर आप क्या करना है दीपा,
1: हमें तो एक गीत सुनना है।
0: तो सुनवाते हैं गीत।

0: हमें तो हमारे श्रोताओं से और श्रोताओं को हमसे प्यार है
1: और हमेशा रहेगा।
0: हाँ बिल्कुल। गुल्लक की बात जब हो रही थी ना, एक बहुत सुंदर मैसेज आया है कि गुल्लक की बात से एक बहुत ही भावुक करने वाली बात याद आ गई। 4 साल पहले हमारे घर साइकिल पड़ी थी, 4 साल पहले, और सभी बच्चे स्कूल खत्म करके बाहर पढ़ने चले गए थे, तो हमने उसे सोशल मीडिया पे डाल दिया। और एक दिन एक आदमी आए और बात हुई, और जब उन्होंने पैसा निकाला, मतलब सारी बात तय हो गई होगी पैसों की, तो उन्होंने जब पैसा निकाला तो सिर्फ 10, 20 और 5 के सिक्के थे। मेरे देवर ने पूछा कि इतना पैसा तुम कहाँ से लाए हो, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी सब जमा करके रखी थी साइकिल लेने के लिए। हमारे मुंह से कुछ शब्द नहीं निकला, हमें ऐसा लगा जैसे हम जड़ हो गए हैं। कितना भी उसने कहा कुछ पैसे ले लीजिए, मेरे देवर ने उसमें से सिर्फ 11 रुपए लिए और बोला कि अपनी बेटी को दे दो, फिर से इसे गुल्लक में जमा करें, और यह हमारा आशीर्वाद है।
1: कितना भावुक कर गया ना ये संदेश।
0: बिल्कुल,
1: सचमुच मेरी तो आंख नम हो गई। हाँ। इस तरह से भी यानी देखिए यहाँ पर ऐसा विरोधाभास है कि यहाँ पर कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें पैसों की कदर नहीं होती, और कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए इतना इंतजार करना पड़ता है, इतने सारे पैसे जमा करना पड़ता है।
0: बिल्कुल, और हम अपने, ये हमारे ऊपर होता है सोनाली कि हम अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं,
1: किस तरह की परवरिश
0: कर रहे हैं। कहीं देखिए ना, बच्चे छोटी सी बात बिल्कुल मान जाते हैं, वो हम जैसा कहते हैं वैसा सुन लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं देखने में आता है कि बच्चे बहुत ज्यादा जिद पर एकदम अड़ जाते हैं। बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इस बारे में संदेश लिखा है, ये पहला संदेश मैं पढ़ रही हूँ, कि मुझे ये कहना है बच्चे जिद कभी कभार ऐसी जिद कर देते हैं जिन्हें पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ना पूरी करो तो बच्चे घर में तूफान मचाकर बैठ जाते हैं और पूरे घर को सर पर उठा लेते हैं। लेकिन बच्चों की हार जीत को पूरी करना चाहिए, ये जरूरी नहीं। बच्चों को ये समझना चाहिए कि वो जिस चीज की जिद कर रहे हैं वो कितना जरूरी है या कितना नहीं, उन्हें यह करना चाहिए या नहीं, ये बात उन्हें समझा देना चाहिए। और अगर कभी कभी वो ना माने तो उन्हें थोड़ा सा, आप स्ट्रिक्ट भी ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा कड़क होकर के उन्हें ये बात समझाना बहुत जरूरी है।
1: और बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं ना दीपा, वो हमें ऐसा लगता है कि मासूम है, उन्हें क्या पता है, पर उनकी नजर सब तरफ रहती है। कभी ऐसा होता ना कि हमने पैसे निकाले बैंक से और ऐसे ही रख दिए, और फिर ऐसे ही हम बार बार करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अरे हमारे घर में तो बहुत पैसे हैं, या फिर हमारी मम्मी भी तो ऐसे ही बिना सोचे समझे सामान लेकर आती है, या फिर हमारे यहाँ तो फिर हमारे लिए ही क्यों अनुशासन है। तो पहली पहल तो हमें करना चाहिए कि बच्चों के सामने हमें इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के वही बच्चे ने इतने ज्यादा जिद्दी बन जाते हैं, और फिर हम सिर्फ बच्चों को दोष देते हैं पर उसमें कुछ कारण हमारा भी होता है कि हम उनकी परवरिश कैसे
0: कर रहे हैं।
1: एक साथी ने लिखा है दीपा कि बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे नटखट जिद करते हैं जैसे खिलौनों के लिए, तो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सभी के लिए सुखद अनुभव होता है, लेकिन बड़े बच्चे अगर ऐसी जिद करने लगे तो उनके हित में ना हो तो माता पिता और घर के बड़ों को समझा कर साफ मना करना चाहिए। हमारे बच्चे जब से नर्सरी क्लास में स्कूल जाने लगे तभी से सभी ने हमारा सम्मान करते हुए सिर्फ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड वस्तुओं की ही डिमांड करते हुए आज भी उनकी यही सोच है और जिद नहीं करते। कितने संस्कारी बच्चे हैं।
0: बिल्कुल, देखो ना। और इसी तरह से एक और संदेश है कि राजहट, त्रियाहट और बालहट, तीनों ही जिद मनुष्य का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और आगे कहती है कि भगवान प्रभु कृष्ण चंद्रमा को ही लेने की बात ठान बैठे थे, तब माता यशोदा ने अपनी बुद्धि से उनकी जिद को पूरा करने के लिए आंगन में थाली में पानी भरकर रखा और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया और बोली कि ये ले लो। तो बच्चों का जिद्दी होना उनके विकास का एक सामान्य हिस्सा है, इसे संभालने के लिए चिल्लाने या डांटने के बजाय शांत रहना चाहिए। उन्हें आदेश देने के बजाय विकल्प दें, पहले अपना होमवर्क कर लो तब टीवी देखना, या पहले दूध पी लो तब तुम्हें चिप्स मिलेंगे, और उनकी बात सुनने के बाद उन्हें तर्क से समझाना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये भी जरूरी है कि आप हर बार अगर वो चिप्स की जिद करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप बोलो कि पहले आप होमवर्क करो फिर चिप्स देंगे। चिप्स उनको खाना उनके सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सामग्री लिखी होती है उस पैकेट में पीछे, वो उनको समझाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल उनका इस पे कोई कंट्रोल कहीं भी कुछ भी नहीं है, वो उठा उठा करके चिप्स लेते हैं। ये वाकई में एक एक अलग विषय जो कि विचारणीय है।
1: जी, एक साथी ने लिखा है कि वह क्या कहने, उस जिद के भाई गुल्लक पर जीने के अभ्यस्त होकर उसके पैसे खर्च करने की छूट नहीं थी। यदि जिद की भी जाती तो भली बात ही समझाया जाता था, और जिद को पूरी नहीं करने के उद्देश्य से गुलाब जामुन तक घर में बनवाया जाता था, और केवल भुनी हुई मूंगफली ही पिताजी खरीद लाया करते थे। इतने सख्त और अनुशासन प्रेमी थे, जबकि बच्चों के जिद को पूरे करने के लिए माँ यशोदा ने तो थाली में ही चांद को उतार दिया था, ठीक उसी तरह जिद को ठोक ठाक कर ही उसके विकल्प स्वरूप ही पूरे होने वाले जिद को ही तरजीह दी जाती रही है। इन्होंने कहा है कि भाई यार, हर समय बच्चों की जिद पूरी करना जरूरी नहीं है जहां पर तुम्हें योग है। और ये भी बात है ना कि अगर बच्चों ने जिद की है ना, तो हम तुरंत ही उन्हें बोल देते कि हाँ हाँ हाँ कर देंगे हम, तो ऐसा भी नहीं करे, सोच समझ के उनसे वादा करना।
0: क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत तेज होते हैं और बहुत सतर्क और सब जानकारी लिए हुए होते हैं। एक संदेश ये भी आया है सोनाली, ये कहते हैं कि सिर्फ बच्चे ही क्यों, बड़े भी जिद करते हैं, जो ज्यादातर अपने अनुचित मांगे पूरा करवाने के लिए जिद करने के लिए रूठ जाके या गुस्सा होके या जोर से चिल्लाने वाले जैसी उनके ये मुख्य लक्षण होते हैं। कभी थकान, कभी खराब स्वास्थ्य या कभी तनाव के कारण भी चिड़चिड़ापन आ सकता है। हाँ, बड़ों में ये आ सकता है, लेकिन चूंकि बड़े, क्योंकि घर के बड़े हैं, वो बार बार अगर इस तरह से करेंगे तो बच्चों को लगेगा कि अगर बड़े ही इस तरह से चिड़चिड़े हो रहे हैं या जिद कर रहे हैं तो आप हम छोटों को क्या समझाएंगे। तो बड़ों को भी यहाँ पे बड़ा संभल रखना पड़ता है।
1: और जो ये ना जिद्दीपन का जो गुण है ना, ये बचपन में ही जिसका पनप जाता है तो फिर आगे जाके वो बढ़ते ही जाता है। कि बचपन में माँ ने नहीं सुना तो दादी ने बात पूरी कर दी, पिताजी ने नहीं सुना तो दादाजी नाना जी ने जिद पूरी कर दी, नहीं तो बुआ ने जिद पूरी कर दी, तो फिर जो बच्चों को

0: होता है, बड़े स्मार्ट होते हैं बच्चे, उन्हें मालूम होता है कि अभी इनसे, इनने नहीं की ना तो उनसे मांग लेते हैं, और ऐसे करते उनका जिद्दी स्वभाव बन जाता है, वो बड़ेपन होने के बाद में तो और भी बढ़ते जाता है। एक साथी ने लिखा है कि बच्चे जिद वाली बात चली है बच्चों की, तो मैं बचपन में बहुत जिद्दी था, गर्मी में कोट पहना था, एक बार माता जी गर्म कोट छुपा दिया तो मैं रोने लगा, जिद पकड़ ली कि कोट पहनाया गया तब मैं चुप हुआ, बचपन से मुझे कोट अच्छा लगता था और मैं सर्दी के मौसम में पहनता हूँ, पहना था जब मैं 7 साल का था,
1: तो यानी ये सर्दी की जो मोटी कोट होते हैं
0: वो भी गर्मियों में,
1: वो गर्मी में पहनना इस तरह की जिद करने लगे थे। तो भाई कहीं पे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा ये माहौल में गर्मी ना हो जाए, थोड़ी सी ठंडक लेकर आते हैं,
0: सुनते हैं।

0: और ये ठंडी हवा में डोलते डोलते कहाँ पहुंच गए हम?
1: हम एक ऐसे शहर में पहुंच गए जहाँ पर हमारी सखी ने कहा है कि अब हमारे शहर में अभी इतनी बारिश नहीं हो रही है तो हो जाएगी, बस थोड़े ही दिन में इधर का पानी उधर भी चला जाएगा। वैसे एक साथी ने लिखा है कि हम बचपन में इतने नटखट थे, इतने शरारती थे कि गुल्लक के जो नोट ऊपर आ जाते थे ना तो हम चिमटे से निकाल लेते थे।
0: ये देखिए, ये भी बड़ी खूब एक तरकीब है कि कहां से क्या क्या चीजों की में दिमाग चल जाता है सबका। और देखिए, हमें भी एक आइडिया मिल गया कि पतली सी चीज कोई निकालनी हो तो चिमटे का इस्तेमाल किया लिया जाए।
1: मेरी हमारे एक पहचान वाले थे तो उनके घर में ना एक ऐसा डिब्बा आता है ना जैसे रबड़ी वाला जो जो खीर बनाने में वगैरह इस्तेमाल करते, तो उसमें वो उनकी मम्मी ने

0: ताकि त्योहार के दिन ही खोलना है। तो उन्होंने क्या किया कि उसमें सुई डाल दी उसमें और छोटा सा छेद कर दिया और उसे मुंह में लगा लगा के वो पीने लग गए थे। तो ऐसी भी शरारत
1: ऐसे
0: बच्चे
1: भी
0: करते।
1: शरारत होती है। और एक जिद की बात पर हमारी एक बहन ने लिखा है कि इस बार गर्मियों में हम सास बहू ने मिलकर थोड़े चिप्स बनाए हैं, बस इसलिए कि कभी बच्चे अगर जिद करते हैं तो घर में ही इसे तल कर एयर फ्रायर में भून कर दे दिया जाए। तो
0: क्या
1: ये बात
0: बात
1: सही
0: है।
1: है कि आप बाजार के वो पैकेट के बदले में अगर आप ये घर में ही तल लें तो भी कोई उसमें बुराई नहीं है, या एयर फ्रायर में आप उसको उसको फ्राई करके
0: के दे।
1: दीजिए तो वो भी बहुत अच्छा एक विकल्प है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और बारिश की जो बात हम कर रहे थे ना सोनाली, तो हमारी एक सखी ने लिखा है कि आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, लौटते समय बड़ी तेज बारिश आई और सारा ट्रैफिक जल्दी जल्दी उसमें बहुत जल्दी जल्दी सब लोग भागे जा रहे थे। मुझे भी लौटना था, बारिश की वजह से सड़क फिसलने वाली हो रही थी, तो मैंने ओला की मतलब उन्होंने कैब बुक कर लिया था और जल्दी से बैठकर वापस आई। बार बार ऑटो वाले से धीमे चलने को कह रही थी कि कहीं फिसलने में कहीं गाड़ी स्किड कर जाती तो वो ना हो।
0: तो अपना अपना ध्यान रखना है। एक हमारे सखी ने लिखा है कि बारिश के मौसम में सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़क यातायात सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अत्यधिक सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। मानसून के दौरान सड़कों पर फिसलन बढ़ जाती है और विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे सड़क यातायात नियंत्रण प्रभावित होता है। हेडलाइट्स चालू रखें। भारी बारिश में दृश्यता कम होने पर लो बीम हेडलाइट्स का प्रयोग करें। वाइपर्स की जाँच शुरू करें। यात्रा शुरू करने से पहले विंडशील्ड वाइपर सही ढंग से काम करने की पुष्टि करें। और इन्होंने कहा कि कार के शीशों पर जमी भाप को हटाने के लिए भी डिफॉगर ऑन करें। और सबसे जरूरी बात है कि जो बारिश में जो मेन होल खुले रहते हैं
1: जी
0: तो संभल के चले। बहुत सारे लोग मोबाइल देखते हुए चलते हैं तो
1: अभी भी
0: उसमें।
1: ये जबकि इतनी बातें और
0: हाँ
1: इतनी घटनाएं हम देख लेते हैं फिर
0: जी,
1: भी इस बारे में हम थोड़े से हल्के में ले लेते हैं इस
0: केयरलेस
1: चीज को,
0: हो जाते
1: केयरलेस हो
0: हैं।
1: जाते हैं।
0: तो लापरवाही ना बरते। जब भी रास्ते से पैदल चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल भी हमें सड़क का ध्यान रखना है कि कहाँ पर गड्ढा है, तो ऐसा ना हो कि हम उस गड्ढे में गिर जाएं।
1: बिल्कुल। और अभी क्या कर सकते हैं?
0: गाना सुनते हैं।

0: बारिश में कहीं कोई जरूरतमंद दिखे तो उसका बाहें थाम लीजिए, उसके हाथ पकड़ लीजिए, या कहीं ऐसा लगता है कि किसी के साथ की जरूरत है तो अपना हाथ आगे कर दीजिए, है ना?
1: बिल्कुल, इसी का नाम तो जिंदगी है
0: जी। बिल्कुल, और इसी ये साथ में ही हर मौसम बड़े प्यार से निकल जाता है।
1: बिल्कुल, ऐसी सोच हो ना तो ये मौसम क्या जिंदगी ही बड़ी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ जाती है।
0: बात तो बिल्कुल सही कही, संदेश पढ़ रही हो ना
1: जी। बारिश के दिनों में रोड पर जब भी हम निकले तो अच्छे से देख कर चले, कहीं रोड में गड्ढा तो नहीं, कोई मेन होल तो नहीं खुला, कहीं कोई बिजली के करंट या खंभे में से तो पानी नहीं आ रहा है। अगर आपको पता चलता है तो तुरंत आसपास के लोगों को इकट्ठा करके विभाग को खबर करना चाहिए। यात्रा करते समय ट्रैफिक नियम की कुछ बात लिखते रहे, और उन्होंने कहा कि इस तरह से अपने जो साथी है उनकी मदद करते रहिए। कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि वायर कहीं लटका हुआ है, कहीं पेड़ कोई गिरने वाला है।

0: बिजली के करंट या खंभे में से तो पानी नहीं आ रहा है। अगर आपको पता चलता है तो तुरंत आसपास के लोगों को इकट्ठा करके विभाग को खबर करना चाहिए। यात्रा करते समय ट्रैफिक नियम की कुछ बात लिखते रहे और उन्होंने कहा कि इस तरह से अपने जो साथी है उनकी मदद करते रहिए, कि कभी कभी
1: बिल्कुल।
0: ऐसा होता है ना कि वायर कहीं लटका हुआ है, कहीं पेड़ कोई गिरने वाला है, तो उसकी भी जानकारी तुरंत देना चाहिए। कि कोई अगर बिल्डिंग ऐसी है कि दिख रही है कि उसमें दरारें दिखने लग गई है या टॉयल्स गिरने लग गए हैं उसके, तो इससे हमें दूसरों को सचेत करना बहुत
1: बहुत
0: जरूरी है।
1: जरूरी है। और एक संदेश कहता है कि हम जहां पर रहते हैं, रोज आना जाना करते हैं, तो हमें वहां पता होता है कि रास्ते पर कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ ब्रेकर है। जो जब हम किसी नए शहर में जाते हैं या कोई अन्य शहर में जाते हैं, तो बारिश में संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि रास्ता कैसा है, वो रोड जहां पे हमें रोज का आना जाना है वो कैसा है। तो उस वक्त आप जरूर इस मौसम में ख्याल रखिए।
0: एक साथी ने लिखा है कि बारिश शुरू होने पर सड़कें सबसे ज्यादा फिसलन भरी हो जाती है, क्योंकि पानी जमा हुए तेल, ग्रीस और धूल के साथ मिलकर टायरों की पकड़ को कम कर देता है। यहां तक कि पानी की पतली परत होने पर भी, खासकर बारिश के पहले कुछ मिनटों में हाइड्रोप्लानिंग हो सकती है, इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। साथ ही और आप गाना सुनते हैं?
1: चलिए

0: सोनाली देखिए, अब वक्त वाकई में हो चुका है सयोनारा यानी कि बाय कहने का, विदा लेने का।
1: पहले श्रोताओं को हम धन्यवाद कहेंगे, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखे, इसी तरह कमेंट्स लिखते रहिए, विविध भारती से जुड़े रहिए और सखी सहेली सुनते रहिए। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुति

0: नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। और मुंबई की इस झमाझम बारिश में हो रही है श्रोताओं की बातचीत की बरसात और साथ में पड़ रही है गानों की फुहार। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातचीत का, देखते हैं ये पहला कॉल किसका आया है। हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: गिराम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी भगवान जी, बताइए क्या हाल है आपका और सीहोर का क्या हाल है?
1: सीहोर में दीदी बारिश हो रही है और हमारा हाल भी अच्छा है दीदी। हम खेती किसानी करते हैं और हमारे इधर सोयाबीन और मक्का की बुआई हो चुकी है दीदी। 12-13 दिन की फसल हो चुकी है हमारे इधर।
0: वाह भाई वाह, क्या बात है। तो आपका अपना क्या शौक है बताइए
1: दीदी? मुझे तो क्रिकेट देखना का बहुत शौक है और मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, अब तो नहीं खेलता हूँ दीदी।
0: अब क्यों छोड़ दिया
1: दीदी? अब क्या है, खेती किसानी में रहते हैं ना, इसलिए टाइम नहीं मिलता दीदी।
0: तो क्रिकेट खेलने के शौकीन रहे तो रेडियो से क्रिकेट कमेंट्री का बहुत चार्म रहा है, तो आप सुना करते थे क्रिकेट कमेंट्री रेडियो पर?
1: जी दीदी, हम बहुत सुनते थे पहले, क्या है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी दीदी, तो हम रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे दीदी और बहुत अच्छा लगता था हमको।
0: जी जी, और एक अलग नॉस्टैल्जिया होता था रेडियो से क्रिकेट कमेंट्री का, एक ही रेडियो और चार चार पांच पांच लोग मिल के सुना करते थे, है ना, वो गजब के दिन थे।
1: क्या हमारे यहाँ तो दीदी पूरे गांव के करीबन 20-25 इकट्ठा लोग हो जाते थे गांव में से, फिर सुनते थे दीदी।
0: एक घर में रेडियो होता था और आंगन की मुंडेर पर रख दिया जाता था और बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर रेडियो सुनते थे, है ना। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है खुददार और गाने के बोले तुमसा कोई प्यारा मासूम नहीं है, ये वाला भी सुनना है दीदी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया। सुनते हैं खुददार फिल्म का ये।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते मैम साहब।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं राजस्थान के डीडवाना कुसावन जिले के छोटी बेरी गांव से सिकंदर खान बोल रहा हूँ जी।
0: जी बताएं सिकंदर जी, क्या हाल है? ये कोयल की आवाज आ रही है भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या बाघ से बोल रहे हैं क्या किसी?
1: नहीं एक्चुअल में क्या, अभी मैं खेत में बैठा हुआ हूँ तो वहाँ से कॉल कर रहा हूँ आपको।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया। बारिश नहीं हो रही है
1: राजस्थान में? अभी एंट्री हो रही है धीरे धीरे, दक्षिण राजस्थान में तो मानसून आ गया अभी।
0: बढ़िया, ये कोयल की कूक तो बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी मीठी तान छेड़ी है कोयल ने। कौन कौन से पेड़ हैं खेत के आसपास?
1: खेत के अंदर तो ये जामुन के हैं, पपीते हैं, आम वगैरह हैं।
0: तो खेत में किस चीज की बुआई चल रही है अभी?
1: अभी तो ये मानसून की बारिश में जो ये बाजरा है, गंवार है, ये मोठ वगैरह की बिजाई चल रही है जी।
0: और उसके बाद फिर धान की बुआई होगी जब बारिश होगी, तब
1: फिर वो जो रबी वाली फसल है वो स्टार्ट हो जाएगी।
0: जी जी, खेती किसानी की सुविधाएं क्या क्या उपलब्ध है आपके यहाँ?
1: यहाँ पे हमारे वैसे तो ये इंदिरा गांधी नहर की भी सुविधा है, उसके अलावा ये ट्यूबवेल है, कुएं वगैरह, इनसे भी सिंचाई हो जाती है। इन दिनों में मानसून जो हो जाता है तो उसकी भी फसल अच्छी होती है।
0: बढ़िया, बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फकीरा पिक्चर है उनका गाना है, वो के रहूंगी तेरी,
0: दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी।
1: मैं साहब बहुत पुराना श्रोता हूँ, जब से वो जो ये हेलो फरमाइश शुरू हुआ था कमल शर्मा ने 1996 में स्टार्ट किया था, वो मैंने पहला प्रोग्राम सुना था मैम साहब।
0: जी जी, बहुत बढ़िया, तब से आप सुन रहे हैं, तब से तो कितने सारे बदलाव हुए प्रोग्राम्स में,
1: बहुत काफी चेंजेस हुए हैं साहब। लेकिन 26 साल में कॉल लगा नहीं, लेकिन 2026 में मेरी दूसरी बार बात हो रही है वीर भारती में।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम फकीरा।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, मैं इंदौर से सत्यप्रकाश दीक्षित बोल रहा हूँ। ममता दीदी
0: जी, सत्यप्रकाश जी बताइए, क्या हाल है आपका? इंदौर का क्या हाल है? बारिश वगैरह हो रही है?
1: हाँ, अभी पिछले एक हफ्ते से प्रकृति की बहुत अनुपम कृपा है कि अच्छी बारिश हो रही है और चारों तरफ हरितिमा और प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ गया है।
0: जी,
1: और ऐसा लगने लगा है कि सावन बहुत निकट ही है और आनंददायी वातावरण हो गया है।
0: सावन का जब इंतजार होता है तो मन यादों के गलियारे में पहुंच जाता है, तो जब सावन आता था तो आप अपने यादों के गलियारे में जाइए और बताइए कौन सा सावन आपके लिए बड़ा यादगार रहा है? बचपन में जो सावन के झूले पड़ते थे नीम के पेड़ पर, तो कभी झूलने का मौका मिला?
1: भी याद आते हैं, पेड़ों पे जब गांव में जाते थे तो पेड़ों पे झूले झूलते थे, बड़ा मनोरम वातावरण लगता था सावन का। चारों तरफ एक जो प्राकृतिक सुषमा प्रकृति की दिखती थी, बहुत ही मन भावन रहती थी और आज भी वह सब देखने के लिए मन तरसता है। अब शहर में जरूर रह रहे हैं पर गांव की वो हरितिमा और वसुंधरा जो प्राकृतिक वातावरण में जो सावन में हो जाती है वो बहुत याद आती है। और अक्सर हम जाया भी करते हैं गांव में, तो वो पुराने दिनों को याद करके, सावन को याद करके मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, हर्षित हो जाता है।
0: तो उन दिनों में कजरी वगैरह गाई जाती थी सावन में, याद है क्या आपको?
1: हाँ, मैंने बहनों से भी सुने हैं वो है। अभी तो खैर मैं चूंकि अभी वरिष्ठ नागरिक हूँ, 71,
0: अच्छा।
1: तो थोड़ी सी याददाश्त भी अब थोड़ी सी क्षीण हो चली है, पर हाँ मैंने बहुत सुने हैं, बड़े मन भावन गीत और कजरी रही है।
0: आप बताइए आज कौन सा गाना सुना चाहेंगे? और ये भी बताइए, आपने कहा इतने वरिष्ठ नागरिक हैं, कहाँ पर आपने काम किया और कितने साल से रेडियो सुन रहे हैं?

0: में आधिकारिक के रूप में काम किया करीब 40 वर्ष।
1: अच्छा।
0: और अभी 10 साल से सेवानिवृत्त हूँ। सामाजिक सेवा में और दूसरे कार्यों में समय निकल जाता है, पारिवारिक दायित्व भी है, उनका भी निर्वहन करते हैं। लोग रिटायरमेंट को ये कहते हैं कि अब आपकी सेकंड इनिंग चालू हो
1: रही
0: है, तो वो एक तरह से सही भी कहते हैं कि अपन उन दायित्वों को पहले सर्विस में रहते नहीं पूरे कर पाए, तो उन दायित्वों का निर्वहन कर लें। और जो आनंद कहीं किसी विशेष स्थान की यात्रा वगैरह का नहीं ले पाए हों, कंपोजिट टूर प्रोग्राम हो, जब समय मिलता है तो पर्यटन के लिए, तो उन स्थानों पर जब भी जाने का मौका लगता है तो समूह के साथ चले जाते हैं और
1: बिल्कुल बिल्कुल घूम के आए और एंजॉय करें। तो सत्यप्रकाश दीक्षित जी का फोन बीच से डिस्कनेक्ट हो गया, बातचीत उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से की, शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका। और उनके लिए हम सुनवा रहे हैं अनजाना फिल्म का ये गाना।

0: कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं अशोक आनंद बोल रहा हूँ, लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से।
0: आपने लेक सिटी उदयपुर कहा तो पूरे देश में बहुत सारी जगहों पर खूब बारिश हो रही है, मुंबई में भी, तो क्या आपके उदयपुर में बारिश हुई तो झीलें भर गई?
1: कल शाम को भी बहुत झमाझम बारिश हुई थी।
0: क्या बात है, झीलें लबालब भर गई होंगी फिर तो?
1: नहीं, अभी उसमें बहुत टाइम लगेगा, अभी उसमें जुलाई अगस्त तक में भरेगी। झीलों की नगरी है तो काफी सारी झीलें हैं, और जैसे जैसलमेर लेक है तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
0: जब बारिश होती है तो आप सोचते हैं कि राजस्थान में खासतौर से पानी की कमी होती है, तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं लोगों से मिलजुल कर?
1: मैंने जैसे कई बार देखा अपने घर पे भी, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जैसे अपने छत पे जो पानी होता है उसको पाइप से अपने वापस बोरिंग के अंदर जैसे सेट करवा रखा है, और वेस्ट पानी करते नहीं है। पर राजस्थान में हमारा उदयपुर शहर जैसे है ना, इतना पानी का यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम जैसे राजस्थान में लोग बोलते हैं कि सूखा होगा, वो एक्चुअली है जोधपुर जैसलमेर, उससे ज्यादा सूखा होता है।
0: जी जी, वहाँ की और जगहों के बारे में बताइए, उदयपुर के आसपास क्या कुछ है?
1: उदयपुर के बाद में बताना चाहूंगा कि जैसे उदयपुर के पास में एक सज्जनगढ़ फोर्ट किला है, जिसकी दीवार विश्व की सबसे दूसरे नंबर की दीवार है, और उदयपुर पर्यटक की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो विश्व में एक नंबर पे आता है।
0: वाह।
1: तो पहले किसी जमाने में फर्स्ट प्रायोरिटी कश्मीर और दिल्ली हुआ करती थी, अब उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी मोस्टली होती है कि राजस्थान में उदयपुर या और दूसरे किले फोर्ट वगैरह, और राजस्थान के कुछ अच्छे मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध थी उनको देखने के लिए, विजिट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं।
0: क्या बात है, आप जो जानकारी दे रहे हैं, हमारे श्रोताओं की जानकारी समृद्ध हो रही होगी, और बड़ा अच्छा लग रहा है इतनी सारी बातें आपने बताई।
1: मैं और आपसे अर्ज करना चाहूंगा।
0: जी हाँ।
1: गाना आज का मेरा जो पसंद का है वो कुदरत फिल्म का है, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, नितिन मुकेश। नितिन मुकेश जी मेरे फेवरेट सिंगर हैं, बहुत अच्छा लगता है उनका गाना सुनना मुझे।
0: और मुकेश के गाने?
1: जी मुकेश के भी सुनता हूँ, किशोर जी के भी, लता जी के भी, खासकर मदन मोहन जी और लता जी का जो कॉम्बिनेशन है ज्यादा लाइक करता हूँ।
0: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया और इतनी सारी बातचीत की। तो बस विविध भारती से भी, सारे श्रोताओं से, आपकी दोस्ती यूं ही सलामत रहे इस बात के साथ बातचीत को दे रहे हैं विराम, और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: दीदी आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लगानिया बोल रहा हूँ।
0: राजू जी, आगरा में क्या खास है बताइए, कोई विशेष धरोहर है?
1: जी दीदी, आगरा में तो सबसे पहले तो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल ही है, लाल किला है, सिकंदरा है, आगरा का पेठा,
0: आगरे का पेठा भी बहुत मशहूर है। क्या बात है भाई।
1: जी बिल्कुल, और आज मेरा सौभाग्य है कि मेरी बात आज ममता दीदी से हो रही है, बड़ा खुशी हो रही है दीदी मेरे को।
0: जी बहुत शुक्रिया, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। अब जरा आगरे के ताजमहल के बारे में बताइए, आपने देखा है ताजमहल?
1: देखिए दीदी, मैं तो ब्लाइंड पर्सन हूँ।
0: अच्छा, ओ
1: तो मैं तो कभी ताजमहल गया नहीं, मैं तो उन्हीं जगह जाता हूँ जहाँ भगवान का मंदिर होता है, क्योंकि भगवान के मंदिर में हमें मंदिर नहीं देखना होता है, भगवान हमें खुद देखते हैं। वो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हमें भगवान को दिखाई दे या न दे, लेकिन भगवान हमें दिखे।
0: जी मैं बिल्कुल, बहुत सही बात है। तो बताइए और क्या करते हैं आप दिन भर घर में?
1: जी दीदी, मुझे संगीत से शौक है, मैं रेडियो सुनता हूँ, आपके विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनता रहता हूँ अपने रेडियो के माध्यम से।
0: अब हमें बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, और आपने कहा कि संगीत का शौक है, तो निश्चित रूप से आप भी गाते होंगे, क्या सीखा है आपने गाना क्या?
1: बिल्कुल, आज की फिल्म है लम्हे, आवाज है लता जी, अरुण जी और सखियों की, और गाने के बोल हैं

0: तूने किसको याद किया, ये वाला गाना सुनना था दीदी।
1: वाह, बहुत अच्छा गुनगुनाया आपने। तो आपने कौन सा संगीत सीखा, शास्त्रीय संगीत या सुगम संगीत?
0: जी दीदी, मैं ज्यादातर लाइट म्यूजिक में चलता हूँ, कथाओं में, भागवतों में, सुंदरकांड में, सत्संगों में। मैंने कुछ नहीं सीखा, थ्योरिकली मैंने कहीं से कुछ नहीं सीखा, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है जो कुछ भी है।
1: अच्छी बात है। तो कोई लोकगीत भी याद है उत्तर प्रदेश का?
0: जी बिल्कुल, ब्रज का लोकगीत मेरे को बिल्कुल याद है।
1: तो सुनाइए फिर हमारे श्रोताओं को भी।
0: अरे बंसी।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: टेकचंद अग्रवाल बोल रहा था मैडम, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: जी टेकचंद जी, बताइए क्या हाल है आपका और छिंदवाड़ा का क्या हाल है?
1: मैडम हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हैं?
0: बढ़िया, एकदम बढ़िया। बारिश वारिश हो रही है?
1: हाँ मैडम, 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, कहना चाहिए झमाझम बारिश हो रही है, जैसा कि हम लोग चाहते हैं, कहना चाहिए एक प्रसन्नता की बात है। और साथ में हमारे जो किसान भाई हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं।
0: स्वाभाविक है उनकी खुशी, उनके लिए तो पानी एक अमृत की तरह है, सारा कुछ पूरी खेती किसानी उनकी बारिश पर ही निर्भर करती है ना।
1: जी जी जी
0: तो आप अपने बारे में बताइए, आपका क्या काम काज है?
1: मैडम मैं जो हूँ एक सीनियर सिटीजन हूँ, और मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि मैं ये जो जुलाई माह आएगा ये मेरे लिए काफी वरदान साबित है कहना चाहिए।
0: अच्छा, किस सिलसिले में?
1: क्या हुआ मैडम, सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि 2001-07-2020 को मेरा रिटायरमेंट हुआ है ऑल इंडिया से, तो सुरक्षित हम अपने काम से अपने घर लौटे हैं, ये बहुत खुशी की बात है।
0: कहाँ काम करते थे?
1: कोल इंडिया में मैडम, तो मैं उससे कहना चाहिए 38 वर्ष देकर के सुरक्षित अपन घर पर पहुंच गए हैं, ये एक हमारे लिए काफी और हमारे परिवार के लिए खुशी की बात है।
0: जी जी, बहुत बढ़िया बात है। तो वहाँ के कोई अनुभव, कोई छोटी सी घटना, कोई बात हो तो बताइए।
1: पहले जो होता था वो काफी असुरक्षित मतलब रहता था माइंस में काम करना, लेकिन अभी सरकार ने इतना ज्यादा सुरक्षित मतलब वर्करों को कर दी गई है, तो कहना मैडम अब उतना जो हमारे साथ जो घटनाएं होती थी वो अब नहीं के बराबर हो गई है। हम अपनी लापरवाही से कहना चाहिए या असावधानी जो होती है उससे दुर्घटनाएं होती है।
0: जी जी,
1: तो ये कहना चाहिए एक बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में जो दुर्घटनाएं नहीं के बराबर हो रही है वो काफी हमारे मजदूरों को या हमारे जो साथ के कामगार हैं लोग को काफी प्रोत्साहित करती है इस ओर काम करने के लिए।
0: जी,
1: नहीं तो पहले के मजदूर मैडम काम करना छोड़ करके भाग जाते थे।
0: तब भी बहुत मुश्किल काम है, थोड़ा तो जोखिम भरा काम है ये।
1: धरती को चीर करके उसके सीने से कोयला निकाला जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है, और प्रकृति के विरुद्ध काम करना कहना चाहिए किसी भी क्षेत्र में हो, प्रकृति के विरुद्ध करना हम देख रहे हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक ही हो, चाहे वो हम पृथ्वी के अंदर से कोयला निकाल रहे हों या बाहर प्रकृति के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं, आज जो प्रदूषण हो रहा है या हम पेड़ काट रहे हैं, तो उसका भुगतान अभी हम ये बारिश देख ही रहे हैं कि

0: कैसे कई जगह पे हो रही, कई जगह पे हो ही नहीं रही।
1: जी बिल्कुल, मतलब जो पर्यावरण का असंतुलन होता है इस सबसे, वो हम सबके लिए बहुत नुकसानदेह है। अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: फिल्म है कहीं दिन कहीं रात, महेंद्र कपूर जी और आफा जी की आवाज है, संगीत ओपी नैयर का है, गीत है एच बिहारी का, और गीत है मैडम तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में।
1: क्या बात है, बढ़िया गीत चुना है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार
1: वो प्यार भरा सुनने वाले हो। हेलो फरमाइश सुनने वाले हो, प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है पांडुरंग मोरे, मुक्काम पोस्ट वारंगा फाटा, तालुका कळमनुरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। दीदी
0: जी, पांडुरंग जी बताइए, बड़ा लंबा चौड़ा परिचय देते हैं।
1: कैसा है बम्बई में मौसम? कैसा है? इधर बारिश नहीं है, उधर बारिश होंगी तो थोड़ा भेज दो हमारे इधर महाराष्ट्र में।
0: एकदम भीगा मौसम, खूब सारी बारिश हो रही है और खूब सारी बारिश आपके रेडियो सेट तक भेजेंगे आपके गाने के माध्यम से और आपकी बातचीत के माध्यम से। जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है हीरो, गाने के बोल है तू मेरा हीरो है मैं तेरा, हीरो टाइटल सॉन्ग का गाना सुनना है।
0: सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं सेवन सिस्टर त्रिपुरा से आशुतोष देवनाथ बोल रहा हूँ।
0: प्राकृतिक सुषमा जहाँ पर मौजूद है, और दिल वहाँ जाए तो दिल वहीं पर रुक जाने का मन करता है ना, तो सबसे पहले आप त्रिपुरा के हालचाल बताएं। त्रिपुरा में जो प्राकृतिक छटा है वहाँ के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: मैम अभी तो त्रिपुरा में बारिश का सीजन है और कुछ दिन से लगातार बारिश चल रहा है। कभी कभी रुकता है, धूप निकलता है, फिर बारिश, ऐसा ही चल रहा है लगभग दो महीना।
0: तो ये बताइए कि बारिश जब होती है ज्यादा तो वहाँ के लिए नुकसानदेह है या सही है? ठीक है।
1: नहीं मैम जी, ज्यादा बारिश होने से तो नुकसान तो हो ही जाता है
0: बिल्कुल। और वहाँ के आसपास की जगहों को आपने कहा ना सेवन सिस्टर्स, यानी कि वो जो कौन कौन से उसमें शामिल है सेवन सिस्टर्स में, बताइए।
1: सेवन सिस्टर में त्रिपुरा का पासी है आसाम, और आता है मेघालय,
0: अरुणाचल प्रदेश,
1: मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,
0: मतलब खूबसूरती का आलम है। तो त्रिपुरा के आसपास क्या है बताइए।
1: त्रिपुरा में तो मैं जहाँ रहता हूँ मैम जी, त्रिपुरा का नॉर्थ साइड में मैं रहता हूँ। ये ऊनकोटी टेम्पल, बाहर से बहुत लोग आता है दर्शन करने के लिए, ये चार्ज करने

0: से मैम जी आपको मिल जाएगा।
1: जी जी जी।
0: इंडिया का बाहर से भी आता है मैम जी,
1: जी बिल्कुल
0: देखने के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: त्रिपुरा का और मसूर टेम्पल है त्रिपुरेश्वरी मंदिर, देवी का और शरीर का एक अंग घिरा था त्रिपुरेश्वरी मंदिर में, जो असम में भी एक घिरा था और बन गया बड़ा टेम्पल माँ कामाख्या।
1: तो ये शक्तिपीठ है।
0: बिल्कुल।
1: और एक और खास बात है त्रिपुरा की, त्रिपुरा से एक बहुत बड़े संगीतकार आए जिन्होंने पूरी फिल्मी दुनिया में जिनके संगीत का जादू छाया, हम सब के दिलों पर आज भी कायम है उनके संगीत का जादू। वो नाम आपको पता है?
0: बिल्कुल पता है मैम जी, सचिन देव बर्मन
1: जी।
0: और तो, उनका बेटा तो पिताजी को भी छोड़ के चला गया,
1: राहुल देव बर्मन। तो इसलिए त्रिपुरा और खास हो गया ना आपके लिए। तो
0: जी जी।
1: तो बताइए फिर कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं आज?
0: जी आज मुझे याद आया 1980 में रिलीज हुआ फिल्म का नाम है फिर वही रात, और इस गाने को गाया है सुरों का मल्लिका लता जी ने बिंदिया पेरिस से, और इस गाने को लिखा है मैम जी संगीत का सबसे बड़ा राइटर में एक नाम है मजरूह सुल्तानपुरी जी।
1: जी गीतकार।
0: संगीत तैयार किया है आदि बर्मन
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने त्रिपुरा से हमें फोन किया। अब बातचीत कर रहे हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश,
1: आपको प्रणाम है।
0: आपको भी प्रणाम है। नाम और कहाँ से बोल रहे हैं जरा बता दीजिए।
1: पहड़िया वाराणसी उत्तर प्रदेश अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 से अनिल रमा गुप्ता गोंड।
0: वाह भाई बढ़िया। तो ये नाम परमानेंट लगा रखा है अपने नाम के साथ अपनी पत्नी का?
1: जी जी जी, जब भी फरमाइश भेजता हूँ मैं वाराणसी से, वाराणसी का रहने वाला हूँ, तो यही बोलता हूँ श्रोता दंपति।

0: अनिल, जैसे मेरा नाम है अनिल गुप्ता गोंड और वाइफ का नाम है रमा गुप्ता गोंड,
1: तो
0: श्रोता दंपति अनिल रमा गुप्ता गोंड।
1: जी बहुत बढ़िया, आपने स्पष्ट कर दिया। तो बताइए अनिल जी और रमा जी के क्या हाल है और बनारस का क्या हाल है?
0: जी बनारस में तो इस समय तो मौसम बहुत सुहाना हो गया है, बरसात हो रही है। दो तीन दिन पहले तो बहुत गर्मी थी,
1: तो अब जरा बताइए कि बारिश हो रही है बनारस में, गंगा जी है तो इस समय क्या बाढ़ आई है, उसमें उफान पर है या नॉर्मल है नदी?
0: नहीं नहीं अभी उतना नहीं है, जब एक्चुअल में जब ये उत्तराखंड में बरसात बहुत तेज होती है तो पानी का स्तर बढ़ने लगता है, लेकिन अभी इधर बरसात तो उतनी हुई नहीं जितनी उम्मीद रहती है हर साल, तो उतनी बरसात इधर उत्तर प्रदेश में कम हुई है बरसात।
1: जी बनारस में जो गंगा आरती होती है शाम को उसकी बड़ी प्रशंसा होती है, आप जरा बताइए क्या होता है उसमें?
0: गंगा आरती में एकदम बहुत बड़े बड़े वो दीपक टाइप के लेके उसमें हवन सामग्री जलाई जाती है।
1: गंगा जी में नौका विहार का भी एक अलग आनंद होता है, तो आपने कभी नौका विहार किया है वहाँ रहते हुए?
0: कई बार किए हैं। चलो मैं तो पहाड़िया क्षेत्र में रहता हूँ, लेकिन मैं गंगा जी में 78 में बनारस में आया था, मैं पहले दिल्ली में रहता था, तब से बहुत बार मैंने गंगा जी स्नान किया है, पूजा पाठ और आरती देखी गई है। मैं रहता हूँ वहीं बगल में सारनाथ है।
1: अरे वाह क्या बात।
0: तो सारनाथ में जैसा आप जान ही रहे कि अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह है म्यूजियम में,
1: फिर बनारस का पान, बनारस की चाट बहुत मशहूर है, और बनारस मतलब पूरे उत्तर प्रदेश का लोकगीत बहुत मशहूर है, बनारस की ठुमरी बहुत मशहूर है, तो इनमें से आपको क्या शौक है? क्या बनारस की ठुमरी या बनारस का कोई लोकगीत याद है, सुनाना चाहेंगे श्रोताओं को?
0: कजरी जो है, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू।
1: अरे वाह क्या बात।
0: मिर्जापुर कैला गुलजार हो,
1: तो गा के सुनाई ये गनवा।
0: मिर्जापुर कैला गुलजार हो, मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू।
1: बहुत बढ़िया, बताइए कौन सा गाना?
0: देखिए बरसात का मौसम है तो मल्हार राग पर एक गाना था लगान फिल्म के, नर गनर घिरा है बदला, ए आर रहमान जी जावेद अख्तर जी के बाद में लिखल
1: बेहतरीन गाना चुना है बारिश के मौसम के अनुरूप। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, दोस्ती वो भी नहीं जो मुस्कान देती है। अरे सच्ची दोस्ती तो वो है जो पानी में गिरा हुआ आंसू भी पहचान लेती है। नमस्कार मैम जी।
0: क्या बात है भाई, नमस्कार। आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: राजेंद्र गंगवार, कस्बा कुंडलिया, तहसील नवाबगंज, झुमका सट्टी, बरेली, उत्तर प्रदेश से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं मैम जी।
0: क्या बात है भाई, बरेली से बोल रहे हैं।
1: हाँ जी मैम जी, आपसे लगता है हमारी पहली बार बात हो रही है।
0: जी, बरेली का नाम एक गाने में आता है, कौन सा गाना है याद है क्या आपको?
1: हाँ जी, साया मूवी का है, झुमका घेरा रे बरेली
0: बरेली
1: के
0: के
1: बाजार में।
0: बाजार में।
1: हाँ
0: और बरेली की और कोई
1: जी,
0: खासियत हो तो बताइए आपके नजर से।
1: बरेली की खासियत एक जरी के नाम से जाना जाता है, और एक नया काम चल रहा है, राम वाटिका जो रामायण में दिखाया गया वो सभी बनने आया है मैम जी।
0: अच्छी बात है। और
1: जी
0: अपने काम काज के बारे में बताइए, आप क्या करते हैं?
1: मैम जी, अभी तो खैर हमारे मकान का काम चल रहा है, वैसे तो हम भी जरी का ही काम करते हैं।
0: जरी का काम
1: हाँ
0: करते
1: जी
0: हैं, मतलब जरी वाली साड़ियाँ तैयार करते हैं या और दूसरी तरह के कपड़े, कुर्ते, क्या बनाते हैं
1: मैम जी, हम
0: क्या?
1: सूट भी बना लेते हैं, साड़ियाँ भी बना लेते हैं, आए शेरवानी भी बना लेते हैं, कलियाँ भी बना लेते हैं, और जो साड़ी होती है रेशम, करदाना, मोती, ये भी बना लेते हैं।
0: तो जरी के किस काम की ज्यादा मांग होती है, क्योंकि आजकल लोग सादा पसंद करते हैं ना ज्यादातर
1: सबसे ज्यादा डिमांड होती है लहंगा चुन्नी की।
0: शादियों में?
1: हाँ मैम जी,
0: बताएं कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: हाँ जी, मूवी का नाम रहेगा दिलवाले, गाने के वो रहेंगे सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूरी हो रही आपकी फरमाइश, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से बता दें 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का एसटीडी कोड 022। और अब चलने से पहले आपको ये भी बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक वे हमें कृपया फोन ना करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें कॉल करने

0: लीजिए आप सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में श्री मोदी ने सिडनी में प्रवासी भारतीयों से हुई मुलाकात को याद करते हुए कहा कि वे मेलबर्न के लोगों से भी बातचीत करने के लिए उत्सुक थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी।
2: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहां पहुंचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहां आया हूं, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। इस दौरान संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज ने इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया। उन्होंने समुद्री अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय समृद्धि का परिवर्तनकारी इंजन बताते हुए युवाओं से आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित मत्स्य पालन और समुद्री व्यवसायों को विकसित भारत की आधारशिला के रूप में अपनाने का आग्रह किया। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6 लाख करोड़ रुपए के विशाल निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नए भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के अंतर्गत निर्धारित

0: वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह सरकार के निरंतर प्रयासों और जनता की सक्रिय भागीदारी का परिणाम है। भारत अफगानिस्तान संयुक्त समिति की चौथी बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस दौरान मानवीय सहायता, विकास साझेदारी, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, क्षमता निर्माण, शिक्षा, खेल, व्यापार, वीजा और संपर्क सहित द्विपक्षीय संबंधों के समूचे परिदृश्य की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव एम आनंद प्रकाश और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शुएब बरयलाई ने की। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मानसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टी20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में ये मैच जीतना होगा। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हो रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदन। शाम 5:30 युवा साथी कार्यक्रम सुनेंगे योगवाणी, और इस कार्यक्रम में आज हमारी बात के अंतर्गत बात होगी मोबाइल कहीं नशा न बन जाए विषय पर, और नए विचारों और नई ऊर्जा का वाहक है युवा वर्ग, इस पर भी हमारी बात होगी। एआई और डेटा साइंस के क्षेत्र में करियर के बारे में भी जानकारी दी जाएगी कार्यक्रम में। 6:00 हम आपको सुनाएंगे एक भोजपुरी लोकगीत, और 6:05 पर पटना केंद्र से हम रिले करेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन। संध्या 6:10 पर किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम प्रसारित होगा किसान वाणी। कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, और किसान वाणी कार्यक्रम में किसान भाई आज सुनेंगे एक वार्ता। वार्ता का विषय होगा धान की खेती कैसे करें, और वार्ताकार होंगे डॉक्टर के प्रसाद। इसके अलावा चर्चा होगी कार्यक्रम में धान की रोपनी की नई तकनीक विषय पर, और आज की नसीहत होगी लोन का समय पर करें भुगतान। 6:40 पर भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सांझ गीत, और 7:00 हम आपको सुनाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान।

संध्या 7:15 पर हमारा सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम होगा। गुड इवनिंग रोहतास। शाम 7:30 प्रादेशिक समाचार और उसके बाद जिले के हलचल हम रिले करेंगे पटना केंद्र से।

ई मनपसंद ईमेल आधारित हमारा फरमाइशी कार्यक्रम होगा शाम 7:50 से और रात्रि 9:15 समाचार संध्या हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से।

रात्रि 9 बजे से आप सुनेंगे लोकधारा कार्यक्रम में कुछ भोजपुरी लोकगीत, और रात्रि 9:15 पर गजलों का हमारा कार्यक्रम होगा महफिल। रात्रि 9:30 पर विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार हम रिले करेंगे। रात्रि 10 बजे से आप सुनेंगे रसरंग कार्यक्रम में हिंदी एल्बम सॉन्ग्स, और रात्रि 10:30 कार्यक्रम होगा चित्रपट तराने। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार 11:05 पर हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से, और 11:10 पर हमारी आज की सभा समाप्त होगी। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो घड़ी में 5:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओ, आकाशवाणी सासाराम से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। आप लीजिए सुनिए अनूप जलोटा के स्वर में ये भक्ति रचना।

विशेषता है इस भजन में, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में होता है। ये ध्यान में रख के सुनिए।

अनुप जलोटा की गई इस भक्ति रचना के साथ ही वंदन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवाणी।

दोस्तों नमस्कार। आज युवाणी कार्यक्रम में मैं आपके साथ हूं, आपका रेडियो दोस्त लाल बहादुर। दोस्तों युवाणी कार्यक्रम में आज हमारी बात होगी मोबाइल कहीं नशा ना बन जाए और नए विचारों और नई ऊर्जा का वाहक है युवा वर्ग विषय पर। और दोस्तों एक जानकारी हम देंगे एआई और डेटा साइंस में करियर के क्षेत्र में। इससे संबंधित फिल्मी गाने तो हम आपको सुनवाएंगे ही। तो चलिए दोस्तों बात शुरू करते हैं मोबाइल कहीं नशा न बन जाए इस विषय पर।

दोस्तों, मोबाइल फ़ोन आधुनिक युग का एक ऐसा वरदान है जिसने इंसानी ज़िंदगी की रफ्तार और सहूलियत को कई गुना बढ़ा दिया है। लेकिन यदि इसका उपयोग अनियंत्रित हो जाए तो यह एक गंभीर मानसिक और शारीरिक नशा बन जाता है। आज विज्ञान के इस बेहतरीन आविष्कार का अत्यधिक और गलत इस्तेमाल समाज के लिए एक बड़ी चेतावनी बन चुका है। दोस्तों, शुरुआत में मोबाइल का आविष्कार केवल दूर बैठे लोगों से बातचीत करने के लिए हुआ था। धीरे धीरे इंटरनेट, सोशल मीडिया और गेमिंग एप्स के आने से इसने पूरी दुनिया को एक छोटी सी स्क्रीन में समेट दिया। आज स्थिति यह है कि सुबह आँख खुलने से लेकर रात को सोने तक इंसान का हाथ मोबाइल से चिपका रहता है। बिना किसी ज़रूरत के भी बार बार नोटिफिकेशन चेक करना, रील्स स्क्रॉल करना और ऑनलाइन गेम्स में घंटों बिताना इस बात का सबूत है कि मोबाइल अब केवल ज़रूरत नहीं बल्कि एक गलत लत यानी एडिक्शन बन चुका है। दोस्तों, जब कोई आदत इंसान के नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो वह नशे के रूप ले लेती है। मोबाइल का नशा भी इंसानी शरीर और दिमाग को खोखला कर रहा है। जैसे कि घंटों एक ही स्थिति में बैठकर स्क्रीन देखने से आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाता है, पीठ व गर्दन में दर्द और अनिद्रा जैसी गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। सोशल मीडिया पर दूसरों की नकली जिंदगी से खुद की तुलना करने के कारण युवाओं में अवसाद यानी कि डिप्रेशन, अकेलापन और चिड़चिड़ापन तेजी से बढ़ रहा है। और दोस्तों, मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से छात्रों की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और याददाश्त कमजोर हो रही है, जिससे उनके शैक्षणिक प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ रहा है। तो इस डिजिटल नशे से इंसानी रिश्तों के ताने बाने को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। एक ही घर में एक ही सोफे पर बैठे चार लोग आपस में बात करने के बजाय अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। वास्तविक सामाजिक मेलजोल की जगह अब वर्चुअल लाइक्स और कमेंट्स ने ले ली है। लोग अपनों के सुख दुख से बेखबर होकर आभासी दुनिया में खोए रहते हैं, जो समाज में अकेलेपन को बढ़ावा दे रहा है। इन सबसे हम निजात पा भी सकते हैं। इसके लिए हमको करना है कि मोबाइल को नशा बनने से रोकने के लिए हमें अपनी आदतों में कुछ सुधार करना होगा। जैसे कि स्क्रीन टाइम सीमित करें। जहां डिजिटल वेलबींग एप्स की मदद से अपने दैनिक मोबाइल उपयोग का समय तय कर सकते हैं। भोजन करते समय, परिवार के साथ बैठते समय और बेडरूम में सोने से एक घंटे पहले मोबाइल का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। और वर्चुअल गेम्स छोड़कर मैदानी खेल खेलें, किताबें पढ़ें या प्रकृति के करीब समय बिताएं। तो दोस्तों, इस तरह हम कह सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन स्वयं में न तो अच्छा है और न ही बुरा। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। मोबाइल को अपना गुलाम बनाकर रखना बुद्धिमानी है, लेकिन इसका गुलाम बन जाना एक विनाशकारी नशा है। समय रहते यदि हमने अपने स्क्रीन टाइम को नियंत्रित नहीं किया तो यह तकनीक वरदान हमारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा अभिशाप साबित होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी बात मोबाइल कहीं नशा ना बन जाए इस विषय पर। आगे हम बात करेंगे नए विचारों और नई

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में कयामत से कयामत तक का फिल्म का ये गाना। और हमारे युवा साथियों से हमारी ये अपील भी है कि वे कोई ऐसी काम बात न करें, ऐसा काम न करें जिससे अभिभावकों को झेपना पड़े। तो अपने पिता अभिभावकों की उम्मीदों पर खरा उतरे, ऐसा कुछ करना है। चलिए अब बात करते हैं नए विचारों और नई ऊर्जा का वाहक है युवा वर्ग। दोस्तों, इस पे बात करने से पहले लिखते हैं एक छोटा सा अंतराल, बने रहिएगा हमारे साथ।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: इस अंतराल के बाद एक बार फिर हम अपने सभी युवा साथियों का स्वागत करते हैं कार्यक्रम युववाणी में। और अब चलिए बात करते हैं नए विचारों और नई ऊर्जा का वाहक है युवा वर्ग, इस विषय पर। दोस्तों, युवा वर्ग किसी भी राष्ट्र की रीढ़ और समाज की सबसे अमूल्य धरोहर होता है। युवा शब्द अपने आप में एक असीम ऊर्जा, अटूट साहस और नए दृष्टिकोण का प्रतीक होता है। प्रसिद्ध विचारक स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि दुनिया का इतिहास उन मुट्ठी भर लोगों का इतिहास है जिन्हें अपने आप पर भरोसा था। आज का युवा वर्ग इसी अटूट विश्वास और नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। वे न केवल राष्ट्र के भविष्य के निर्माता हैं, बल्कि नए विचारों और नई ऊर्जा के सच्चे संवाहक भी हैं। दोस्तों, युवा मस्तिष्क पुरानी रूढ़ियों और रूढ़िवादी विचारधाराओं से बंधा नहीं होता। उनके पास हर समस्या को देखने का एक नया और आधुनिक नजरिया होता है। आज दुनिया जिस डिजिटल क्रांति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तकनीक विकास के दौर से गुजर रही है, उसकी कमान युवाओं के हाथ में ही है। स्टार्टअप संस्कृति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, युवा पारंपरिक नौकरियों के पीछे भागने के बजाय अपने नए विचारों से नए व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। वे समाज में लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण और मानसिक स्वास्थ्य जैसे गंभीर विषयों पर खुलकर बात कर रहे हैं और पुरानी सोच को बदल रहे हैं। युवाओं के पास वह ऊर्जा और गतिशीलता होती है जो किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकती है। जब यह ऊर्जा सही दिशा में आगे बढ़ती है तो समाज में बड़े बड़े सकारात्मक बदलाव आते हैं। इतिहास गवाह है कि दुनिया की

सभी बड़ी क्रांतियाँ और स्वतंत्रता आंदोलन युवाओं के दम पर ही सफल हुए हैं। आज भी चाहे राजनीति हो, खेल जगत हो, विज्ञान हो या कला, हर क्षेत्र में युवा अपनी ऊर्जा से सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। वे केवल बदलाव की मांग नहीं करते, बल्कि खुद बदलाव बनकर सामने आते हैं। नए विचारों और ऊर्जा से भरपूर होने के बावजूद आज के युवा वर्ग के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। बेरोजगारी, सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रभाव, डिप्रेशन और दिशाहीनता युवाओं को उनके मार्ग से भटका रही है। एक शक्तिशाली नदी की तरह युवाओं की इस ऊर्जा को सही बांध और दिशा की जरूरत होती है। यदि युवाओं को सही शिक्षा, अच्छे संस्कार और आगे बढ़ने के समान अवसर न मिले तो यह ऊर्जा विनाशकारी भी हो सकती है। इसलिए सरकार, समाज और परिवार की यह जिम्मेदारी है कि वे युवाओं के विचारों का सम्मान करें और उन्हें सही मार्गदर्शन दें। आज आवश्यकता इस बात की है कि युवाओं की शक्ति को पहचाना जाए, उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने के अवसर दिए जाएं और उनकी ऊर्जा का उपयोग राष्ट्र निर्माण में किया जाए। जब देश का युवा सशक्त और जागरूक होगा, तभी देश प्रगति के शिखर तक पहुंच पाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी बात। नए विचारों और नई ऊर्जा का वाहक है युवा वर्ग। अब कार्यक्रम में हम सुना रहे हैं एक और गाना।

दोस्तों, अरिजीत सिंह की आवाज़ में आप सुन रहे थे तड़प फिल्म का ये गीत। चलिए अब बात करते हैं एआई और डेटा साइंस में करियर के बारे में। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और डेटा साइंस वर्तमान समय के सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले तकनीकी क्षेत्र हैं, जिनमें करियर की असीम संभावनाएं हैं। ये दोनों क्षेत्र मिलकर कच्चे डेटा यानी रॉ डेटा को मूल्यवान जानकारी में बदलते हैं और मशीनों को इंसानों की तरह सोचने के काबिल बनाते हैं। हेल्थ केयर, फाइनेंस, ई कॉमर्स और ऑटोमोबाइल जैसे हर छोटे बड़े उद्योग में आज डेटा विशेष

ये दोनों क्षेत्र मिलकर कच्चे डेटा यानी रॉ डेटा का को मूल्यवान जानकारी में बदलते हैं और मशीनों को इंसानों की तरह सोचने के काबिल बनाते हैं। हेल्थ केयर, फाइनेंस, ई कॉमर्स और ऑटोमोबाइल जैसे हर छोटे बड़े उद्योग में आज डेटा विशेषज्ञों की भारी मांग है। भारत में इस क्षेत्र में शुरुआती अगर ये वेतन की बात करें तो 6 से 14 लाख सालाना तक हो सकता है, जो अनुभव के साथ तेजी से बढ़ता है। यदि आपको कोडिंग, गणित और समस्याओं को सुलझाने में रुचि है तो 12वीं के बाद बीटेक इन एआई एंड डेटा साइंस या संबंधित ऑनलाइन सर्टिफिकेशन करके आप इस शानदार करियर की शुरुआत कर सकते हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसके लिए कुछ आवश्यक तकनीक कौशल की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि प्रोग्रामिंग भाषाएं पाइथन और आर पर मजबूत पकड़ होना अनिवार्य है, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा और स्टैटिस्टिक्स की अच्छी समझ भी होनी चाहिए। तो ये थी हमारी थोड़ी सी बात एआई और डेटा साइंस में करियर के बारे में। और अब कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुना रहे हैं एक एल्बम सॉन्ग।

तस्वीर उनकी मेरे दिल में। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे इस एल्बम से साधना सरगम और उत्कर्ष शर्मा की आवाज़ों में ये रचना। और अब इसी के साथ आज का युवाणी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। दीजिए इजाज़त अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर को। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

युवा साथी अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हम आपको सुना रहे हैं एक भोजपुरी लोकगीत और इसके अंतर्गत हम आपको सुना रहे हैं भरत सिंह भारती और साथियों के स्वर में ये बरसाती लोकगीत।

0: भरत सिंह भारती और साथियों के सुर में आप सुन रहे थे ये बरसाती लोकगीत। ये आकाशवाणी सासाराम है। अब हम कुछ ही पलों में रिले करेंगे पटना केंद्र से भोजपुरी समाचार बुलेटिन, प्रतीक्षा कीजिए।
1: प्रणाम, ये आकाशवाणी पटना है। अब रहुआ आशुतोष से सुनी भोजपुरी समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक कैले। बैठक में बिहार समेत राजस्थान, जम्मू काश्मीर, पंजाब, पश्चिम बंगाल सहित सभी सीमावर्ती राज्यन के उच्च अधिकारी और SP शामिल भैलन। बैठक में अवैध घुसपैठ, सीमा से जुड़ल इलाकन में आबादी में बदलाव, नशीला पदार्थ के तस्करी और सीमा सुरक्षा समेत विभिन्न मुद्दन पर चर्चा भइल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी प्रदेश में 1 करोड़ नया राशन कार्ड बनावे के निर्देश देले बने। मुख्यमंत्री विभागीय योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लेके आज पटना में केंद्रीय उपभोक्ता मामला और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ बैठक समीक्षा कैले। बैठक में मुख्यमंत्री विभागीय योजना के लाभार्थियों के डेटाबेस तैयार करे और राशन वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करे के कहले। केंद्रीय मंत्री बिहार के ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन के सराहना भी कैले। पटना से गया जी आरा, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय खातिर रैपिड रेल सेवा शुरू कैल जाय। एकरा खातिर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS बनी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अध्यक्षता में कैबिनेट के भइल बैठक में ई प्रस्ताव के स्वीकार कैल गेल। इस संबंध में अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करावे के जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के दहल गेल बा। यह पर 31,59,00,000 रुपया खर्चा हुई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी बतौले कि बिहार के प्रमुख शहरन के बीच परिवहन व्यवस्था के तेज और बेहतर करे खातिर ये फैसला लेहल गेल बा। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 1 साल और 2 साल स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम खातिर 1 समान फीस लेहल जाय। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन इस संबंध में यूनिफॉर्म ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन 2026 के मंजूरी दे देले बाड़े। एक साथ विश्वविद्यालयन में साल 2018 से लागू च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के पुरनका नियम खत्म हो गई बा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव खातिर BJP के प्रत्याशी अभिषेक कुमार बंटी और राजद के प्रत्याशी रेखा गुप्ता अपन अपन नामांकन पर्चा दाखिल कर दिले बा। लोग अभिषेक नामांकन के पहले अपना माई के गोर छू के प्रणाम कैले। ए मौका पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत NDA के कई गो नेता लोग मौजूद रहे। जनसुराज के प्रशांत किशोर 11 जुलाई के अपन पर्चा भरी हैं। नामांकन 13 जुलाई तक हुई, 30 जुलाई के चुनाव हुई और 3 अगस्त के नतीजा आई। कांग्रेस RJD के रेखा गुप्ता के समर्थन कैले बिया। बता दी कि ई सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के छोड़ला के बाद खाली भइल रहे। प्रदेश के सरकारी स्कूल के मास्टर के तबादला खातिर पोर्टल आज से खुल गइल बा। ए माध्यम से मास्टर अपना मनपसंद विद्यालय में तबादला खातिर ऑनलाइन आवेदन कर सकेले। कमाई से अधिका संपत्ति के मामले में आर्थिक अपराध इकाई के टीम सिवान में तैनात उत्पाद निरीक्षक अंकेश कुमार गोंड के पटना, सिवान और मुंगेर के 6 गो ठिकाना पर छापेमारी कैले बा। अंकेश कुमार पर कमाई से 200% अधिका लगभग 2.38 करोड़ रुपया से ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करे के आरोप बा। बिहार में मानसून सक्रिय हो गई बा। बगहा में भारी बरखा हो रहा बा। मौसम विभाग के राज्य के 30 गो जिला में तेज बरखा बरसे के अलर्ट जारी कैले बा। पिछलका 24 घंटा में कटिहार के अहमदाबाद में सबसे अधिका 108.2 मिलीमीटर बरखा बरसल बा। विभाग के मुताबिक पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा में भारी बरखा के संभावना बा। अगला 7 दिन तक बिहार में मानसून सक्रिय रही। गोपालगंज में बिजली गिरला से 1 गो किसान मर गई बाड़े और 4 लोग झुलस गई बा, जेकर गोपालगंज के सदर अस्पताल में इलाज चलता। गया जी जिला के बोधगया थाना क्षेत्र के सिवा गांव के लगे एगो कार और ट्रक के बीच टक्कर के बाद कार में आग लग गई। हादसा में कार में बैठल 2 गो लोग जर के मर गए। ड्राइवर के स्थिति खराब बा। उहे कैमूर जिला के कुदरा थाना के परमालपुर के लगे ट्रक बेकाबू होके एगो पुलिया से टकरा गए, जेमे ड्राइवर और खलासी वही जी मर गए। पटना के अमहरा थाना के बभन लई गांव से पुलिस शराब पी के हंगामा करे वालन 8 आदमी के गिरफ्तार कैले बिया। मधुबनी जिला के फुलपरास थाना से पुलिस एगो तस्कर के 13 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार कैले बिया। एकरे साथ है आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एही जा समाप्त भइल।
0: FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। शाम के 6:10 हो रहे हैं। हमारे केंद्र से अब आरंभ होता है किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी। प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: आज किसान वाणी कार्यक्रम के साथ है हम दिनू भाई।
1: हम बानी राजू भाई।
0: किसान श्रोता भाई बहन के राम राम।
1: राम राम
0: राजू भाई
1: जी।
0: मौसम जैसे बदलल है तैसे किसान के चेहरा पर रौनक आ गई है। आज जगह जगह रोपनी शुरू होता एकर भी खबर मिले लागल।
1: देखी हमनी के गांव घर में सभी कोई प्रेम से रहे। हाँ। खूब निमन से किसान भाई खेती बाड़ी करस ये हमनी के चाहत नहीं जा।
0: जी जरूर।
1: देखी दीनू भाई
0: जी, जी।
1: हमनी के गांव घर में सबसे बढ़िया चीज बा कि जौन हमनी के बोली बोली ना जानू ई हमनी के तौल के बोले के चाहिए।
0: एकदम एकदम।
1: जैसे कि कहल भी गई बा कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल हो।
0: भाई भोजपुरी में एगो कहावत कहल जात रहा
1: जी
0: कि उहे मुँह पान खाला उहे मुँह पर नहीं। काहे कि मुँह से अगर सहिया निमन बोलब
1: जी
0: तो ओकर परिणाम निमन रही आ मुँह से खराब बोली अगर बोलब तो ओकर परिणाम तो खराब होइबे करी।
1: या दीनू भाई हमनी के समाज में देखल जाओ या घर में देखल जाओ यदि मधुर शब्द हमनी के बोलत नहीं जा तो सब कोई ओकरा से खुश रही
0: जी।
1: आ उहे कठोर यदि वचन हमनी के बोलत नहीं जा तो उ आदमी नाराज हो जिहन इतना तक कि संबंध भी उमे माने ना रख पावे
0: बिगड़ जाला
1: संबंध भी मतलब ओजा झुक जाला। तो हमनी के कोशिश करे के चाहिए कि जब भी बोली जा तो मधुर शब्द बोली जा
0: सोच के बोली।
1: हाँ सोच के बोली जा मतलब अपना में पहले तौल लिहल जाओ कि ई बात बोले लायक बा कि ना बा तबे हमनी के बोलल जाओ। आ देखी एगो इहो बात बा कि शब्द के हार जीत भी एकरे के कहल जाला जिसे कि कोई के मधुर शब्द बोल करके कोई के मन के खुश कर दिहल ही शब्द के जीत कहल जाला आ कोई के कठोर शब्द बोल के ओकरा दिल के दुखा देना ही शब्द के हार कहल जाला।
0: एकदम।
1: तो कोशिश करे के चाहिए कि हमनी के शब्द जौन होखे हरमेशी जीतल होखे
0: आ मुँह से ऐसा भाषा बोली जो उनकी सामने वाला के पसंद हो
1: पसंद हो।
0: आ सबसे तो बड़ बात ई बा रजू भाई
1: जी
0: कि हमनी के अपने आप से विचार करे के चाहिए कि हमरा के कोई कैसन भाषा बोली तो हमरा निमन लगी
1: जी।
0: तो जैसन हमरा निमन लगी वही तरह हमहू हमनियों के चाहिए कि हमहू वैसने भाषा बोली कि अगला के निमन लगे।

0: शब्द ऐसन चीज है कि एकरे से हमने के घर में कितनो कोई से बिगाड़ होके या गांव में कोई के मनमुटाव होके यदि हमने के मीठा वचन बोलतन या खाली तो वो आदमी खुश हो जहन
1: संबंध सुधर जाए।
0: हाँ संबंध यही तरह से जब हमने के मीठा वचन बोले की आदत हो जाए तो घर में बहुत बढ़िया परिवार हो जाए, गांव भी बहुत बढ़िया समाज हो जाए,
1: गैर भी अपन हो जाए।
0: तो हमने के कोशिश करे के चाहिए कि हमने के मधुर वचन ही बोलल जाओ आ कठोर शब्द के त्याग कर जाओ।
1: एकदम बहुत बढ़िया बात कहनी। आ अब तनी कार्यक्रम के रूपरेखा बताएं कि आज कार्यक्रम में का का बा।
0: देखी दीनू भाई हमने के सबसे पहले न अपना किसान भाई खाती कृषि पर आधारित खबर सुनल जी आज देश विदेश के अंतर्गत।
1: अच्छा
0: फिर आज की बातों में हमने के अभी धान के खेती हो रहल बा तो एकरा खाती धान के खेती कैसे कइल जाओ एकरा खाती हमने के एगो वार्ता सुनल जाई।
1: अच्छा।
0: जेमे की वार्ताकार बानी डॉक्टर के प्रसाद।
1: बहुत बढ़िया।
0: फिर हमने के नया दौर की नई बातों के अंतर्गत सुनल जाई कि धान के रोपनी के नया नया तकनीक का बा।
1: जी जी
0: कारण की देखी हमने के किसान भाई भी चाहेलन कि अधिक उत्पादन होके
1: एकदम
0: आ देखी पहले हमने के याद बा कि हमने के गांव में जौन धान रोपात रहे 5 गो 6 गो 7 गो तक आदमी बिया
1: एक संग
0: रोपत रहन आ ओकरो में उतने मुठार करत रहे
1: आ जौन की आज एगो रोपाता उतने होता
0: तो इस सब हमने के नया नया तरीका खोजनी जा जमना से खेती के उत्पादन बढ़ल आ लागत भी कम भइल तो यही तरह से अब धान के रोपनी के नया तरीका का बा एकरा पर हमने के चर्चा कइली।
1: अच्छा
0: फिर एकरा बाद आज के नसीहत में हमने के एगो बहुत विशेष बात पर ध्यान दिल जाए कि जौन हमने के बैंक उंक से लोन लही न जा एकरा के समय पर हमने के भुगतान ओकर कर देवे के चाहिए कारण कि एगो कर्ज कहीं या लोन कहीं एगो ऐसन चीज है जौन ना देव तो वो धीरे धीरे बहुत बोझ बन जाला आ फिर दिहल मुश्किल हो जाला आ फिर एकरा बाद हमने के चलल जाए मौसम पर आधारित खबर अपना किसान भाई आ श्रोता भाई लोग के बतावल जाए तो आई अब कृषि पर आधारित खबर सुनल जा देश विदेश के अंतर्गत।
1: देखिए तो देखिए आज देश विदेश में ई बा कि श्रोता भाई बहन गन्ना उपजाई नीमन फायदा हुई। श्रोता सब है गन्ना एगो मुख्य वाणिज्यिक फसल यानी कि व्यावसायिक फसल है जौन कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभावेला। ये किसान लोग के आय के सशक्त स्रोत भी है साथे साथे देश के चीनी उद्योग के आधारशिला भी मानल जाला। गन्ना मुख्य रूप से चीनी गुड़ इथेनॉल आ अल्कोहल उत्पादन खातिर उगावल जाला। एकरा अलावा जैव ईंधन उत्पादन में भी एकर योगदान रहेला। यह वजह बा कि गन्ना फसल के साथे साथे बहु उपयोगी संसाधन भी कहल जाला। गन्ना के किस्म के अनुसार गन्ना के बुआई अलग अलग समय पर कइल जाला। एक वर्षीय किस्म खातिर गन्ना के बुआई के समय फरवरी मार्च में होला। उहे अर्धवर्षीय गन्ना के बुआई जुलाई अगस्त के महीना में कइल जाला। गन्ना के बुआई खातिर अलग अलग विधि बा जौना में समतल रोपण करो रोपण ट्रेंच विधि आ संशोधित ट्रेंच प्रणाली भी शामिल बा। गन्ना के खेती में सिंचाई के भूमिका सबसे अधिक होला। नमी के पूर्ति खातिर नियमित सिंचाई के जरूरत होला। गन्ना बुआई से लेके पाके तक 1500 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर तक के पानी के जरूरत पड़ेला। सिंचाई के आपूर्ति माटी के प्रकार के जलवायु परिस्थिति आ पानी के उपलब्धता पर निर्भर करेला। दोमट माटी में 10 से 11 दिन पर सिंचाई कल जला। उहे भारी या चिकन माटी में 16 से 20 दिन पर सिंचाई कल जला। वर्षा अगर होखत होके तो सिंचाई के जरूरत ना पड़ेला। यह तरह से श्रोता भाई बहन अगर गन्ना उपजा के अपना खेती में बढ़ा रहल बनी तो हम समझतनी कि बढ़िया उत्पादन भी होई आ बढ़िया फायदा भी होई।
0: देखिए एकरा के नगदी फसल भी कहल जाला
1: एकदम।
0: एक तरह से किसान भाई यदि गन्ना के खेती करत रहन तो समझे कि बहुत ही नीमन उनका लाभ होई। तो देखिए अब भाई हमने के गांव घर में सब किसान भाई लागल बड़ा न कि हम धान कैसे रोप दी
1: जल्दी धान रोपा
0: जाओ कहल भी जाला कि आगे

0: खेती आगे आगे
1: पीछे भागे, भागे जोगे जो तो सुन लिया जाओ हमनी के ये वार्ता धान की खेती कैसे करें।
0: हाँ, एकरा के बता रहल बनी डॉक्टर के प्रसाद, ताई यहाँ से हमनी के सुनल जा कि धान के खेती कैसे कैल जा।
1: सुनल जाओ।
2: जल संसाधनों की प्रचुरता, भौगोलिक स्थिति, मृदा संरचना एवं अनुकूल जलवायु के दृष्टिकोण से बिहार धान के उत्पादन के लिए अनूठा है। उन्नत बीज, शस्य की नवीन तकनीकी, संतुलित खाद, समुचित जल प्रबंध एवं पौधा संरक्षण उपायों को वैज्ञानिक ढंग से अपनाकर धान उत्पादन एवं उत्पादकता में एक नई क्रांति लाई जा सकती है। हमारे प्रदेश में धान की विभिन्न किस्में उगाई जाती हैं। किस्मों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए भूमि की स्थिति एवं जल की उपलब्धता के आधार पर उपयुक्त प्रभेदों का चुनाव करना चाहिए। ऊंची जमीन एवं बाढ़ के बाद के अवस्था में तुरंत ताप प्रभेद का चुनाव करना चाहिए। इसकी तैयार होने की अवधि 70 से 80 दिनों की है। दाना लंबा मोटा होता है तथा इसकी उपज क्षमता 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ऊंची एवं मध्य ऊंची जमीन हेतु प्रभात, पूसा 834, पंत धान 14 एवं सीता प्रभेद प्रमुख हैं। ये करीब 100 से 110 दिनों में परिपक्व हो जाते हैं। दाना लंबा एवं पतला होता है तथा इनकी उपज क्षमता 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। मध्यम सिंचित एवं छिछले खेतों के लिए कनक राजेंद्र महसूरी एक उपयुक्त प्रभेद हैं। इनके तैयार होने की अवधि 135 से 140 दिनों की होती है। कनक प्रभेद का दाना लंबा एवं मोटा तथा राजेंद्र महसूरी एक का मध्यम पतला होता है। इनकी उपज क्षमता 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। असिंचित नीची जमीन हेतु सत्यम एवं शकुंतला प्रभेद उत्तम पाया गया है। इनकी परिपक्व होने की अवधि 140 से 145 दिनों की है। सत्यम प्रभेद का दाना लंबा एवं मोटा तथा शकुंतला का दाना मध्यम पतला होता है। इनकी उपज क्षमता 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। मध्यम सिंचित जमीन के लिए सुगंधित एवं महीन चावल वाली किस्मों में पूसा बासमती एक, राजेंद्र बासमती एक, राजेंद्र कस्तूरी, सुगंध 2 व 3 एवं राजेंद्र श्वेता प्रमुख हैं। ये 125 से 130 दिनों में परिपक्व हो जाते हैं। इनके दाने लंबे व पतले होते हैं। सिंचित व असिंचित अवस्था हेतु नीची जमीन के लिए सुगंधा एवं कामनी प्रभेद उपयुक्त होते हैं। इनके फसल तैयार होने का समय नवंबर के अंतिम सप्ताह होता है। इन प्रभेदों के दाने मध्यम पतले तथा उपज क्षमता 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। संकर धान की किस्मों में ऊंची एवं मध्यम सिंचित जमीन के लिए पंत संकर धान एक उपयुक्त पाया गया है। इसकी परिपक्वता की अवधि 110 से 115 दिनों की होती है। दाना लंबा पतला तथा उपज क्षमता 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। मध्यम सिंचित खेतों के लिए PHB 71, KRH 2 एवं पूसा RH 10 प्रमुख प्रभेद हैं। ये 120 से 130 दिनों में परिपक्व हो जाते हैं तथा दाने लंबे व पतले होते हैं। इनकी उपज क्षमता 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। धान के उन्नत पैकेज प्रणाली में विकसित किए गए नए शस्य तकनीकों को उपयुक्त स्थान और समय पर बिहार के खेतों में लागू करने से धान की उपज में न सिर्फ बढ़ोतरी की सुनिश्चितता है बल्कि महंगे उपादानों का मितव्ययी व्यवहार भी है। ऊंचे जमीन के लिए 75 से 120 दिनों का, मध्यम जमीन हेतु 125 से 140 दिनों का तथा नीची जमीन के लिए 140 से 160 दिनों का प्रभेद का चयन करना चाहिए। सामान्यतः रोपा विधि में तीनों प्रकार के भूमि के लिए 40 से 50 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। ऊंची जमीन के लिए 22 जून से 5 जुलाई आद्रा नक्षत्र में, मध्यम जमीन के लिए 8 से 21 जून मृगशिरा नक्षत्र में तथा नीची जमीन हेतु 25 मई से 7 जून रोहिणी नक्षत्र में बीजों का बुनाई करना उत्तम होता है। रोपनी विधि से धान की खेती करने हेतु बिजड़ा तैयार करना आवश्यक है। रोपनी के बाद धान के पौधों में जड़ों का विकास एवं वानस्पतिक वृद्धि यानी लंबाई, पत्तियों एवं कल्लों आदि का तेजी से वृद्धि होना अधिक उपज प्राप्त करने के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस प्रक्रिया की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि धान की रोपनी स्वस्थ एवं तंदुरुस्त बिजड़ों से किया जाए। एक आदर्श धान का बिजड़ा छोटा, मोटा, भारी एवं कीट व्याधि से मुक्त होना चाहिए। ऊंचे भूमि के लिए 20 से 25, मध्यम के लिए 25 से 30 एवं नीची जमीन के लिए 30 से 35 दिनों का बिजड़े उत्तम होते हैं। तीनों प्रकार के भूमि में 2 से 3 पौध प्रति हिल उपयुक्त होते हैं, लेकिन पौधे की संख्या प्रति हिल 1 से 2 रखने पर अनुशंसित बीज दर में 50% तक की कमी की जा सकती है। ऊंचे, मध्यम एवं नीची खेतों में पंक्ति एवं पौधों की दूरी क्रमशः 15 गुने 15, 20 गुने 15 एवं 20 गुने 15 सेमी

होना चाहिए। तीनों तरह के खेतों में रोपनी की गहराई 1 से 3 सेंटीमीटर उत्तम होता है। ऊंचे जमीन वाले खेतों के लिए 80 किलोग्राम नेत्रजन यानी 174 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर, जिसमें कि आधा आधारीय तथा शेष आधी बची हुई मात्रा को प्रथम उपरिवेशन के समय प्रयोग करना चाहिए। 40 किलोग्राम स्फुर यानी 250 किलोग्राम सिंगल सुपरफास्फेट, 20 किलोग्राम पोटास यानी 32 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, 20 किलोग्राम सल्फर एवं 25 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी जांच के उपरांत आधारीय उर्वरक के रूप में प्रयोग करना चाहिए। मध्यम एवं नीची भूमि के लिए 80 किलोग्राम नेत्रजन यानी 174 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर, जिसमें आधी आधारीय उर्वरक के रूप में तथा शेष आधी दो बराबर बराबर भागों में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय उपरिवेशन के रूप में व्यवहार करना चाहिए। 40 किलोग्राम स्फुर यानी 250 किलोग्राम सिंगल सुपरफास्फेट, 20 किलोग्राम पोटास यानी 32 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास तथा मिट्टी जांच के आधार पर 20 किलोग्राम सल्फर एवं 25 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना श्रेयस्कर होता है। ऊंची मध्यम एवं नीची जमीन में 3 से 7 सेंटीमीटर जल स्तर रखना उत्तम पाया गया है। संकर धान की खेती उन्नतशील धान के प्रभेदों की खेती की तरह ही है। संकर धान की खेती में मात्र बीज स्थली प्रबंधन खास तरह से की जाती है। बीज स्थली में बीज की बुआई 15 से 20 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से करते हैं, जिससे 20 से 25 दिनों में 3 से 4 कल्ले वाला स्वस्थ एवं तंदुरुस्त बिचड़ा तैयार हो जाता है। इसमें एक स्थान पर 1 से 2 पौधे ही लगाते हैं। संकर धान की खेती में 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आवश्यकता पड़ती है। इस खेती में रोपनी की दूरी 20x15 या 15x15 सेंटीमीटर रखा जाता है। उर्वरक में नेत्रजन 120 से 150 किलोग्राम यानी 260 से 325 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर, जिसमें 25% आधारीय तथा शेष 75% का तीन बराबर बराबर भागों में रोपनी के 30, 60 एवं 90 दिनों के अंतराल पर उपरिवेशन किया जाता है। 60 किलोग्राम स्फुर यानी 375 किलोग्राम सिंगल सुपरफास्फेट प्रति हेक्टेयर कदवा के समय एवं पोटास 60 किलोग्राम यानी 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर, जिसमें 75% आधारीय तथा शेष 25% पुष्पगुच्छ बनने के प्रारंभिक अवस्था में उपरिवेशन किया जाता है। इसके अतिरिक्त 20 किलोग्राम सल्फर तथा 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर के दर से मिट्टी जाँच के अनुसार आधारीय व्यवहार करना चाहिए। सिंचाई व कीट व्याधि का नियंत्रण आवश्यकता अनुसार करना लाभप्रद होता है। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन यानी श्री विधि मेडागास्कर देश का विकसित हुआ तथा अब इस विधि से दुनिया के कई देशों में खेती की जा रही है। इस विधि से धान की खेती करने से 3 से 4 गुना ज़्यादा उपज मिलता है, साथ ही पानी का खपत आधा से भी कम होता है। इस विधि के अंतर्गत बीज स्थली प्रबंधन में मिट्टी व गोबर की खाद को 2:1 में मिलाकर ऊंची क्यारी बनाएं। इस क्यारी में 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के दर से फैला दें। बुआई के बाद 2 से 3 दिनों के लिए इसे पुआल से ढक दें तथा हजारा से नमी बनाए रखने के लिए हल्की सिंचाई करें। 10 दिनों में औसतन 15 सेंटीमीटर लंबा 2-3 पत्तियों एवं 6 सेंटीमीटर लंबे जड़ वाला पौध आसानी से तैयार हो जाता है। इस श्री विधि से रोपनी के समय बीज स्थली से पौध को इस प्रकार निकालें जिससे कि मिट्टी युक्त जड़ के साथ बीज भी लगा हुआ आसानी से निकल आए। पौध को बीज स्थली से निकालने के आधा घंटा के अंदर रोपनी कर दें। रोपनी में पंक्ति एवं पौध की दूरी 25x25 सेंटीमीटर यानी 16 हील प्रति वर्ग मीटर रखें। एक स्थान पर मात्र एक पौध ही लगाएं। पौध को तैयार खेत में अंगूठे से गाड़ें नहीं, बल्कि चुटकी से जड़ को मिट्टी पर हल्का सटा कर रखें। इस विधि में हाथ से हो या कोनोबीडर द्वारा 3 से 4 बार निकौनी करें, जिससे मिट्टी में वायु संचार बना रहे तथा निकौनी किए हुए खरपतवार को खेतों में ही पंक्तियों के बीच में फैला दें। श्री विधि में वनस्पतिक वृद्धि के अवस्था में खेत में जल जमाव नहीं रहने दें। पुष्पगुच्छ निकलने के पहले तक खेत में नमी की संतृप्तावस्था एवं खेत को सुखाना यानी ओदा सूखा की स्थिति का अंतराल बनाए रखें। पुष्पगुच्छ अवस्था के बाद खेत में 3 सप्ताह तक 1 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखना चाहिए। खेत में जैविक खाद जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एवं हरी खाद आदि का भरपूर व्यवहार करना चाहिए। श्री विधि में रासायनिक उर्वरकों के कुल अनुशंसित मात्रा का आधा से भी कम मात्रा प्रयोग करना चाहिए।
जीरो टिल ड्रिल मशीन से धान की बुआई दो परिस्थितियों में की जाती है। पहली परिस्थिति में गेहूं कटनी के बाद खरपतवार से मुक्त खेतों में जीरो टिल ड्रिल के

0: बीज बॉक्स में बीज एवं खाद बॉक्स में दानेदार डीएपी रखकर धान की बुआई करते हैं। यदि खेत में 25 से 30 प्रतिशत तक नमी रहती है तो इस मशीन से आसानी से बुआई की जा सकती है। दूसरी परिस्थिति में गेहूं कटनी के बाद खरपतवार युक्त खेत में खरपतवारनाशी दवा ग्लाइफोसेट की 2.5 से 3 लीटर दवा 250 से 300 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर जमीन में छिड़काव करके 2 से 3 दिनों के बाद मशीन से धान की बुआई की जाती है।
1: तो देखिए रजू भाई, कितना बढ़िया हमनी के जानकारी मिलल कि धान के खेती कैसे कर जाए।
2: आ देखिए इतना नीमन जानकारी खातिर डॉक्टर के प्रसाद के बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद दे देवे के आ ऑप्शन दे सुन लेवे के।
2: जी
3: ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतरवर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
4: सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
3: कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक है। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं।
5: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
6: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
7: ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं। वहीं रेट पर कंपनी खरीद लेते हैं, मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
8: ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
3: सच तो ये

है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।

0: श्रोता भाई बहन, अभी संदेश सुननी जा। आ अब पुनः चले गए खेत में
1: जी।
0: आज जैसा कि हम मनिका बतौले रहिए जा कि धान के खेती में रोपनी कैसे कैसे कर जाओ, आयकर कैसन कैसन नया तकनीक आ गई बा जौन कि कम समय में रोपा जाता, जौना से बचत भी हुई आ उत्पादन भी बढ़िया हुई,
1: लागत कम होता।
0: तो कौन कौन तकनीक बनाया तनी बताई। तो
1: देखिए दीनू भाई, धान के रोपाई खाती सबसे लोकप्रिय आ आधुनिक तरीका बा कि सीधा बुआई आदमी कर सकेलन आ मशीन से भी रोपाई कर सकेलन
0: जी।
1: एकरा खाती बुआई के तरीका बा कि खेत तैयार जौन होके ओकरा में जीरो टिल सीड से या ड्रम सीडर मशीन के मदद से सीधा बुआई आदमी कर सकेलन। एकर तरीका बा कि ड्रम मशीन आ एकरा से लाभ ही बा कि पानी के भारी बचत होला। एकरा से लगभग 20-30% तक पानी के खर्चा कम लागी या लेबर खर्च भी आधा लागेला।
0: कितना बढ़िया बात बा। आ देखी राजू भाई, बहुत किसान लोग कुछ कर्ज बैंक से लेके फसल बान जौन की समय पर भुगतान ना कैला के ही नतीजा बा।
1: तो एकरा खातिर देखी लोन के भुगतान हमनी के समय पर करे के चाहिए। एकरा से का होला कि वित्तीय जौन हमनी के लेन देन बा ओकरा में विश्वास बना रहेला। आ एकरा साथे साथे जब समय पर लोन ना देब तो उरा फाइन देबे के पड़ला,
0: बोझ रवे पर पड़ेला।
1: आ एकरा से राउर क्रेडिट स्कोर जौन बा तौन इहो खराब हो जाला। तो समय पर चुकावे से फायदा ही बा कि ब्याज में बचत हुई, क्रेडिट स्कोर में सुधार हुई आ अतिरिक्त सुविधा भी रउरा जब समय से लोन देब तो बैंक द्वारा अतिरिक्त सुविधा
0: भी मिली। सबसे तो बड़ फायदा हुई कि रउआ टेंशन से बचा रहा
1: जी। मानसिक शांति भी रही।
0: कुछ अब एक घड़ी जो सामयिक सलाह होके किसान लोग खातिर तो कुछ बताई।
1: देखी जे भी किसान भाई अभी धान के खेती हमने के चल रहा बा
0: जी, तो
1: कुछ दिन से जौन वर्षा हो रहा बा एकर किसान भाई लोग के हमने के लाभ उठावे के चाहिए। जिससे कि धान के जिससे कि सब और किस्म बा जिसे प्रभात बा, शुष्क सम्राट बा, सहभागी के बुआई 10-12 जुलाई तक कर देवे के चाहिए। बुआई से पहले बीज के कारबेंडा जील में 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम के दर से बीज के उपचारित कर लेवे के चाहिए। आ 10-15 दिन के नर्सरी में समय पर एकर
0: निराई गुड़ाई भी करे के चाहिए,
1: कर देवे के चाहिए। एकरा साथे साथे अवधि वाला जौन मध्यम अवधि वाला किस्म बा ओकरा में राजिंदर नीलम, राजिंदर कस्तूरी आ राजिंदर श्वेता के रोपाई कर सकेना। धान के किस्म सब और मोती धान आ सब और सोना आदि के सीधा बुआई भी रूरा कर सकेना।
0: आ जे पशुपालन कैले होके ओकरा खातिर का सलाह बा।
1: एकरा खातिर बा कि जे भी किसान भाई गाय रखले बनी महीना के अंत तक भैंस या गाय जौन बिया एकरा के पशु पर विशेष ध्यान रखी। एकरा गला घोटू आ लंगड़ी रोग हो सकेला। एकरा के बचाव करे खातिर टीका रउरा लगा सकीना।
0: जौन की रउआ नजदीक के पशु स्वास्थ्य केंद्र जौन बा ओकरा में निःशुल्क लग रहा बा, रउआ एकरा खातिर फायदा उठा सकीला। सामान्य सलाह अगर होके तो कुछ बताई।
1: देखी आगामी दिन जौन बा आवे वाला दिन में वर्षा के संभावना बा, एकरा पर खड़ा फसल के सिंचाई जौन बा ई रोक देवे के चाहिए। आ खाद आ कीटनाशक के छिड़काव तब करे के चाहिए जबकि आसमान साफ रहे।
0: आज ए घड़ी मक्का अरहर लगावल चाहता, वो कैसे लगावे?
1: देखी अभी खरीफ मक्का के बुआई तब करी जब आसमान साफ रहे। एकरा साथे साथे खेत के जोताई में 10-15 टन गोबर के सड़ल खाद प्रति हेक्टेयर के दर से खेत में प्रयोग करे के चाहिए। बुआई के समय मक्का के प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर आ 50 किलोग्राम पोटास के प्रयोग करे के चाहिए।
0: अच्छा।
1: अनुसंचित मक्का के जौन किस्म बा जिसे सुहान बा, देवकी बा, शक्तिमान एक बा, शक्तिमान दू बा आ राजिंदर शंकर मक्का 3 के प्रयोग कर सकेना हमने
0: के माने बुआई करके बढ़िया उत्पादन हमने के ले सकेला
1: जी।
0: अब चलो चले के बड़ी मौसम के हाल बताई।
1: देखी मौसम पर आधारित जौन बा मौसम भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी कल गई बा कि मतलब अभी

0: 12-13 जुलाई तक जिला में 1 से 2 स्थान पर गरज के साथ चमक के साथ वर्षा हो सकेला, आंधी चल सकेला, एकरा में हल्का आ मध्यम वर्षा भी हो सकेला। अधिकतम तापमान 32 डिग्री से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रही आ न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बा।
1: अच्छा।
0: सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% आ दोपहरिया में 50 से 55% रहे के संभावना है। ऐसा अनुमान बा कि ये अवधि में 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दक्षिणहिया आ पूर्वहिया हवा चल सकेला।
1: तो देखिए अब घड़ी भी कह रहा बा कि कार्यक्रम के समय उड़ा रहा बा,
0: तो चलत चलत
1: श्रोता सब लोग से विदाई लेवे के।
0: जी जी। देखिए ये कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही संतोष कुमार,
1: तो चलत चलत विदा लेवे के।
0: जी।
1: तो सभी श्रोता भाई बहन दिनों के आज्ञा दही, चले चले गए बेरी, सब श्रोता भाई बहन के राम राम और रजू भाई नमस्कार।
0: नमस्कार दिनू भाई, सब श्रोता भाई बहन लोगों के भी रजू भाई की तरफ से नमस्कार।

किसान भाई अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे किसान वाणी। प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 MHz पर। हमारे केंद्र से अब लीजिए सुनिए भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत।

गंगा किनारे मोरा गांव। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का ये विवाह गीत। आवाजें थी चंद्रानी मुखर्जी और सहेलियों की। गीत को लिखे था लक्ष्मण शाहपादी ने और संगीत दिया था चित्रगुप्त ने। आकाशवाणी सासाराम से आप सुन रहे हैं भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत। अब लीजिए सुनिए नदी आग के पार फिल्म का एक गीत जसपाल सिंह की आवाज में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

0: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग देही ओके बुलंदियन के पाख।
1: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
0: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
1: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता असुलभ।
0: त बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700001-4242 पर।
1: जी हाँ, नंबर बा 8700001-4242।

0: 7000 1-4242 पर।
1: जी हाँ, नंबर बा 8700001-4242।

आशा भोसले की आवाज़ में आप सुन रहे थे धरती मैया फिल्म का ये गीत। गीतकार थे लक्ष्मण शाहबादी और संगीतकार चित्रगुप्त। और अब कार्यक्रम के अंत में हम सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बलम परदेसिया फिल्म का ये गीत।

0: मोहम्मद रफ़ी के गाए बलम परदेसिया फिल्म के इस गीत के साथ ही सांझ गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब हमारे केंद्र से प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान।
1: आयुष्मान ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुआर सासाराम के सौजन्य से।

0: पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में आप सबों का एक बार फिर से राजेश, जी हाँ मेरा नाम राजेश है, स्वागत करता है। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, आपके घर आंगन में लेकर आते हैं कि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहें। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा करते हैं आपके इस कार्यक्रम में। बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, कोई भी हो, सारे लोगों की बात होती है, हेल्दी रहने की बात होती है। विशेषज्ञ डॉक्टर आते हैं, जानकारियां दिलवाते हैं। जी हाँ, ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के मातहत चलने वाला मेडिकल कॉलेज, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। बहुत ही उम्दा अस्पताल, 1200 बेड का ये अस्पताल है और NMCH अपने आप में पूरे इलाके के हेल्थ सेक्टर को संभाले है। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड पर भी यहां इलाज किया जाता है। ऐसे इस अस्पताल की एक विशेषता बताएं कि यहां से पैसे के लिए कोई वापस नहीं जाता। नोट करें नंबर कि अगर आपके पास कोई समस्या है घर में, बाहर, उसके बाहर, उसके बाहर, यानी जहां भी समस्या है, इस फोन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं और सही लगे तो जाकर अपना इलाज भी करवा सकते हैं। नंबर नोट करें, नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, नंबर बता रहे हैं और संकोच नहीं करना है कि हम फोन करें कि नहीं करें। नंबर है 6206803040, 6206803040, ये नंबर है। आप दिल खोलकर, हाँ, कहीं से संकोच नहीं कीजिएगा कि हाँ क्या इस समय फोन करें कि कब फोन करें। नहीं नहीं, हमने आगे से आपके लिए ये नंबर दिया है, फोन करने के लिए नंबर दिया है, तो शर्माने की या सकुचाने की या संकोच करने की या आहा इफ बट ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहें, हमारा पहला और अंतिम मकसद यही है। हम बच्चों की भी बात करते हैं, समय समय पर डॉक्टर रजत कालरा को भी लेकर आते हैं क्योंकि बच्चों के इलाज के लिए, उसके हृदय के इलाज के लिए अगर कोई समस्या है बच्चे के हृदय में, तो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बहुत ही उम्दा व्यवस्था है। आज हमारे साथ रजत कालरा है, लेकिन हम कहेंगे कि वो खुद से अपना परिचय दें क्योंकि बहुत सारे लोग, हाँ, इस कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं क्योंकि फोन कॉल्स बताते हैं। कोई कहता है पहली बार मैंने सुना, कोई दूसरी बार सुना, कोई कहता है हमने आपको फोन किया था। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है और आप अपना परिचय पहले खुद से दीजिए पूरे बिहार और झारखंड के लोगों को।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रजत कालरा है, मैं एक हार्ट सर्जन हूँ, यानी मैं हार्ट के ऑपरेशन करता हूँ, खासकर बच्चों को जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसका हम नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में

0: इलाज कर रहे हैं। मैंने अपनी ट्रेनिंग दिल्ली एम्स से करी थी और उसके बाद खासकर बच्चों की ट्रेनिंग के विषय में मैं अमेरिका से ट्रेनिंग लेके वापस इंडिया आया और इस समय पिछले 2 सालों से नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में हम बच्चों के हार्ट का फ्री इलाज कर रहे हैं।
1: डॉक्टर साहब, बातचीत की शुरुआत करते हैं और बच्चों की बात होगी, उसके हार्ट की बात होगी, हृदय की बात होगी, लेकिन कुछ अटपटा सा नहीं लगता है कि बच्चों में हार्ट की बीमारी, हाँ क्या कहना चाहिएगा इस पर?
0: देखिए, आज से 10 साल पहले तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम होना अविश्वास था, खासकर गाँव जैसे जगहों पर। पर अब धीरे धीरे खासकर डिजिटल मीडिया की प्रेजेंस की वजह से लोगों में अवेयरनेस तो आ रही है कि हाँ, रेडियो के वैसे कि भाई ऐसी अवेयरनेस है कि बच्चों को भी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, बट अब मेन प्रॉब्लम है उसका डायग्नोसिस करना। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, आउटरीच प्रोग्राम बढ़ रहे हैं, तो अब समय पे डायग्नोसिस हो पाता है जिससे उनको माता पिता को इतला दे पाए कि भाई इस वजह से बीमारी है, और फिर वो सोचते हैं, आगे हिम्मत करते हैं, कुछ इलाज कराते हैं, कुछ ओपिनियंस देते हैं। बट पहले और अब में ये फर्क है कि धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है।
1: क्या लोगों में विश्वास आ रहा है क्या?
0: देखिए, जैसे जैसे बच्चे ठीक होके जा रहे हैं, कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और पहले हमारे पास लोकल पेशेंट आते थे, अब सीतामढ़ी, मोतिहारी, झारखंड के अलग अलग इलाकों में, बनारस से, यहाँ तक कि दिल्ली NCR से भी पेशेंट आ रहे हैं।
1: कार्यक्रम चल रहा है आयुष्मान, पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में राजेश हूँ, आप सबों के घर आंगन में, आपके आपके आपके आकाशवाणी केंद्र से ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। सारे लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, खास करके जब बच्चों की बात आती है, आप बड़ों की भी बात आती है, तो हम चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, जानकारियां आप तक भरपूर रहे, कि कोई समस्या आए तो आप सही जगह जा सकें। एक फोन नंबर भी बताते हैं कि आप इसे डायल करके जानकारियां ले सकते हैं, नंबर है 6206803040, 6206803040, ये नंबर है। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, ये बच्चों के लिए जो हार्ट की समस्या या इस तरीके का जो आपने आपके नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो चिकित्सा दी जाती है, अकेले या आपकी पूरी टीम है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए पूरे बिहार वालों को, क्योंकि विश्वास एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है हेल्थ सेक्टर में, खास करके और खास करके जब बच्चों की बात आती है।
0: कहते हैं ना, प्लेयर इज एज गुड एज अ टीम, है ना? तो ऐसे ही केवल डॉक्टर के अकेले होने से हार्ट का इलाज नहीं हो पाता, तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सुविधा चाहिए, टीम चाहिए, मैन पावर चाहिए, वो सब इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तभी हम डिलीवर कर पा रहे हैं। और ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पूरे देश भर में कुछ ही गिने चुने सेंटर हैं जहाँ पे बच्चों का इलाज सब्सिडाइज कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, खासकर जहाँ पे वजन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे 10 किलो के ऊपर के बच्चे, उन्हीं का इलाज हो सकता है, लेकिन हमारे सेंटर में हम वजन पे कोई मायने नहीं रहता, बच्चे की गंभीरता पे देखा जाता है, चाहे 2 किलो का हो, 2.5 किलो का हो, और अगर बहुत सीरियस है जिसको इलाज की जरूरत है, हम लोग वो भी आयुष्मान में फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं।
1: इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, आपके जो साधन है, हाँ, उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या क्या है यहाँ?
0: देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है, मॉडलर ओटी है, ICUs में हेपा फिल्टर लगे हुए हैं, मॉडलर ICUs हैं, वेंटिलेटर अप टू डेट है, यानी सारा इक्विपमेंट जो भी एक एडवांस कार्डियक सेंटर में होना चाहिए, देश में नहीं विदेश में, वो भी हमारे पास। ये एक क्वार्टनरी केयर सेंटर है, यानी यहाँ पे सीरियस मरीजों का इलाज किया जाता है, तो बाय वर्चू ऑफ दैट हम 24 घंटे सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं।
1: अच्छा, एक बात डॉक्टर साहब ये बताइए कि बच्चों में हार्ट की समस्या कब आती है, क्या गर्भ में या गर्भ से बाहर जब बच्चा जन्म लेता है, और क्यों क्यों होता है ये, ऐसी तरीके की समस्या बच्चों में कैसे आती है?
0: जो बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जब बच्चे पनप रहा होता है गर्भ में, तभी हो जाता है। तो ये पता तभी लगता है ऑफकोर्स जब बच्चा पैदा हो

0: जाता है, लेकिन आजकल एंटीनेटल इकोज होते हैं, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है तो इको के जरिए बच्चे के हार्ट की सेहत भी देखी जा सकती है, ताकि ये प्लान करके डिलीवर कर सके। अब दूसरा, ये होता क्यों है? तो हर 3 या 4 बच्चे, हर 1000 में से 3 या 4 बच्चों को ये कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन यानी हार्ट के बनावट में दिक्कत आ जाती है। तो इसका कोई एक कारण नहीं है, मल्टीफैक्टोरियल बोलते हैं। तो इसीलिए ये केवल भारत में ही नहीं, विकसित देशों से भी हटाई नहीं जा सकती, तो वहां पे भी उतना ही इंसिडेंस है जितना हमारे यहाँ है। तो कोई इसका एक विशेष कारण नहीं है, और ये इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप में दोष ढूंढा जाए।
1: कोई कारण पता नहीं चल पाया है इसका, डॉक्टर साहब का कहना है। कार्यक्रम चल रहा है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान, बच्चों के हृदय रोग क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इलाज होता है, कार्डियक सर्जरी क्या होती है, ये सारी चीजों पर डॉक्टर रजत कालरा से बातचीत चल रही है। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। 620-680-3040 ये नंबर है। इस पर आप डायल करके जानकारियां हेल्थ से संबंधित ले सकते हैं, या नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में क्या क्या सेवाएं दी जाती है इसके विषय में भी जानकारियां ली जा सकती है। वैसे हम आपको बताएं कि आयुष्मान कार्ड से यहां इलाज होता है। डॉक्टर कालरा, एक छोटा सा सवाल, क्या मैल न्यूट्रिशन भी इसका कारण हो सकता है? क्या हम ढूंढ सकते हैं क्या?
0: देखिए, मैल न्यूट्रिशन जहां तक बोला जाए, जैसे फोलिक एसिड डिफिशियंसी है, उसकी वजह से कुछ हद तक हो सकता है, बट बहुत सारे समाज में लोग हैं जो मेल नरिश नहीं है, खासकर माता पिता, हाँ फॉरेन में भी होता है, तो फिर वहां पे क्यों हो रहा है ये, राइट? तो कहीं पे मल्टीफैक्टोरियल बोलते हैं, थोड़ा सा जेनेटिक्स, थोड़ा सा खान पान, थोड़ा सा रहन सहन, तो मल्टीपल चीजें बनकर ये कॉज करती है। तो किसी एक चीज को एलिमिनेट कर दें तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा जिससे इसका इंसिडेंस कम कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, कुछ दवाइयाँ जैसे वॉरफरिन हो गया, लिथियम हो गया, इनको अवॉइड करना चाहिए, जिनकी वजह से पता है हमको कि हार्ट बनावट में प्रॉब्लम हो सकता है। बट बहुत सारे कारण हैं, सबको नहीं, एक पिन पॉइंट से नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से ही हार्ट की प्रॉब्लम।
1: अच्छा, एक बात डॉक्टर रजत कालरा, फटाफट, हाँ, लोगों तक जानकारियां पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
0: अभी हम लोग एक आउटरीच ओपीडीज कर रहे हैं, खासकर सीतामढ़ी, मोतिहारी, फिर जमुई, इधर देवघर, बनारस, जौनपुर, तो इन जगहों पे जाकर कम्युनिटी में लेवल पे जाकर स्क्रीनिंग करके वो कर रहे हैं। फिर दूसरा ये है कि जगह जगह एडवर्टाइजमेंट्स यानी पोस्टर्स लगा रहे हैं, ताकि लोगों को पता लगे कि यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। और तीसरा है कि ऑडियो मीडिया जैसे रेडियो या प्रिंट मीडिया, अखबार में एडवर्टाइजमेंट्स, इनके जरिए कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक बेस्ट इज कम्युनिटी मैसेज, जितने बच्चे ठीक होकर जाएंगे वो एक दूसरे को बताएंगे, माउथ पब्लिसिटी, उसी से ही कॉन्फिडेंस। और
1: बहुत अच्छी पहल है डॉक्टर रजत कालरा, आप ओपीडीज में जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में जाकर बता रहे हैं एडवर्टीजमेंट, और इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारी रीच करोड़ों लोगों तक होती है ना, जिसमें हम बताते हैं कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के तहत जो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है, क्या क्या सुविधाएं दे रहा है, जन सेवा में खड़ा है। बहरहाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारे सवाल शेष रह गए हैं, अगले एपिसोड में हम आपसे बातचीत कर जानेंगे। पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका में अभी बातचीत चल रही थी डॉक्टर रजत कालरा से, बच्चों के डॉक्टर हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि चिकित्सा का जो स्थान है ना, वो भरोसा है, और आपका भरोसा हमें मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास में, जी हाँ, आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है, पैसे के चलते कोई भी इंसान वापस नहीं लौटता। नंबर नोट करें, 620-680-3040 ये नंबर है। तो बस आज

0: हमें यानी अपने दोस्त राजेश को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह नहीं 15 दिनों के बाद फिर से मुलाकात होगी, क्योंकि ये है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान। हाँ, संकोच नहीं कीजिएगा, चलें, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहिए।
1: आयुष्मान
0: नमस्कार।
1: ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे थे नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुआर सासाराम के सौजन्य से।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। अब प्रस्तुत है हमारा सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

श्रोताओं गुड इवनिंग। रोहतास कार्यक्रम में हम आपको जानकारी दे रहे हैं स्थानीय गतिविधि के बारे में। श्रावण मास 2026 के अवसर पर चेनारी प्रखंड स्थित प्रसिद्ध गुप्ता धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, विधि व्यवस्था एवं आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज दिनांक 9 जुलाई 2026 को वन विश्रामागार बादलगढ़ चेनारी में जिला पदाधिकारी रोहतास श्री दीपक कुमार मिश्र की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक, वन परमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी, सिविल सर्जन, अनुमंडल पदाधिकारी सासाराम, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सासाराम एक, गुप्ता धाम पूजा समिति के अध्यक्ष, संबंधित विभागों के पदाधिकारी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में श्रावण मास के दौरान श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, भीड़ नियंत्रण एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के उपरांत जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों के साथ गुप्ता धाम का स्थलीय निरीक्षण कर गुफा परिसर एवं आसपास की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में गुप्ता धाम पूजा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि श्रावण मास में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु गुप्ता धाम पहुँचते हैं तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए समिति द्वारा बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों की प्रतिनियुक्ति की जाती है। इस पर जिला पदाधिकारी ने पूजा समिति को सभी स्वयंसेवकों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया ताकि उनका पहचान पत्र निर्गत किया जा सके और वे सुव्यवस्थित ढंग से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें। जिला पदाधिकारी ने गुफा के भीतर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध कराने तथा गुफा की ऑक्सीजन क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। सावन माह में गुप्ताधाम क्षेत्र में चार पहिया एवं बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। दोपहिया वाहनों का परिचालन जारी रहेगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि गुफा के प्रवेश द्वार से लगभग 50 मीटर पहले बैरिकेडिंग कर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं स्वयंसेवकों की

तैनाती सुनिश्चित की जाए, जिससे श्रद्धालुओं को नियंत्रित एवं व्यवस्थित तरीके से गुफा में प्रवेश कर सके। उन्होंने निर्देश दिया कि गुफा से 50 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार की दुकान लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भीड़ प्रबंधन एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं प्रशासनिक अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। श्रद्धालुओं की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए गुप्ताधाम परिसर में महिला एवं पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत कराने हेतु कार्यपालक अभियंता PHED को निर्देशित किया। इसके साथ ही गुफा के अंदर एवं बाहर नियमित साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में विद्युत व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने विद्युत विभाग के कनीय अभियंता को नंगे विद्युत तारों को तत्काल ठीक कराने का निर्देश दिया। श्रद्धालुओं की सहायता एवं त्वरित सूचना उपलब्ध कराने के लिए गुप्ताधाम परिसर में हेल्प डेस्क स्थापित करने तथा अनुमंडल स्तर पर विभिन्न स्थानों पर कंट्रोल रूम संचालित करने का भी निर्णय लिया गया। सिविल सर्जन को एम्बुलेंस की व्यवस्था एवं मेडिकल कैंप लगाने का भी निर्देश दिया गया। बैठक के अंत में जिला पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष चेनारी को निर्देश दिया कि श्रावण मेला अवधि के दौरान गुप्ताधाम में सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करें। तो श्रोताओं, ये थी एक जानकारी स्थानीय गतिविधि के बारे में, और अब हम सुनवा रहे हैं एक गीत।

मुकेश और साधु की आवाज़ों में आप सुन रहे थे धर्म कर्म फिल्म का ये गीत। और अब इसी के साथ गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम हमारे पटना केंद्र से रिले होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आगे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: पशुपालक भाई बहन, अत्यधिक गर्मी में पशुओं के रख रखाव का कृपया ध्यान रखें।
2: पशुओं को लू से बचाने के लिए छायादार जगह पर रखें। पशु घर को ठंडा रखने के लिए जूट की टाट लटकाकर उसे गीला रखें। उन्हें दिन में 2 से 3 बार नहलाएं, 3 से 4 बार ठंडा और साफ पानी पीने को दें। खाने में अजोला घास, चोकर और जौ की मात्रा बढ़ा दें। चराने के लिए सुबह जल्दी और शाम को देर से भेजें। लू लगने पर नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें।
1: डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: और इस गीत के बाद
4: छाया गीत।

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: AIR at 90.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 1 करोड़ राशन कार्ड बनाने के दिए निर्देश। किसानों के लिए 12 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया संबोधित। घुसपैठ रोकने के दिए सख्त निर्देश। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा के अभिषेक कुमार और राजद की रेखा गुप्ता ने दाखिल किया नामांकन। और मौसम विभाग ने कल पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश में 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने आज पटना में केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागीय योजनाओं के लाभार्थियों का डेटाबेस तैयार करने और राशन वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बिहार की ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन की सराहना की। श्री जोशी ने कहा कि बिहार की विकास प्राथमिकताओं और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में केंद्र सरकार हर संभव सहयोग देती रहेगी। बैठक के दौरान बिहार के अक्षय ऊर्जा रोडमैप, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी किसानों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक एग्रीकल्चर फीडर से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री अशोक चौधरी, ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी तथा सभी जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। समाचार कक्ष से निदेशश्री।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ, सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी और ड्रोन से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सीमा सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करना आवश्यक है। श्री शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इसके साथ ही श्री शाह ने जनसांख्यिकी बदलाव पर नजर रखने और घुसपैठ पर प्रभावी नियंत्रण के लिए समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। सम्मेलन में बिहार सहित देश के सभी सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी अभिषेक कुमार ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, सांसद रविशंकर प्रसाद, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। नामांकन के बाद आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार को कोई चुनौती नहीं है और उनकी जीत निश्चित है।
2: एक सांसद रविशंकर जी, दूसरे सांसद नितिन नवीन जी और तीसरा आपका, आपने यदि बंटी जी को एक एक वोट देकर जिताया तो आपका विधायक और उससे बंटी जी बन जाएगा। नितिन नवीन जी के अधूरे सपने हैं और बंटी जी के कंधे पर वो भार दिया गया है। एनडीए का एक एक कार्यकर्ता लगकर एक एक बूथ तक, एक एक घर तक जाकर अपने उम्मीदवार अभिषेक बंटी को जिताना है।
0: चुनावी सभा को जदयू के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी संबोधित किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रत्याशी अभिषेक कुमार ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि उन्हें कहीं से कोई चुनौती नहीं है।
3: हमारे राजनीतिक गुरु थे, इनके साथ काम करने का मौका मिला, सीखने का मिला और इनके साथ बहुत कुछ सीखे हैं। बहुत भरोसा है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो काम किए हैं

0: काम को आगे बढ़ाना है और उनके विश्वास पर खरा उतरना है। बांकीपुर की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे।
1: इधर राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने भी अपना नामांकन पर्चा भरा। मौके पर राजद समेत महागठबंधन के विभिन्न घटक दलों के नेता मौजूद थे। श्रीमती गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि उपचुनाव में उनकी जीत तय है।
2: बांकीपुर की जनता धोने का काम करेगी और यहीं से पूरे सरकार को आईना दिखाया जाएगा और एक नया इतिहास लिखेगा बांकीपुर के साथ। अभी तो उन्होंने तो जातिगत राजनीति कर दी ना, अपना उत्तराधिकारी उतार दिया।
1: जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर 11 जुलाई को अपना पर्चा दाखिल करेंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 13 जुलाई तक निर्धारित है, जबकि उम्मीदवार 16 जुलाई तक नाम वापस ले सकते हैं। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के तबादले के लिए पोर्टल आज से चालू हो गया है। इसके माध्यम से शिक्षक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार ने स्थानांतरण की नीति बनाई है। उन्होंने कहा कि तबादले के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी हो चुकी है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को पेयजल की समस्या वाले विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने इस संबंध में सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र निर्गत किया है। पत्र में कहा गया है कि ऐसे विद्यालयों की सूची 10 जुलाई तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई से संबंधित दस्तावेजों और साक्ष्यों की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब राजस्व न्यायालय में केवल ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेज और साक्ष्य ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके साथ ही भौतिक रूप से कागजात जमा करने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। एक रिपोर्ट।
3: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली RCMS के माध्यम से सभी आवश्यक दस्तावेज और अतिरिक्त साक्ष्य ऑनलाइन अपलोड किए जा सकेंगे। इसके लिए आवेदक बिहार भूमि पोर्टल पर जाकर RCMS में लॉगिन करेंगे, संबंधित न्यायालय का चयन करेंगे और फाइल केस ऑनलाइन तथा एड केस रिकॉर्ड विकल्प के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर अपने सभी दस्तावेज RCMS पोर्टल पर अपलोड करें, क्योंकि अब केवल ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेज ही मान्य होंगे। समाचार कक्ष से कामिनी ठाकुर।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कटिहार के अहमदाबाद में सबसे अधिक 108.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। विभाग ने कल पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है।
1: राज्य के उत्तरी भाग के अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है। दक्षिणी भाग कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने चलने की संभावना है।
0: प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत अरवल जिले के 20 गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। उप विकास आयुक्त शैलेश कुमार ने बताया कि चयनित गांव में सड़क

0: स्वास्थ्य, पेयजल, स्कूल, स्वच्छता और विद्युत आपूर्ति सहित सभी आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाएगा। वहीं शेखपुरा जिला प्रशासन ने जिले के अनुसूचित जाति बहुल 21 गांवों को आदर्श ग्राम बनाने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी शेखर आनंद ने बताया कि चिन्हित गांवों में 10 मानकों पर काम करते हुए अंतिम व्यक्ति तक सभी सरकारी सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सिवान में पदस्थापित उत्पाद निरीक्षक अंकेश कुमार कुंड के पटना, मुंगेर और सिवान स्थित 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जांच एजेंसी ने उसके दानापुर स्थित आवास पर छापेमारी की। इसके अलावा मुंगेर और सिवान स्थित ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। सिवान में अंकेश कुंड के भाई से जांच टीम ने लंबी पूछताछ भी की है। उत्पाद निरीक्षक पर आय से 200% अधिक लगभग 2,38,00,000 रुपए की संपत्ति बनाने का आरोप है। पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग, एसएसपी और पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। घटना वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र के धनैया गांव की है। आक्रोशित लोगों ने कार्रवाई में लगी एक जेसीबी मशीन में आग लगा दी और कई वाहनों में तोड़फोड़ की। घटना में वन विभाग के कई कर्मियों के घायल होने की सूचना है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे हैं। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भूटान के थिम्पू में आयोजित 16वीं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में पटना के आदित्य राज ने कांस्य पदक जीता है। उन्होंने 75 किलोग्राम भार वर्ग में यह उपलब्धि हासिल की है। गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र के सिजुआ गांव के पास एक कार और ट्रक के बीच टक्कर के बाद कार में आग लग गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। कार चालक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत परमालपुर के पास एक तेज रफ्तार ट्रक के अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा जाने के कारण चालक और खलासी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गया जिले के परैया थाना क्षेत्र में रोलर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पटना के अमहरा थाना क्षेत्र के बवनलई गांव में पुलिस ने शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। मधुबनी जिले के फुलपरास थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक तस्कर को 13 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। नवादा जिले के कादिरगंज बाजार में एक कपड़े की दुकान में आग लग जाने से लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। पुलिस ने शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया है। पूर्णिया में आज जिला स्तरीय गजेटियर प्रारूप प्रकाशन समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और विकास संबंधी तथ्यों तथा विभागीय आंकड़ों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने अधिकारियों को जिले के इतिहास, धरोहर स्थलों और अद्यतन आंकड़ों को शामिल कर तथ्यपरक और त्रुटि रहित गजेटियर तैयार करने के निर्देश दिए। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में सुपौल जिले ने जून महीने की रैंकिंग में राज्य भर में पहला स्थान हासिल किया है। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 1 करोड़ राशन कार्ड बनाने के दिए निर्देश। किसानों के लिए 12 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया संबोधित। घुसपैठ रोकने के दिए सख्त निर्देश। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा के अभिषेक कुमार और राजद की रेखा गुप्ता ने दाखिल किया नामांकन। और मौसम विभाग ने कल पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब को

0: पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पश्चिम चंपारण जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष कुमार।
2: पश्चिम चंपारण जिले में मानसून का असर दिखने लगा है। पिछले 3 दिनों से जिले में लगातार बारिश जारी है। बारिश के बाद किसानों ने खेतों में तैयार धान के बिचड़े से रोपनी शुरू कर दी है। वहीं नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज के सभी फाटक आंशिक रूप से खोल दिए गए हैं। इससे नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। आज गंडक नदी में 88,300 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बीते दिनों नगर विकास एवं आवास विभाग की 3 सदस्यीय जांच टीम बेतिया पहुंची। संयुक्त सचिव सुनील कुमार की अध्यक्षता में टीम ने नगर निगम के कनीय अभियंता सुजय सुमन पर लगे आरोपों की जांच की। करीब 4 घंटे तक अभिलेखों और फाइलों की जांच की गई तथा संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की गई। यह जांच उप महापौर गायत्री देवी की शिकायत के आधार पर की जा रही है, जिसमें कनीय बहाली और वित्तीय अनियमितताओं समेत कई आरोप लगाए गए हैं। इधर बेतिया अंचल कार्यालय के RTPS काउंटर पर तैनात कलर राजकुमार मिश्रा को निगरानी विभाग की टीम ने 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। श्री मिश्रा पर जमीन की जमाबंदी अनलॉक करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। निगरानी विभाग ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले के योगापट्टी प्रखंड के सारांश कुमार ने गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने रिदमिक पेयर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर जिले और बिहार का नाम रोशन किया है। गौरतलब हो कि इस प्रतियोगिता में 78 देशों के 500 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। जिले के नरकटियागंज प्रखंड के सोमगढ़ पंचायत निवासी प्रगतिशील किसान आनंद सिंह अपनी एकीकृत खेती के मॉडल को लेकर चर्चा में हैं। वे मत्स्य पालक, जैविक खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों से बेहतर आय अर्जित कर रहे हैं, साथ ही करीब 25 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। आनंद सिंह ने बताया कि बायो क्लॉक तकनीक और जैविक खेती से कम लागत में अधिक उत्पादन संभव है। उनका यह मॉडल दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बन रहा है। जिले में बीते दिनों जिला बिसूत्री समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। जिला प्रभारी मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने अधिकारियों को योजनाओं का समय पर और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को समन्वय के साथ काम कर पश्चिम चंपारण को विकास के क्षेत्र में आदर्श जिला बनाने पर जोर दिया। इधर जिले के विभिन्न पंचायतों में सहयोग शिविर आयोजित किए गए। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने आवास, राशन कार्ड, नल जल, शौचालय, नली गली समेत अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़े समस्याएं रखी। नरकटियागंज प्रखंड के हरसरी पुरैनिया पंचायत में आयोजित शिविर में केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे भी शामिल हुए। उन्होंने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। इधर जिले में ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पंचायतों में विकास कार्य तेज किए गए हैं। सड़क निर्माण, मिट्टीकरण, पौधारोपण समेत अन्य योजनाओं में बड़ी संख्या में मजदूर को रोजगार मिला है। उप विकास आयुक्त काजदेव वैभव नितिन ने बताया कि जिले के 318 पंचायतों में 51,000

0: अधिक श्रमिक विकास कार्यों में लगे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। पश्चिम चंपारण जिले के नौतन प्रखंड में पशुपालन विभाग की ओर से अनुदानित दर पर बीते दिनों ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां का वितरण किया गया। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर रामचंद्र कुमार रवि ने बताया कि योजना का उद्देश्य पशुपालकों की आय बढ़ाना और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना है। लाभुकों का चयन ऑनलाइन आवेदन के आधार पर किया गया। बीते दिनों वाल्मीकि नगर के बेलवा घाट स्थित संगम तट पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर 156वीं नारायणी गंडकी महाआरती का आयोजन हुआ। भारत और नेपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। उन्होंने पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा में भागीदारी निभाई। बेतिया में भाजपा की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें भाजपा के सचेतक और पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह ने केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियां बताई। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना समेत अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ पश्चिम चंपारण के बड़ी संख्या में लोगों को मिल रहा है। पश्चिम चंपारण जिले में मुहर्रम का पर्व शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। पर्व को लेकर बेतिया और बगहा पुलिस जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। जिले के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सभी थाना क्षेत्र में शांति समिति की बैठकें आयोजित कर लोगों से आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की गई।
1: अभी आप सुन रहे थे पश्चिम चंपारण जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आशीष कुमार।
2: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है ईमेल आधारित हमारा फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद, और इस कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आज हाजिर है आपका रेडियो दोस्त लाल बहादुर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं हमारे इन श्रोताओं की इस पसंद के साथ, और यह हमारे श्रोता हैं फुटानी चौक नारायण एस्टेट से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, गुंजन, छोटू, अमित, सुमित, अमन परासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। आप सबों ने सुनना चाहा है साजन फिल्म का एक गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, और इसी गीत के लिए फरमाइश आई है गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, अच्छे लाल राय, बोलकी वाली और फलना झा। नयानगर सुपौल से श्वेता रंजन विद्यार्थी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, पप्पू जी, गजेंद्र कुमार निराला और चिल्ला झा। और ये हमारे श्रोता हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। तो चलिए, आप सबों की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में साजन फिल्म का ये गीत।
3: रेशम की डोरी

परिरायकारी, मीनाकारी, पुंज राज, आरती, आकर्षण और जयश्री ने, और आप सब हैं गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दतार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। और ये हमारे श्रोता हैं ग्राम नहोना सासाराम से भरत सिंह, धर्मराज सिंह, डॉक्टर अनिल, जयनाथ सिंह, जगदीश, दशरथ सिंह, बिमला देवी, मास्टर अनिल, रविंद्र सिंह और डमरू कलाकार। और ये हमारे श्रोता हैं मैसौल सीतामढ़ी बिहार से मुशर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिपात जहानाज, नुजहत जहानाज, शाजिया शाहिनाज और नाजिया नूरीनाज। कलेर बिहार से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद आसिफ खान, निकहत परवीन, सदा फारजू, सादिया तस्नीम और अलीशा। तो लीजिए आप सब सुनिए अपनी पसंद पर लोफर फिल्म का ये गीत।

श्रोता, इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी सासाराम और सुन रहे हैं हमारा ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं आप सबकी पसंद पर लोफर फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और इस गीत के लिए मैसेज किया है ताजपुर मोरबा समस्तीपुर बिहार से हमारे श्रोता

कर्क में अब हम सुना रहे हैं आप सबों की पसंद पर छलिया फिल्म से एक गीत मुकेश की आवाज़ में। गीत को लिखा है कमर जलालाबादी ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से हमारे श्रोता भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यंदु भूषण संस्कृति और पौरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कमल। इसी गाने के लिए मेल भेजा है हमारे श्रोता पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। बोहड़ा गाछी वेस्ट बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। तो चलिए हम आप सभी को सुना रहे हैं छलिया फिल्म का ये गीत।

जान की कसम। अब हम सुना रहे हैं आप सबकी पसंद पर इस फिल्म का ये बरसाती गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। और सुनना चाहते हैं दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया ज़िला गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। गम्हरिया जमशेदपुर से हमारे श्रोता हैं बिपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल। जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिम्पल जायसवाल, आशुतोष और अभिनव जायसवाल। दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती देवी, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। और ये हमारे श्रोता हैं पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। तो हम सुन रहे हैं आप सबों की पसंद पर जान की कसम फिल्म का ये गीत।

आकाशवाणी सासाराम से आप सुन रहे हैं हमारा ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद। रोटी कपड़ा और मकान। अब लीजिए सुनिए इस फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। वर्मा मलिक ने गीत को लिखा है और संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। और इस गीत को सुनना चाहते हैं गढ़नोखा लालगंज रोहता से राजकिशोर सिंह और बड़क सिंह ने। ग्राम खरवत गढ़नोखा से मोतीमाला गुप्ता, लाल बिहारी सिंह, वीरा सिंह और सुनील कुमार राय। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सानावाद से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकामा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गोण और मोहम्मद सद्दाब खत्री। और ये हमारे श्रोता हैं गुमला झारखंड से नजमुल होदा, एस एम जावेद और सगुप्ता अंजुम। नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई, मतीन भाई, शेख चंद, फारूक फुलवाले, सईद खलील, मोबिन भाई और मोहम्मद यासीन शेख सलीम। तो आप सबों

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओं, समय आकाशवाणी सासारम से आप सुन रहे हैं ईमेल आधारित हमारा फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद। आप भी हमारे

इस कार्यक्रम में अपनी पसंद का गाना सुन सकते हैं। तो आप हमारे इस ईमेल एड्रेस पर अपनी फरमाइश लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है akashvanisasaram@gmail.com और मैसेज मेल आपको करना है अपराह्न 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच। तो चलिए अब कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं चितचोर फिल्म का एक गीत यशुदास की आवाज़ में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है और इसके लिए फरमाइशी मेल किया है जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल। और आप सब हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसबीर जसी, सीता और गीता। वेडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। तो चलिए आप सबों की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं चितचोर फिल्म का ये गीत।

किशोर कुमार की आवाज़ में आप लीजिए सुनिए ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। फरमाइशी मेल भेजा है नगर पंचायत दिनारा से जयराम सिंह, सुषमा सिंह, कंचन मिश्रा, श्वेता रानी पांडे, रुचि कुमारी, मदनेश्वर सिंह, प्रभात कुमार, पुरुषोत्तम, सौरभ, अर्पित, हर्षित, वैभव, सीता मोनी देवी, जयराम बिंद और वीरेंद्र पांडे। और ये हमारे श्रोता हैं चौसा गोला बक्सर से जयराम बिंद, सीता मोनी देवी, लालसा कुमारी, काजल कुमारी, प्रदुम्न और प्रीतम कुमार। जिला हापुड़ उत्तर प्रदेश गढ़मुक्तेश्वर काकाठेर की मड़ैया से राजकुमार, जानकी देवी, पुनीत कुमार और सपना कुमारी। और ये हमारे श्रोता हैं नैका गांव धर्मशाला से राजेंद्र सिंह, शकुंतला देवी, प्रीति कुमारी, राहुल और बादल। तो चलिए, आप सबों की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत।

और अब कार्यक्रम के आखिर में पेश है कच्चे धागे फिल्म का एक गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। आनंद राज आनंद के बोल हैं और नुसरत फतेह अली खान ने इसे संगीत दिया है। और इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना मुन्नी और चांदनी कुमारी। और यह हमारे श्रोता हैं कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयालक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश और ऋषिता। इसी गाने के लिए फरमाइश भेजा है डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी ने। बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य। तो लीजिए आप सब सुनिए कच्चे धागे फिल्म का

कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से हमारे श्रोता हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैपी राय। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। और शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती पीथी राय और नवनीत राय।

0: और श्रोताओ, इस गाने के साथ ही आज का ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद अब समाप्त होता है। दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर को। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। यह आकाशवाणी सासाराम है। अब आप सुनेंगे कोची बोलो में दिल्ली से रिले समाचार संध्या।
1: मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र

0: के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना चाहता है। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आईवीएफ केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया, वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र। ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया।
0: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे

0: बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बया होता है प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का कल समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
2: ऑकलैंड में वाइटाकरे इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए इन्फोमेट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेड ऑल्सन ने कहा कि भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। ये समिति IVF क्लिनिक, ART केंद्रों और गैमीट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत आधार होना अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
4: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि वैज्ञानिक क्षमता विकसित भारत की आधारशिला है। नाइजर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है।

0: राष्ट्रपति ने कहा कि ये ऐसे युवा शोधकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जांच करेगी। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और

0: को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जांच करेगी। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉयल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में कल तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शुक्रवार को तेज वर्षा होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कैरोलिना ने सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में मार्टा कोत्स्युक का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास, अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का इच्छुक। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9 बजे हैं। लोकधारा कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं भोजपुरी लोकगीत। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए भरत सिंह भारती और साथी के स्वर में ये गंगा गीत।

मंदाकिनी सिंह के गाए इस बरसाती गीत के साथ ही लोकधारा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी सासाराम है। हमारे केंद्र से अब लीजिए सुनिए गजलों का कार्यक्रम महफिल।

मेहदी हसन और तरन्नुम नाज की आवाज़ों में आप सुन रहे थे मिर्जा गालिबी की लिखी यह गज़ल। आकाशवाणी सासाराम से आप सुन रहे हैं गज़लों का हमारा कार्यक्रम महफिल। और अब लीजिए सुनिए गुलाम अली की आवाज़ में फैज अहमद फैज की यह गज़ल।

गुलाम अली की गई इस गजल के साथ ही महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। इस समय रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। अब हम कुछ पलों में रिले करेंगे विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: निकालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीन साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को

0: आज के फनकार एक ऐसे फिल्म जगत के हर फन मौला कलाकार को लिए हुए है जिसने हीरो से लेकर खलनायक तक, चरित्र अभिनेता से लेकर हास्य भूमिकाओं तक, जवां से लेकर प्रौढ़ावस्था के अभिनय का सफर बड़ी ही जीवंतता से तय किया, जिनकी प्रतिभा का लोहा फिल्म जगत से जुड़े लोगों से लेकर दर्शकों तक सभी मानते रहे हैं, मानते हैं।
1: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
2: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

संजीव कुमार एक सफल अभिनेता के रूप में चिन्हे जाते हैं। कई प्रतिष्ठित अभिनय के पुरस्कारों के साथ संजीव कुमार को दो बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। फिल्म थी कोशिश और दस्तक

संजीव कुमार का जन्म 9 जुलाई को सूरत में हुआ। इनका मूल नाम हरिहर जरीवाला था। अपने फिल्मी नाम संजीव कुमार से इन्हें शोहरत मिली। थिएटर में अभिनय के साथ साथ फिल्मालय एक्टिंग स्कूल से अभिनय की पढ़ाई के पश्चात संजीव कुमार को फिल्मालय की 1960 की फिल्म हम हिंदुस्तानी में पहला छोटा सा रोल मिला। इसके बाद 1964 में जॉय मुखर्जी और सायरा बानो स्टारर आओ प्यार करें में संजीव कुमार ने एक छोटा सा और किरदार निभाया। संजीव कुमार की पहली नायक के रूप में फिल्म थी 1965 की निशान।

0: देखा जाए तो पर्दे के माध्यम से संजीव कुमार को 1968 की फिल्म मिली संघर्ष, जो एचएस रावल की फिल्म थी, और ये महाश्वेता देवी की कहानी का फिल्मी रूपांतरण था। संघर्ष फिल्म में संजीव कुमार ने दिलीप कुमार के साथ पर्दे पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
1: तुम कुंदन हो ना?
2: हाँ, तुम कौन हो? यहाँ अंदर कैसे आ गए?
1: द्वार खुल गए स्वागत के लिए। नौबतलाल का बेटा हूँ।
2: अरे भाई, तुम कब आए? कब आए?
1: कुछ देर पहले।
2: काफी आग गए, हम तुम्हारा इंतजार करते रहे। बोले भाई, जहाँ ठहराए गए वहाँ कोई
1: पूरा आराम है, सिर्फ एक मुश्किल है, शराब हम अकेले कैसे?
2: ये कैसे हो सकता है? हम साथ देंगे, मैं भी बैठक का इंतजाम करा देता हूँ।
1: इंतजाम हो चुका है, आमिर सर।
2: वो नहीं होगा, पहली बार यहाँ आए हो, पहली बैठक हमारे ही घर होनी चाहिए। क्यों?
1: दुश्मन के साथ जाते हुए डर लगता?
2: नहीं, दुश्मन का डर नहीं, मुझे मेहमान का ख्याल था। आमिर सर,
1: घोड़े का ढाई बचो।
3: बड़े शातिर हो भाई, अच्छी चालें चलते हो।
1: वो चाल चलने वाला हूँ कि बचना मुश्किल होगा, बस देखते जाओ मेरे प्यारे किस तरह घेरते हैं तुम्हें।
0: 1968 में ही ऋषिकेश मुखर्जी की आशीर्वाद में इन्होंने एक अहम किरदार निभाया था। संजीव कुमार को फिल्मफेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिलवाया था इसी फिल्म ने। इसी साल आशा पारेख और धर्मेंद्र स्टारर शिकार फिल्म आपने की। इस फिल्म में संजीव कुमार ने एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की भूमिका निभाई थी। अब संजीव कुमार को फिल्मों में लीड रोल मिलने शुरू हो चुके थे। बात 1970

0: की फिल्म खिलौना की है। यही वो फिल्म है जिसने संजीव कुमार को एक स्टार बनाया। इस फिल्म में एक दिमागी रूप से बीमार व्यक्ति का किरदार बड़े ही विश्वसनीय ढंग से संजीव कुमार ने निभाया था।
1: आदि पे तो मैं क्या

0: हजरात हजरात नहीं बड़ा चले आते हैं। हजरात आज के इस मुशायरे में हमने बड़ी मुश्किल से मीर तकी मीर और मिर्जा गालिब को यहां बुलाया है।
1: जी हाँ जल्द से।
0: अब मैं मीर साहब से दरखास्त करता हूं कि वो अपना कलाम पेश करें। आइए मीर साहब।
1: ओह आइए आइए आइए
0: आइए मीर साहब आइए आइए।

0: पशु का खाचा घर में बैठा, अब का तर्क इस्लाम किया।
1: शायरी के खुदा तूने बिल्कुल सच कहा है, ये दुनिया मोहब्बत की है, चाहे मंदिर में गुजारो चाहे मस्जिद।

सन 1970 वो साल है जब दस्तक फिल्म के जरिए इन्होंने अपनी प्रतिभा का जानदार प्रदर्शन किया था। पति पत्नी के रिश्तों पर बनी इस फिल्म में इनके साथ थी रेहाना सुल्तान। ये वही किरदार थे जिसके लिए दोनों ही अभिनेता और अभिनेत्री को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान प्राप्त हुआ।

1971 की अनुभव, 1972 की सीता और गीता और 1973 की मनचली, इन फिल्मों ने संजीव कुमार के अभिनय के सफर को सुहाना किया।

सन 1972 की परिचय और इसी वर्ष की फिल्म कोशिश ने इन्हें दूसरा फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और अभिनेता के रूप में एक सम्मान दिलवाया। इन फिल्मों के निर्देशक थे गुलजार। अभिव्यक्ति और अभिनय का सर्वोच्च शिखर छू लेता है संजीव कुमार का यह

कहना ना होगा कि गुलजार और संजीव कुमार के साथ ने हिंदी फिल्म दर्शकों को बेहतरीन फिल्मों के तोहफे दिए हैं। 1975 की आंधी, 1975 की ही मौसम और 1981 की अंगूर और 1982 की नमकीन ऐसी ही उम्दा फिल्में हैं।

संजीव कुमार के बोलने का अंदाज और किरदार को पूरी तरह से समझकर पर्दे पर उसे जिंदा करने की कला के सभी सिने प्रेमी कायल रहे हैं। संजीव कुमार ने पर्दे पर अपनी स्वयं की छवि से ज्यादा किरदार की छवि, उम्र और अनुभव का ख्याल रखा। तभी संजीव ने कई फिल्मों में अपनी उम्र से अधिक यानी बुजुर्ग भूमिकाओं को भी सहर्ष स्वीकार किया और उनके परफॉर्मेंस के बाद जिसने भी उन्हें पर्दे पर देखा, सराहा और पसंद किया। ऐसी ही फिल्में हैं जिसमें फिल्मों के हीरो की छवि को तोड़ते हुए कैरेक्टर की उम्र को पर्दे पर बड़ी ही सहजता और सफलता से आपने पर्दे पर उतारा है, जैसे फिल्म आंधी, मौसम, शोले, त्रिशूल और अब शोले फिल्म को ही ले लेते हैं। इस फिल्म में संजीव कुमार जया भादुड़ी के ससुर बने, जबकि कोशिश और अनामिका में जया जी इनकी नायिका।

सहज सरल और हास्य प्रधान फिल्मों में भी संजीव कुमार खूब जंचे, जैसे मनचली, मनोरंजन, पति पत्नी और वो, अंगूर, लाखों की बात, और हाँ 1974 की फिल्म नया दिन नई रात में तो इन्होंने बड़ी ही खूबसूरती और दक्षता से अनेक किरदारों को एक ही फिल्म में अदा कर दिया, जो इनकी अभिनय क्षमता और बहुमुखी प्रतिभा का जीता जागता उदाहरण है।

1977 में संजीव कुमार को महान फिल्मकार सत्यजीत रे ने पहली बार बंगाल के बाहर बनने वाली अपनी फिल्म में, जो कि फिल्म थी शतरंज के खिलाड़ी, इस फिल्म में मुख्य भूमिका प्रदान की, जो संजीव कुमार की अभिनय क्षेत्र में प्रतिष्ठा और कला के प्रति समर्पण को दर्शाता है। शोले फिल्म के ठाकुर के रोल के लिए संजीव कुमार पहली पसंद नहीं थे, क्या ये आपको पता है? बल्कि पसंद पहली थे धर्मेंद्र, क्योंकि धर्मेंद्र स्वयं वो भूमिका करना चाहते थे, पर निर्देशक रमेश सिप्पी के कहने पर धर्मेंद्र ने वीरू का प्रसिद्ध रोल किया और संजीव कुमार ने अविस्मरणीय ठाकुर बलदेव सिंह की भूमिका अदा की। सन 1976 की फिल्म आंधी और 1977 की अर्जुन पंडित के लिए इन्हें फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर का सम्मान मिला था। अपने एक इंटरव्यू में संजीव कुमार ने अपने सबसे पसंदीदा प्रदर्शन के बारे में बताते हुए कहा था कि कोशिश फिल्म में मेरे पास बोलने के संवाद नहीं थे, ना ही कोई कैमरे की पोजीशन ऐसी थी जिससे मेरे प्रदर्शन में कोई विशेष मदद मिलती। वो एक संपूर्ण रूप से एक कलाकार का दृश्य था। सामान्य रूप से इस तरह के दृश्य करने में बड़ी कठिनाई होती है जब निर्देशक पूरी तरह कलाकार पर निर्भर हो। अगर ये असफल होता तो किसी और की असफलता नहीं बल्कि मेरी ही असफलता गिनी जाती, पर मैं गुलजार साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये दृश्य दिया जिसने मेरे अंदर आत्मविश्वास को जागृत किया। गौरतलब है कि संजीव कुमार खाने के बहुत शौकीन थे। अक्सर या तो वो अपने घर पर ही पार्टियां देते थे या फिर अन्य बॉलीवुड एक्ट्रेस के द्वारा दी गई पार्टियों में बड़े ही शौक से सम्मिलित हुआ करते थे। हरिहर जरीवाला यानी संजीव कुमार ने अपनी गुजराती मीडियम से हो रही पढ़ाई अधूरी छोड़ बॉम्बे के इंडियन नेशनल थिएटर को ज्वाइन किया था। संजीव कुमार लेखक निर्देशक पीडी शिनॉय के शिष्य रहे। ये निर्माता निर्देशक और लेखक सावन कुमार ही थे जिन्होंने इंडियन नेशनल थिएटर के दिनों में हरिहर जरीवाला को संजीव कुमार का नाम दिया। जब संजीव कुमार 20 वर्ष की आयु के ही थे, इन्होंने अपनी उम्र से बड़े किरदार निभाने आरंभ कर दिए थे, जैसे आर्थर मिलर के ऑल माय सन्स की रंगमंची प्रस्तुति में एक उम्रदराज व्यक्ति का रोल आपने किया, वहीं एके हंगल के नाटक में संजीव कुमार ने 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। निर्देशक अपसी ईरानी की फिल्म राजा और रंक ही वो फिल्म थी जिसके माध्यम से संजीव कुमार लाइमलाइट में आए थे और ये फिल्म इनके फिल्मी सफर की सबसे सफलतम फिल्मों में से एक है।

अपनी फिल्मी यात्रा के कई ठहराव और पड़ावों को पार करते हुए जब 1980 आया, उस वक्त तक संजीव कुमार ने अपने जीवन के प्रति अपनी दिनचर्या के संतुलन को खो दिया था। 1982 की विधाता में एक बार फिर दिलीप कुमार और संजीव कुमार के अभिनय की चर्चा चल पड़ी। वहीं 1983 की फिल्म हीरो में संजीव ने अपने अभिनय से दमदार उपस्थिति दर्ज की। फिर एकाएक 6 नवंबर 1985 को सिने दर्शकों का पसंदीदा चहेता अभिनय सम्राट असामयिक काल का ग्रास बन गया। संजीव कुमार अपनी पहली फिल्म हम हिंदुस्तानी से लेकर उनकी मृत्यु पश्चात प्रदर्शित फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन तक हमेशा अपनी भूमिकाओं और अभिनय के लिए चर्चित रहे।

0: तो ये था आज का आज के फनकार, जो केंद्रित था संजीव कुमार पर। आलेख और स्वर जी श्याम का, संपादन आकांक्षा सिंह का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजे हैं। हमारे केंद्र से लीजिए सुनिए कार्यक्रम रसरंग। इसके अंतर्गत हम आपको सुना रहे हैं कुछ गैर फिल्मी रचनाएं।

अब के बरस अब हम सुनवा रहे हैं इस एल्बम से सुनीता राव की आवाज़ में श्याम अनुरागी की ये रचना।

0: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सासाराम से कार्यक्रम रस रंग में एल्बम सॉन्ग्स। चंदा की डोली आप लीजिए सुनिए। इस एल्बम से सोनू निगम की आवाज में नुसरत बदर की ये रचना।

कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में आप सुन रहे थे रानी मलिक की ये रचना और एल्बम था दिल खो गया। और अब रसरंग कार्यक्रम के अंत में हम सुनवा रहे हैं अफसाना एल्बम से ये रचना, जिसे गाया है सोनू निगम ने और रचना है आसिफ बिजनौरी की।

रस रंग कार्यक्रम में आप सुन रहे थे एल्बम सॉन्ग्स। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 MHz पर। इस समय रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट तराने। इस कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। इन दिनों शादियों का मौसम चल रहा है, चारों तरफ मांगलिक गीतों का शोर मचा हुआ है। श्रोताओं, हो सकता है आपके आसपास भी कहीं शहनाई की आवाज गूंज रही हो, तो आज हम कुछ वैसे गीतों को शामिल कर रहे हैं जिनमें विवाह की तैयारी का उल्लास और बेटी की विदाई का दर्द शामिल है। बहन की शादी में भाई के मन का उल्लास कुछ इस तरह दिखाई देता है।

तो श्रोताओ, ये था भाई के मन का उल्लास। और दुल्हन की सहेलियां भी पारंपरिक रस्म रिवाज, हंसी मजाक और नाच गानों के माध्यम से ऐसा शमा बांधती है कि पूरा माहौल उत्सव जैसा लगने लगता है।

शादा दुल्हन की विदाई वैवाहिक रीति रिवाज का एक अंग होता है। मायका छोड़ते वक्त लड़कियां भावुक हो उठती हैं। एक तरफ नए जीवन की शुरुआत तो दूसरी तरफ माता पिता, भाई बहन, बचपन की सहेलियां, घर आंगन, खेत खलिहान से बिछड़ने का दुख अत्यंत भावुक कर देने वाला होता है।

शुद्ध पिता के लिए भी विदाई का क्षण बड़ा पीड़ादायक होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके वजूद का एक हिस्सा उससे हमेशा के लिए अलग हो रहा है। वह बेटी के सुख दुख की चिंता में डूबकर भी दुनिया के सामने अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश करता है।

और श्रोताओं, ससुराल में कुछ दिन रहने के बाद वहाँ के माहौल में घुल मिल जाती है बिटिया, तो फिर उसे सास ससुर में माता पिता और ननद देवर में भाई बहन की छवि नज़र आती है।

श्रोताओं, हमारे आज का ये चित्रपट सराहने कार्यक्रम शादी ब्याह और विदाई के गीतों पर केंद्रित था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। और आज हमने जिन फिल्मों के गीत शामिल किए वे फिल्में थीं सच्चा झूठा, महबूब की मेहंदी, प्रेम रोग, नील कमल और सरस्वती चंद्र। और अब दीजिए अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर को इजाजत। नमस्कार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। आप लीजिए सुनिए कल के हमारे कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

कल सुबह 7:30 बजे आप सुनेंगे हमारा प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से और 8:20 पर पत्र आधारित हमारा फरमाइशी कार्यक्रम होगा पसंद आपकी। सुबह 8:45 पर पटना केंद्र से हम रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार और कल सुबह 9:10 पर कार्यक्रम होगा फिल्मी गीतों का गीत मालिका।

सुबह 9:30 पर विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार हम रिले करेंगे। सुबह 10 बजे सुनिएगा दिल्ली से रिले हिंदी।

समाचार और 10:05 पर हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम होगा खेल खिलाड़ी। सुबह 10:30 लोक माधुरी कार्यक्रम में सुनिएगा भोजपुरी एल्बम से लोकगीत और 10:45 पर रसदार कार्यक्रम में सुनिएगा भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स। दिन के 11:00 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। हमारी शाम की सभा में 5:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा वंदन। 5:30 महिलाओं के लिए कार्यक्रम प्रसारित होगा घर आंगन। 6:10 पर ग्रामीण कार्यक्रम सुनिएगा गांव घर।

फिर संगीत का कार्यक्रम होगा वंदन। शाम 5:30 बजे महिलाओं के लिए कार्यक्रम प्रसारित होगा घर आंगन। संध्या 6:10 पर ग्रामीण कार्यक्रम सुनिएगा गांव घर

संध्या 6:40 पर भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा सांझ गीत, और संध्या 7:15 पर सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम सुनिएगा गुड इवनिंग रोहतास। शाम 7:30 पटना केंद्र से हम रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार, और उसके बाद आप सुनेंगे पटना केंद्र से ही जिले की हलचल। शाम 7:50 से ईमेल आधारित हमारा फरमाइशी कार्यक्रम होगा ई मनपसंद।

रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से, और रात्रि 9 से आप सुनेंगे लोकधारा कार्यक्रम में भोजपुरी लोकगीत। कल रात्रि 9:15 कार्यक्रम होगा बंदगी, इसमें आप सुनेंगे ख्वाजा एवं मनकवत। रात्रि 9:30 पर पटना केंद्र से हम रिले करेंगे रेडियो साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प का प्रसारण। रात्रि 10 से आप सुनेंगे रसरंग कार्यक्रम में हिंदी एल्बम सॉन्ग्स, और रात्रि 10:30 से होगा कार्यक्रम चित्रपट तराने। तो अभी आप सुन रहे थे कल के हमारे कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। यह आकाशवाणी का सासाराम है। इस समय रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में दिल्ली से हम रिले करेंगे समाचार, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंध में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के

0: नेता एंगस टिलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड एमसीजी का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्र सरकार जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन शुरू करने की योजना बना रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसकी कीमत E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम होगी। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना और सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियू को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला 11 जुलाई को लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में कल आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला ब्रिस्टल में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. India and Australia today adopted a new joint declaration on defense and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the 3rd Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said, "The Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia." Later briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said, "Both the sides finalized the administrative arrangement for a long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program and support its net zero goals." Prime Minister Narendra Modi today said, "India's aspiration to become one of the world's top three economies at the earliest is driven by the motto of grow more, achieve more." Mr. Modi was addressing the Indian community at the Marvel Stadium in Melbourne.
2: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
1: Speaking at the Melbourne Meets Modi event, Prime Minister Modi also referred to Operation Sindoor. He said, "The operation demonstrated the effectiveness of India's homegrown defense systems in carrying out anti-terror operations." Mr. Modi said, "The India-Australia partnership has reached new heights, driven by shared values, strong people-to-people ties, and expanding cooperation across key sectors." He described the 1 million strong Indian